ਜਰ ਆਈ ਜੋ ਬਨਹਾਰਿਆ।

जे देश दिखे देशानू बख्शुनाई उसे नूरे को दीमी दा वास्ताई वक्त हशर ते बरी दिना पुछ।

हीअ आकाशवाणीअ जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते। तंहिंखां सवाइ तव्हां आकाशवाणीअ जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल एप ऐं डीडी फ्री डिश ते बि ॿुधी सघंदा आहियो। असांजो प्रोग्राम शुरू थी चुको आहे। तफ़सील कुझु हिन रीति आहिनि। सभु खां अवल तव्हां भगत कंवर राम जे मिठड़े आवाज़ में कलाम ॿुधंदा। तंहिंखां पोइ तबसिरो पेश कयो वेंदो। 6:40 ते सूफ़ी कलाम ॿुधंदा। प्रोग्राम जे आख़िर में ख़ासि ख़ासि ख़बरूं नशर कयूं वेंदियूं। इहा त हुई असांजे प्रोग्राम जी तफ़सील। हींअर अचो त ॿुधूं भगत कंवर राम जे मिठड़े आवाज़ में कलाम।

तवां भगत कंवर राम जी जे मिठड़े आवाज में कलाम बुधी रहा हुआ। तवां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस बुधी रहा आयो। हियर पेश आहे तबसरो। हिंदुस्तान ए कोरिया जी जमहूरियत आरओके बे मुल्क आमिर समुंडी ख्वाबुन सा गड आहिन ए समुंडी सनातन जे मैदान में परबवसियतर गडियल मुहाफतम ए मुकम्मिल तालुकात शेयर कन था। हिंदुस्तान जे तेज इक्तिसादी तरक्की ए उन जे मरियत में बिनल कमामीत सा सामुंडी शाबो हिंदुस्तान जे सिक्योरिटी ए खुशहाली लाए अहम आहे। दक्षिण कोरिया जे सदर ली जे मीवंग जो ताज दौरे दौरान बिन्ही पासन ते इतफाक कयो वियो त सामुंडी अमृतकाल 2047 विजन जे तहत हिंदुस्तान जे सामुंडी अजाइम आरओके सा डिघी मुद्दत जे तवाउन लाए काफी मौका पैदा कया आहिन। एक दोस्ताना कौम जैमें माशू जहाज साजी ए सामुंडी सलाहितुन आहिन। जहाज साजी बंदरगाहन जी तरक्की ए समुंडी रास्ते में तवाउन हिंदुस्तान आरओ के खास स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बिन्ही कौमन लाए अमली फायदन ए इक्तिसादी कदुर जे तरफ चैनल करे सके थो। जने त उनन जे माण्हुन में गहरी समझ ए भाईचारी कायम करे सकजे थी। हिंदुस्तानी पासे आरओ के तरफ मुल्क में वडे पैमाने ते ग्रीन फील्ड शिप बिल्डर क्लस्टर कायम करण जे मौकन ए हिंदुस्तान जी हुकूमत जे शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम तहत मौजूद तरगीबन सा गड लागापियल रियासती हुकूमतन ए हिंदुस्तानी माली इदारन पारा मुहैया कयल तरगीबन बाबत आगाह कयो। हिंदुस्तानी पासे आरओके जी जय जय माशू जहाज ठाहींदड़ के उनन क्लस्टरन लाए टेक्निकल ए स्ट्रेटेजिक एंकर्स तौर दावत डिनी। डिजाइन पैदावार इंजीनियरिंग जल्दी पैदावार मयार ए हिफाजती फ्रेमवर्क ए ऑपरेशन में फहाल शमूलियत जरिए आरओके जे तरफ कारोबारी शाबी जे शमूलियत जे बुनियाद ते तावन जी तरक्की जी उम्मीद जो इजहार कयो। बिन्ही पासन कोरियाई सनातन ए हिंदुस्तान जे विच में तावन जो मजबूत नोटिस वरतो आहे। जीअं त दखण हिंदुस्तान में हिक वडी ग्रीन फील्ड शिपयार्ड जे गडियल तरक्की फाइनेंसिंग अमल दरामद ऑपरेशन लाइ कोरियन जहाज ठाहींदड़ कंपनी एचडी कोरिया शिप बिल्डिंग एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड एचडीकेएसओए सुणाप थियल क्लस्टर डेवलपर ए सहूलतकार ए सरमाएदारी फराहम कंद मेरी टाइम डेवलपमेंट फंड एमटीएफ जे विच में एक गैर पाबंद एमओयू जो नतीजो उनन मंसूबे जे जल्द अमलदार आमद जी उम्मीद जाहिर कई। हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुस्तान में सरकारी एजेंसियों पारा 400 प्लस जहाजन जी हासिल जे मंसूबे जो ऐलान कयो आहे जे कुल की

कीमत ॿ दहाई ॿ लख करोड़ रुपया तकरीबन 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर आहे। मकामी पैदावार लाइ हिंदुस्तान जी हुकूमत जे पैदावार ते ॿधल माली मदद जो नोटिस वठंदी। ॿिन्ही पासनि हिंदुस्तान ऐं आरओके जी जय लाॻापियल सनातन जे तआवुन जी हिमायत कई त जीअं हिन मुताबिक़ खे विस्तरी भाईचारी में चैनल करण लाइ हिकु मौसर तआवुन मैकेनिज़म क़ाइमु करे सघिजे। पाएदार ऐं लचकदार जहाज ठाहिण वारी सनत खे वधायो वञे। ब्राउन फील्ड गुंजाइश वधाइण वारी शिपयार्ड लाइ हिंदुस्तान जी हुकूमत पारां फराहम कयल माली मदद जे एतराफ़ में ॿिन्हिनि पासनि हिंदुस्तान ऐं आरओके कारोबार जे विच में मौजूदु हिंदुस्तानी शिप यार्ड खे अपग्रेड करण लाइ तआवुन जे हिमायत कई, जंहिंमें ॾखण हिंदुस्तान में हिकु ब्लॉक फैब्रिकेशन सहूलियत शामिल आहे, जेका वॾी ऐं ख़ासि जहाज़नि जे तामीर लाइ हिकु नए खु़श्क डाक जी मदद लाइ ठही पई वञे। नई दहिली ऐं सियोल जो ख़्यालु आहे त हिंदुस्तानी जहाज़ साज़ी लाइ हिंदुस्तानी हुकूमत जे पॉलिसी ऐं माली मदद सां जहाज़ साज़ी ऐं मुआविन सनातनि में इस्तेमाल थींदड़ हिसनि जे इज़ाफ़ी पैदा थींदी। ख़ासि कोरियाई जहाज साजी जे हुनर जे ठाहींदड़ खे मक़ामी पैदावार ज़रिए पंहिंजो कारोबार वधाइण लाइ हिकु पुरकशिश मार्केट फराहम कंदी। इन मक़सद लाइ उन्हनि मुंबई में कोरिया मेरी सामान एसोसिएशन KOMEA जे हिकु शाख खोलण ऐं लाॻापियल तआवुन लाइ कोरिया मेरी सामान रिसर्च इंस्टीट्यूट KOMERI जे दिलचस्पी जो इस्तक़बाल कयो। उन्हनि हिंदुस्तानी जहाज़ साज़ी जे माहौलियाती निज़ाम जी वाद खे हथ ॾियण लाइ ॿिन्ही मुल्कनि जे लाॻापियल इदारनि ऐं इदारनि जे विच में तआवुन वधाइण ते पिण इतफ़ाक़ कयो। ॿिन्ही धुरियनि कोरिया इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी KOICA पारां हिंदुस्तान जे बंदरगाहनि शिपिंग ऐं वॉटरवेज MOPSW जे वज़ारत सां भाईचारे में लागू कयल हिकु मनसूबे ज़रिए हिंदुस्तान में जहाज़ साज़ी जे शाबी में महारत जी तरबियत ते तआवुन करण ते इतफ़ाक़ कयो। उन्हनि नोट कयो त ही मनसूबो ॿिन्ही मुल्कनि जे विच में तरक़ियाती तआवुन ऐं अवामी निजी भाईचारे ज़रिए हिंदुस्तान जे जहाज़ साज़ी जे मक़सदनि लाइ कुशल सलाहियत जी तामीर में हिसो वठंदो। हिंदुस्तानी तरफ कोरियाई जहाज मालिकनि खे हिंदुस्तान में जहाजनि खे निशानो बणाइण लाइ हिंदुस्तान जे गिफ्ट IFSCAE समुंद्र इस्तेमाल करण जी हौसला अफ़ज़ाई कई त जीअं आरामदह मिल्कियत जे जोड़जक ऐं दस्तियाबी माली तरगीबनि मां फ़ाइदा हासिल करे सघजनि। ॿिन्ही तरफ़नि बंदरगाह जी तरक़ी लाइ तआवुन लाइ हिंदुस्तान जी MOPSW ऐं आरओके में समुंड ऐं मछी मारण वारी वज़ारत जे विच में हिकु MOU ते दस्तख़त जो इस्तक़बाल कयो, जंहिं तरक़ी इल्म जे हिसेदारी वग़ैरह में तआवुन शामिल आहे। इहो कोरियाई बंदरगाहनि जी डेवलपर्स ऐं टर्मिनल ऑपरेटर्स लाइ ईंदड़ 5 सालनि में हिंदुस्तान जे मज़बूत PPP मैकेनाइज़ेशन पाइपलाइन में हिसो वठण जा मौक़ा खोलींदो आहे, जंहिं जी क़ीमत अंदाज़नि 13.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर आहे, जंहिंमें 23 मिलियन TEU विथ कंटेनर पोर्ट महाराष्ट्र बौदा ओडिशा में 150 MTPA मल्टीपर्पज टर्मिनल दीनदयाल पोर्ट गुजरात जो 135 MTPA जदीद टर्मिनल ऐं ॿिया शामिल आहिनि। ॿिन्ही तरफ़नि ॿिन्ही मुल्कनि जे सामुंडी वर्से जे क़दीम शुरूआति खे फ़ख़्र सां यादि कयो। हिंदुस्तानी धुरी शेयर कयो त नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स NMHC खे हिंदुस्तान जी रियासत गुजरात में लोथल में दुनिया जी सभ खां वॾी मेरीटाइम कॉम्प्लेक्स तौर तरक़ी ॾिनी पई वञे। ॿिन्ही धुरियनि मेरीटाइम हेरिटेज शाबी में तआवुन ते हिकु मुफ़ाहतम जे यादाश ते दस्तख़त करण जो इस्तक़बाल कयो त जीअं शेयरिंग नवादिरात ऐं मालूमात जे तबादले टेक्नोलॉजी मदद गडि॒यल घरनि ऐं इदारनि सां तआवुन खे आसान बणाए सघिजे।

तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डी डी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो।

हींअर पेश आहिनि सूफ़ी कलाम, सभ खां अवल अचो असां ॿुधूं आबिदा परवीन जो सूफ़ी कलाम।

तव्हां संत कंवर राम जी जो कलाम आबिदा परवीन जी आवाज में ॿुधी रहिया हुआ। हाणे अचो ॿुधूं था निर्मल चैनानी जी आवाज में कलाम।

तव्हां निर्मल चैनानी जी आवाज़ में कलाम ॿुधी रहिया हुआ। हीअ आकाशवाणीअ जी सिंधी सर्विस आहे। हींअर पेश आहिनि ख़ासि ख़ासि ख़बरूं। भारत ऐं त्रिनिनाद ऐं टोबैगो अठनि मुहादनि ते सहियूं कयूं आहिनि, जिन में सियाहत, सिहत ऐं आयुर्वेद जा सेक्टर शामिल आहिनि। अमेरिकी सदर डॉनल्ड ट्रम्प ओलह एशिया जे तकरारनि दौरान ईरान जी अमन तजवीज़ खे मुकमल तौर ते नाक़ाबिले क़बूल करार ॾींदे रद्द करे छडि॒यो। रूस जो चवणु आहे त नेटो या जर्मनी सां का बि जंग न थींदी ऐं ख़बरदार कयो वियो आहे त यूरोप में गडि॒यल एटमी शील्ड बराज़म जे स्ट्रेटजिक तवाज़ुन खे तब्दील करे सघे थी। पाकिस्तान जे सूबे खैबर पख्तूनख्वा में खुदकुशी हमले में 15 सिक्योरिटी अहलकार मारिजी विया। ऐं इंडिया अॼु खां गांधीनगर गुजरात में सन्मान वारी 2026 एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जी मेज़बानी कंदो।

तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया आहियो। हींअर असांजे प्रोग्राम जो वक़्त पूरो थी रहियो आहे। वरी तव्हां सां गॾिजाणी थींदी सुभाणे सुबुह जो भारतीय वक़्त मुताबिक़ 6:30 लॻे। तेसीं ताईं ॾींदा इजाज़त। सदाई गॾु।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लोगों से ईंधन का संयमित उपयोग करने की अपील की।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। श्री मोदी सोमनाथ महादेव की पूजा करेंगे और कुंभाभिषेक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हिमंता बिस्व सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री सरमा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नवन्ना स्थित राज्य सचिवालय में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 5 मंत्रियों को विभागों का वितरण किए जाने की उम्मीद है। इन्होंने शनिवार को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। बैठक में आयुष्मान भारत, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की संभावना है। इस दौरान जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस अधीक्षकों और विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ बैठकों में प्रशासनिक और कानून व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को उतारकर उनके देशों में भेजा जा रहा है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी यात्रियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत अलग रखा जाएगा। स्पेन और फ्रांस के नागरिकों को लेकर सरकारी विमान स्थानीय समयानुसार कल दोपहर मैड्रिड और पेरिस पहुंचे। यात्रियों को परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। कनाडा, तुर्की, ब्रिटेन, आयरलैंड और अमरीका के नागरिकों के आज पहुंचने की उम्मीद है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहाज के सभी यात्रियों के लिए 42 दिन के क्वारंटाइन की सिफारिश की है। स्पेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि हंता वायरस से प्रभावित जहाज से उतारे गए दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं है। इस जहाज पर 2 भारतीयों सहित लगभग 150 लोग सवार थे। रूस ने कहा है कि वो नेटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच पर चर्चाओं से महाद्वीप का रणनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। जर्मनी में रूस के राजदूत सर्गेई नेचायेव ने बर्लिन में कहा कि यूरोप में परमाणु खतरों के किसी भी विस्तार से रूस को अपने परमाणु सिद्धांत पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मॉस्को को सैन्य खतरों का सामना करना पड़ा तो वो संयम की गारंटी नहीं दे सकता। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया था। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अर्थात 810 किलोहर्ट्स डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। 7:10 हुए हैं और अब वक्त है कार्यक्रम संगीतिका का। संगीतिका कार्यक्रम में आइए सुनते हैं भजन निशा से, और संगत कलाकार हैं सलीम अहमद तबले पर, विनय प्रसन्ना बांसुरी पर और दामोदर लाल घोष हारमोनियम पर। सबसे पहले सुनिए मीराबाई की ये रचना।

इसी के साथ संगीतिका कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। संगीतिका कार्यक्रम में आप सुन रहे थे भजन निशा से, और संगत कलाकार थे सलीम अहमद तबले पर, विनय प्रसन्ना बांसुरी पर और दामोदर लाल घोष हारमोनियम पर। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। और अब वक्त है कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग का। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस गीत से।

0: आप?
1: दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए ताजगी भरे सवेरे में। उम्मीद है आपकी सुबह मुस्कुराहट और सकारात्मक ऊर्जा के साथ, पॉजिटिव वाइब्स के साथ शुरू हो गई होगी।
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
3: सो इजी।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग अनुराधा के साथ। और दोस्तों, दिन की शुरुआत अगर सही तरीके से की जाए तो पूरा दिन शानदार बन सकता है। तो चलिए फिलहाल सुनते हैं मोहित चौहान की आवाज में फिल्म मैरी कॉम का ये गीत।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, हर सुबह एक नया संदेश लेकर आती है, उम्मीद की रोशनी की और नए सपनों की। और इसी भावना को सलाम करते हुए सुनते हैं ये गीत।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह, अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

दोस्तों, सुबह की ताजगी, थोड़ी ऊर्जा और भाई मीठे मीठे गीत, थोड़ी सी धुन, इन सब का मेल दिन को बनाता है कुछ खास।

जी हाँ दोस्तों, जीवन एक किताब है और रोज एक नया पन्ना हमें लिखना है, अपने साहस से, अपने विश्वास से।

0: इस गीत के साथ ही आज का गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 8 बजने को है, थोड़ी देर में प्रसारित होगा समाचार प्रभात।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का

0: शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया और AFC Under-17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक जनसभा में नागरिकों से एक वर्ष के लिए पेट्रोल और डीजल के संयमित उपयोग, अनावश्यक विदेशी यात्रा से बचने, सोने की खरीदारी नहीं करने और स्थानीय वस्तुओं को प्राथमिकता देने जैसे उपाय अपनाने की अपील की।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ये पर्व मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई मार्ग से जामनगर से सोमनाथ पहुंचेंगे। हेलीपैड पर उतरने के बाद वे वीर हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो के दौरान जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सपना देखा था। श्री मोदी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे तथा मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण भी करेंगे। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम सोमनाथ के आकाश में रोमांचक एयर शो प्रस्तुत करेंगी। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वे एक विशेष स्मारक डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: बाद में प्रधानमंत्री वडोदरा जाएंगे। वे शाम लगभग 6 बजे सरदार धाम हॉस्टल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना में 1,000 लड़कों और 1,000 लड़कियों के लिए हॉस्टल की सुविधाएं शामिल हैं। इसमें सेंट्रल डाइनिंग हॉल, पुस्तकालय और ऑडिटोरियम जैसी सुविधाएं भी हैं। श्री मोदी सरदार धाम परिसर में विभिन्न सुविधाओं का भी दौरा करेंगे, जिनमें रिसेप्शन एरिया, नागरिक सुविधाएं, डाइनिंग एरिया और ई लाइब्रेरी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है।
3: सर्वसम्मति से भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह खानपाड़ा के वेटरनरी कॉलेज मैदान में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई गणमान्य लोगों के समारोह में शामिल होने की संभावना है। एनडीए में भाजपा, असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट शामिल हैं। गठबंधन ने विधानसभा चुनावों में 126 में से 102 सीटें जीती। भाजपा ने 82 सीटें हासिल की। श्री शर्मा पहली बार 2021 में मुख्यमंत्री बने थे। वह असम में पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता बनने जा रहे हैं जो लगातार 2 बार मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य सचिवालय नबन्ना में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: पश्चिम बंगाल की नई सरकार अपनी प्रशासनिक यात्रा शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नमन्न में पहली कैबिनेट बैठक करेंगे। उस बैठक में 5 नए शपथ ग्रहण किए गए मंत्रियों का विभागों का अन्य विभागों पर भी निर्णय दिए जाने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा के चुनावी वादे एजेंडा में सबसे ऊपर रहेंगे, जिनमें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग का लागू होना शामिल है। आज मुख्यमंत्री सचिवों, जिला स्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी मिलेंगे, ताकि प्रशासनिक कार्यों का गति और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की जा सके। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और

0: वामपंथी दलों ने भाजपा के खिलाफ संयुक्त विपक्षी मोर्चा बनाने के ममता बनर्जी का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कट्टर वाम दलों सहित सभी विपक्षी दलों से भाजपा के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया था। कांग्रेस प्रवक्ता सौम्या एच रॉय ने ममता बनर्जी की अपील खारिज करते हुए पूछा कि वो कट्टर वामपंथी समूह की बात क्यों कर रही हैं। उन्होंने 2013 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ माओवादी हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर पिछले चुनावों में कांग्रेस को बदनाम करने और भाजपा के उदय को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि ममता बनर्जी ने ही भाजपा को बंगाल में पैर जमाने का मौका दिया। माकपा के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम ने भी इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए ममता बनर्जी को भ्रष्ट और सांप्रदायिक बताया। सीपीआई के प्रदेश सचिव स्वप्न बंदोपाध्याय ने कहा कि ममता बनर्जी के साथ जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति के बीच सतर्क रहने तथा सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है।
3: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से यात्रा के दौरान मौसम के बारे में ताजा जानकारी रखने और सावधानी के साथ यात्रा कार्यक्रम तैयार करने का आग्रह किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। सभी संबंधित सरकारी विभागों को यात्रियों के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं SB त्रिपाठी।
0: पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान का प्रस्ताव खारिज कर दिया है।
4: इससे पहले कल ईरान ने कहा था कि उसने पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के प्रस्ताव पर जवाब भेजा है। यह जवाब पाकिस्तान के माध्यम से भेजा गया, जो ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने कहा कि पश्चिमी देशों के साथ बातचीत को आत्मसमर्पण या पीछे हटने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल रात राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के उच्च संवर्धनित यूरेनियम भंडार को हटाने की आवश्यकता पर सहमत हुए, जो वार्ता का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। ईरान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अमरीकी समुद्री अभियानों के साथ फ्रांसीसी या ब्रिटिश युद्धपोतों की किसी भी तैनाती का निर्णायक और तत्काल जवाब दिया जाएगा। फ्रांस के अधिकारियों ने कहा कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गॉल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के नेतृत्व में रणनीतिक जलमार्ग में नौवहन की स्वतंत्रता बहाल करने के प्रयासों के तहत इस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। समाचार कक्ष से कृष्ण।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
5: सुजो में AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज मेजबान चीन और भारत आमने सामने होंगे। ये मैच जीतते ही भारत फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में जगह पक्की कर लेगा। भारत इससे पहले 2017 और 2022 में मेजबान के तौर पर इस विश्व कप में हिस्सा ले चुका है, लेकिन उसने प्रतियोगिता के जरिए क्वालिफाई नहीं किया था। भारत ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। इस बीच भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। फाइनल में कलयश कुमार ने 33 किलो वर्ग में, 37 किलो वर्ग में वसंत कुमार ने, 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने, सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में, 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासिर ने, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने जीत दर्ज की। रोहित पोथीना, नितिन नोंग, पोकांगवा मेईतेई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना देव और सुशांत जयानी को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। इधर IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा।
0: पश्चिम बंगाल में विशेष जांच दल ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की निजी सहायक

0: चंद्रनाथ रथ की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 3 कुख्यात शूटर हैं। हत्या की साजिश में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0112311 07171 17 और 0112317106। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद विशाल। पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न चुनौतियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों से आह्वान, दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। पेट्रोल, डीजल और गैस का संयम से करें इस्तेमाल। राजस्थान पत्रिका ने पीएम के हवाले से लिखा है, 1 साल सोना नहीं खरीदें, वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग करें। हिन्दुस्तान ने आर्थिक विशेषज्ञों के हवाले से लिखा है, प्रधानमंत्री की अपील का सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद, आयात बिल घटने से अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। तमिलनाडु में नई सरकार का गठन भी अखबारों की सुर्खी बनी है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय राज, 6 दशक बाद गैर द्रविड़ सरकार, टीवीके प्रमुख विजय ने ली सीएम की शपथ। वहीं देशबंधु की सुर्खी है, केरलम में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर संशय बरकरार। बदलाव का चेहरा शीर्षक से अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का चक्र तोड़ते हुए थालापति विजय का मुख्यमंत्री बनना इस बात का प्रतीक है कि राज्य नई ऊर्जा, नई सोच और नए राजनीतिक प्रयोग की ओर बढ़ रहा है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि मुख्यमंत्री विजय केंद्र राज्य संबंधों में संतुलन बनाने में कैसी परिपक्वता दिखाते हैं और सुशासन की मिसाल कायम करते हैं। भारत की सभ्यता का प्रतिबिंब सोमनाथ शीर्षक से केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री का लेख नवभारत टाइम्स में है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने लिखा है, कोई सभ्यता तब तक मजबूत रहती है जब तक वो अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। लोकतंत्र की ताकत संघर्ष में नहीं बल्कि संतुलन और सम्मान में है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान पंजाब केसरी में है। एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा कि 1947 से संसद और विधानसभाओं द्वारा लाए गए बदलाव देश में लोकतंत्र की मजबूती को बताते हैं। झूठ को तोड़ता और सच को जोड़ता चीन सीमा पर सेना का रेडियो। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार भारत चीन सीमा से लगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सेना के ये रेडियो स्थानीय बोलियों में मौसम के अलर्ट के साथ साथ संवेदनशील सीमा पर गलत जानकारी से निपटने में मददगार साबित हो रहे हैं।
0: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से 1 वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्वा सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच 4 धाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। और AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अर्जेस सिटीजन्स नॉट टू बाय गोल्ड फॉर अ ईयर, रिड्यूस फ्यूल कंजम्पशन एंड कंजर्व फॉरेन एक्सचेंज अमिड वेस्ट एशिया क्राइसिस। Prime Minister Modi to participate in Somnath Amrit Parv in Gujarat today to also inaugurate Sardar Dham Hostel in Vadodara.

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया बहरान के दौरान शहरियों से जोर देकर कहा है कि वो एक साल तक सोना न खरीदें, ईंधन की खपत कम करें और गैर मुल्की ज़रे मुबादला का तहफ्फुज करें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शिरकत करेंगे। वो वडोदरा में

0: सरदार धाम हॉस्टल का इफ्तिताह भी करेंगे। आसाम के गवर्नर ने हेमंत विश्व शर्मा को रियासत में नई हुकूमत की तश्कील की दावत दी है। उत्तराखंड इंतजामिया ने चार धाम यात्रियों और सयाहों से कहा है कि वो मौसम की खराब सूरत हाल के दौरान चौकन्ना रहें और हिफाजत के साथ सफर करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की अमन तजवीज के तई ईरान के जवाब को पूरी तरह नाकाबिल कबूल करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। और फुटबॉल में आज सूचाओं में 17 साल तक की उम्र की खवातीन के AFC एशियाई कप में अहम क्वार्टर फाइनल मैच में भारत का मुकाबला मेजबान चीन से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया बहरान के दौरान शहरियों से जोर देकर कहा है कि वो एक साल तक सोना न खरीदें, ईंधन का कम इस्तेमाल करें और गैर मुल्की ज़रे मुबादला की बचत करें। हैदराबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने वर्क फ्रॉम होम के तरीके को एक बार फिर अपनाने के लिए कहा। यह राजधानी कई मुल्कों में ईंधन की रिकॉर्ड ऊंची कीमतों के तनाजुर में की गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने यह अपील ऐसे वक्त की है जब खाम तेल की आलमी कीमतों में मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी और आबनाए हुरमुज में रुकावटों की वजह से इजाफा हो गया है।
1: एक जमाना था जब संकट आता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा।
0: वज़ीर-ए-आज़म ने शहरियों से अपील की है कि वो बेधड़क अखराजात पर गौर करें क्योंकि मुल्क को तवानाई की आलमी कीमतों के इजाफे से इक्तसादी दबाव का सामना है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने शहरियों से भी कहा है कि वो खुरदनी तेल का भी इस्तेमाल कम करें। उन्होंने किसानों से जोर देकर कहा है कि वो बैरून मुल्क से दरामद की गई कीमियावी खादों पर इन्हेसार कम करें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सोमनाथ अमृत पर्व 2026 में शिरकत करेंगे। ये तकरीब पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर की तामीर नौ के 75 साल पूरे होने के मौके पर मनाई जा रही है। जनाब मोदी भगवान सोमनाथ की पूजा अर्चना करेंगे, कुंभाभिषेक रस्म अदा करेंगे और बाद में अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। एक रोड शो का भी इत्माम किया गया है। इस मौके पर वजीर आला भूपेंद्र पटेल और नायब वजीर आला हर्ष सांघवी भी मौजूद होंगे। तफसील हमारे नामानिकार से।
2: वजीर आजम नरेंद्र मोदी जामनगर से सोमनाथ फजाई रास्ते से पहुंचेंगे। वो हेलीपैड पहुंचने के बाद एक रोड शो के दौरान आवाम को मुबारकबाद भी देंगे। इस रोड शो का इनेकाद वीर हमीरजी गोहिल सर्कल तक किया गया है। इसके बाद वजीर आजम सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्मे पर गुलाय अकीदत नजर करेंगे जिन्होंने सोमनाथ मंदिर को नए सिरे से तामीर करने का तस्वुर पेश किया था। इस मौके पर भारतीय फजाइया की एरोबेटिक टीम सूर्य किरण सोमनाथ की फजा में एक सनसनीखेज एयर शो पेश करेगी। इस मौके पर वजीर आजम एक अवामी जलसे से भी खिताब करेंगे। वो एक खसूसी यादगारी डाक टिकट और 75 रूपये का एक खसूसी यादगारी सिक्का भी जारी करेंगे। सोमनाथ से मयूर सोलंकी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्बाद।
0: आसाम के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने रियासत में एनडीए की लगातार तीसरी मुद्दते कार के लिए राह हमवार करते हुए मुंतखब वजीर आला हेमंत बिस्व शर्मा को नई हुकूमत तश्कील देने के लिए मदु किया है। बीजेपी की क्यादत वाली एनडीए कानून साज पार्टी का मुत्तफिक तौर से लीडर मुंतखब होने के बाद जनाब शर्मा ने इत्तेहादी पार्टियों के लीडरों के साथ लोकभवन में गवर्नर से मुलाकात की और बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत तश्कील देने का दावा पेश किया। गवर्नर मौसूफ जनाब शर्मा और वुजरा की कौंसिल के नए मेंबरों को कल ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। हलफबरदारी की तकरीब खनपाड़ा के वेटरिनरी कॉलेज प्ले ग्राउंड में मुनाकिद की जाएगी। तवक्को है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और बीजेपी के सदर नितिन नवीन के अलावा दीगर मोजजीन इसमें शिरकत करेंगे। मगरबी बंगाल के वजीर आला सुवेंदु अधिकारी आज नाबन्ना में रियासती सेक्रेटरिएट में वजीरों की काउंसिल की एक मीटिंग की सदारत करेंगे। तफसील हमारे नामनिगार से।
3: कल हलफ बरदारी की तकरीब मुनक़िद हो गई, जिसके बाद अब मगरबी बंगाल की नई सरकार अपनी इंतजामिया का सफर शुरू करने को तैयार है। वजीर आला सुवेंदु अधिकारी आज नाबन्ना में अपनी पहली काबीना मीटिंग की सदारत करेंगे। इम्कान है कि मीटिंग में उन 5 नए वजीरों के कलमदान मुख्तस किए जाएं जिन्हें कल हलफ दिलाया गया है। मुमकिन है कि दीगर महकमों के बारे में भी कोई फैसला किया जाए। जराए ने कहा है कि बीजेपी के इंतखाबी वादे एजेंडा में सरे फहरिस्त रहेंगे, जिनमें आयुष्मान भारत, सेहत स्कीम और अन्नपूर्णा भंडार शुरू किया जाना और रियासती मुलाजिमीन के लिए 7वीं तनख्वाह कमीशन पर अमल दरामद शामिल है। आज वजीर आला इंतजामिया के कामकाज की रफ्तार और नज्म जब्त की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए सेक्रेटरीज, जिला मजिस्ट्रेट्स और सीनियर पुलिस अफसरान से भी मुलाकात करेंगे। बीजेपी के 9 मुंतखबा कानून साजरकान से भी कहा गया है कि वो इस मीटिंग में शिरकत करें। कोलकाता से संदीपन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए नीतिका त्यागी।
0: इसी दौरान कांग्रेस और बाएं बाजू की पार्टियों ने बीजेपी के खिलाफ एक मुत्तहिद अपोजिशन महास की टीएमसी सरबराह ममता बनर्जी की अपील को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। मोहतरमा बनर्जी ने एक वीडियो पैगाम में कांग्रेस, सीपीआईएम और इंतहाई बाएं बाजू ग्रुपों समेत सभी अपोजिशन ताकतों से जोर देकर कहा है कि वो बकौल उनके सबसे पहले दुश्मन के खिलाफ यकजहत हो जाए। कांग्रेस तर्जमान सौम्य आईच राय ने इस अपील को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने ममता बनर्जी की तरफ से इंतहाई बाएं बाजू के ग्रुपों के जिक्र और 2013 में कांग्रेस कारकुनों के खिलाफ माओ नवाजों के तशद्दुद को याद करने पर सवाल उठाया है। सीपीआईएम की रियासती सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम ने भी इस तजवीज को पूरी तरह मुस्तरद कर दिया है और मोहतरमा बनर्जी को एक बदउनवान और फिरका परस्त शख्सियत करार दिया है। सीपीआईएम की रियासती सेक्रेटरी स्वपन बंदोपाध्याय ने भी कहा है कि ममता के साथ हाथ मिलाने का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने उन्हें मनमाने तौर पर काम करने वाली और गैर जमहूरी शख्सियत करार दिया है। सीपीआईएमएल लिबरेशन के अभिजीत मजुमदार ने भी तृणमूल कांग्रेस को एक दाएं बाजू की तहकुमाना पार्टी कहा है। तमिलनाडु में 9 मुंतखबा असेंबली का पहला इजलास आज से शुरू होगा। उबूरी स्पीकर एमवी करुपैया नए मुंतखब एमएलए को हलफ दिलाएंगे। अरकान के हलफ लेने के बाद आज या कल स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा। टीवी के सरबराह सी जोसेफ विजय की क्यादत वाली नई हुकूमत को इस महीने की 13 तारीख से पहले अपनी अक्सरियत साबित करना होगी। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने आज टेक्नोलॉजी के कौमी दिन के मौके पर टेक्नोलॉजी माहिरीन और जदीद टेक्नोलॉजी से वाकिफ नौजवानों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब शाह ने कहा कि हुकूमत यकसर तब्दीली लाने वाले मुख्तलिफ इकदाम और इख्तिराई सलाहियतों को बरूएकार लाकर भारत की तरक्की को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि यह दिन हर शख्स को मुल्क के अजीम सफर को मजीद तेज करने और अपनी सलाहियतों से फायदा उठाने की तरगीब देगा। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत अब काबिल तजदीद तवानाई की सलाहियत के लिहाज से दुनिया में तीसरे मकाम पर पहुंच गया है। मोर्गन स्टेनले की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत की काबिल तजदीद तवानाई की जानिब मुंतकिली बैरूनी इन्हेसार कम करने में मदद फराहम करेगी। ताहम इसकी कामयाबी इस बात पर मुनसिर होगी कि मुल्क शमसी सेल्स, वेफर्स और पॉलीसिलिकॉन जैसे अहम शोबों को कितनी तेजी से मकामी सतह पर फरोग देता है। नई और काबिल तजदीद तवानाई की वजारत के आदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क में सोलर मॉड्यूल की पैदावार की सलाहियत मार्च 2024 में 38 गीगावाट से बढ़कर मार्च 2025 में तकरीबन दोगुना होकर 74 गीगावाट तक पहुंच गई है। इसी तरह सोलर सेल की सलाहियत भी 9 गीगावाट से बढ़कर 25 गीगावाट हो गई है। उत्तराखंड इंतजामिया ने चार धाम यात्रा के यात्रियों और सयाहों से अपील की है कि वो पहाड़ी रियासत में मौसम के खराब हालात के पेशेनजर मोहतात रहें और महफूज तरीके से सफर करें। भारत के महकमे मौसमियात आईएमडी ने उत्तराखंड के मुख्तलिफ इलाकों खसूसन पहाड़ी खित्ते में कल और परसों बारिश और खराब मौसम के इम्कान के तनाजुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम को मद्देनजर रखते हुए गढ़वाल डिवीजन के कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने अकीदतमंदों और सयाहों से अपील की है कि वो अपने सफर के दौरान मौसम से मुतालिक ताजा तरीन मालूमात हासिल करते रहें और इंतहाई एहतियात के साथ अपनी यात्रा की मंसूबाबंदी करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की ताजा तरीन अमन तजवीज को पूरी तरह नाकाबिले कबूल करार दिया है। अलबत्ता मगरबी एशिया में कई महीने से जारी महाजाराई के खात्मे

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे विपुल कुमार राय से सितार पर राग अहिरी तोड़ी। तबले पर संगत कर रहे थे उस्ताद अख्तर हसन। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 809 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

यार और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की पहली मजलिस का अब आगाज होता है। नजर डालते हैं इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों पर। अब से चंद ही लम्हों के बाद सुबहगाही प्रोग्राम में आप सुनेंगे हमद बारिय ताला और नाते रसूल पाक। 9:45 पर आज सवेरे प्रोग्राम होगा। खबरें 9:50 पर नशर की जाएंगी और 10 आप सुनेंगे अकवाल जरी का प्रोग्राम शम्मे फरोजा। 10:05 पर हुस्ने गजल प्रोग्राम में आप सुनेंगे गैर फिल्मी गजलें। 10:30 पर एक ड्रामा नशर किया जाएगा, उनवान है उमर खयाम। 11 मेरी पसंद प्रोग्राम होगा। 11:30 पर आप सुन सकते हैं रेडियो डॉक्टर। दिन में 12 खबरें नशर होंगी। 12:10 से मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम पेश किया जाएगा। दौरानी प्रोग्राम तारीख साज प्रोग्राम होगा। 12:45 पर आप सुन सकते हैं प्रोग्राम सुर्खियों में आलमी खबरें। दिन में 1 नशर होंगी और 1:15 पर आज की पहली मजलिस खत्म हो जाएगी। ये थी एक नज़र आज की मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों पर। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है प्रोग्राम सुबगाही।

0: little thing is gonna be all right.
1: जी बिल्कुल शगुन. और अब आगे बढ़ते हैं, हम याद कर रहे हैं रामाकांत शुक्ला को. संस्कृत और हिंदी भाषाओं के भारतीय विद्वान रहे ये. भारत सरकार ने इन्हें साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2013 में पद्मश्री से सम्मानित किया. और इसके अलावा 40 साल तक संस्कृत समाचार इन्होंने पढ़े. और इनका मानना था कि संस्कृत मरी नहीं है, सो रही है, उसे जगाना बेहद जरूरी है. इसके अलावा इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, राष्ट्रपति सम्मान संस्कृत विद्वान के रूप में और वाल्मीकि सम्मान से भी जो है सम्मानित किया गया.
0: Today, listeners, we're also remembering Ali Asif Ali. Well, he gave up his practice in the freedom fighter. Ali Asif Ali gave up practice in law during the non-cooperation movement in the early 1920s and returned to India from England. So he took part in the nationalist movement and used his legal acumen to help nationalist leaders in courtrooms. So the revolutionaries Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru were defended by Asif Ali.
2: आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे. यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है. अब खबरें नशर की जाएंगी.
3: ये आकाशवाणी है. अब आप नीति कथियाकी से खबरें सुनिए. वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया बहरान के दौरान शहरियों से जोर देकर कहा है कि वो एक साल तक सोना न खरीदें, ईंधन की खपत कम करें और गैर मुल्की जर मुबादला का तहफ्फुज करें. वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शिरकत करेंगे. वो वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का इफ्तिताह भी करेंगे. आसाम के गवर्नर ने हिमंत बिस्वा सरमा को रियासत में नई हुकूमत की तश्कील की दावत दी है. उत्तराखंड इंतजामिया ने चारधाम यात्रियों और सयाहों से कहा है कि वो मौसम की खराब सूरत हाल के दौरान चौकन्ना रहें और हिफाजत के साथ सफर करें. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की अमन तजवीज के तई ईरान के जवाब को पूरी तरह नाकाबिल कबूल करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है. और फुटबॉल में आज सोजू में 17 साल तक की उम्र की खवातीन के एएफसी एशियाई कप में अहम क्वार्टर फाइनल मैच में भारत का मुकाबला मेजबान चीन से होगा. अब खबरें तफसील से. वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया बहरान के दौरान शहरियों से जोर देकर कहा है कि वो एक साल तक सोना न खरीदें, ईंधन का कम इस्तेमाल करें और गैर मुल्की जर मुबादला की बचत करें. हैदराबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने वर्क फ्रॉम होम के तरीके को एक बार फिर अपनाने को कहा. यह रायजनी कई मुल्कों में ईंधन की रिकॉर्ड ऊंची कीमतों के तनाजुर में की गई है. वजीर आजम ने यह अपील ऐसे वक्त में की है जब खाम तेल की आलमी कीमतों में मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी और आबनाए हुरमुज में रुकावटों की वजह से इजाफा हो गया है. वजीर आजम ने शहरियों से अपील की है कि वो बेधड़क अखराजात पर गौर करें क्योंकि मुल्क को तवानाई की आलमी कीमतों के इजाफे से इकतसादी दबाव का सामना है.

वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सोमनाथ अमृत पर्व 2026 में शिरकत करेंगे। ये तकरीब पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर की तामीर नौ के 75 साल पूरे होने के मौके पर मनाई जा रही है। जनाब मोदी भगवान सोमनाथ की पूजा अर्चना करेंगे, कुंभाभिषेक रस्म अदा करेंगे और बाद में अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। एक रोड शो का भी एहतमाम किया गया है। इस मौके पर वजीर आला भूपेन्द्र पटेल और नायब वजीर आला हर्ष सांघवी भी मौजूद होंगे। आसाम के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने रियासत में एनडीए की मुसलसल तीसरी मुद्दतेकार के लिए रहा हमवार करते हुए मुंतखब वजीर आला हेमंत बिस्वा सरमा को नई हुकूमत तश्कील देने के लिए मदु किया है। बीजेपी की कयादत वाली एनडीए कानून साज पार्टी का मुत्तफिका तौर से लीडर मुंतखब होने के बाद जनाब सरमा ने इत्तेहादी पार्टियों के लीडरान के साथ लोकभवन में गवर्नर से मुलाकात की और बाजाबता तौर पर हुकूमत तश्कील देने का दावा पेश किया। गवर्नर मौसूफ, जनाब सरमा और वुजरा काउंसिल के नए मेंबरों को कल ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। हलफ बरदारी की तकरीब खाना पारा के वेटरनरी कॉलेज प्लेग्राउंड में मुनक्किद की जाएगी। तवक्को है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और बीजेपी के सदर नितिन नबीन के अलावा दीगर मुअज्जिज़ीन इसमें शिरकत करेंगे। मगरबी बंगाल के वजीर आला सुवेंदु अधिकारी आज नाबन्ना में रियासती सेक्रेटेरिएट में वजीरों की काउंसिल की एक मीटिंग की सदारत करेंगे। इस दौरान कांग्रेस और बाएंबाजों की पार्टियों ने बीजेपी के खिलाफ एक मुत्तहिद अपोजिशन महाज की टीएमसी सरबरा ममता बनर्जी की अपील को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। मोहतरमा बनर्जी ने एक वीडियो पैगाम में कांग्रेस, सीपीआईएम और इंतहाई बाएंबाजों ग्रुपों समेत सभी अपोजिशन ताकतों से जोर देकर कहा कि वो बकौल उनके सबसे पहले दुश्मन के खिलाफ यकजहत हो जाएं। कांग्रेस तर्जुमान सौम्या राय ने इस अपील को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने ममता बनर्जी की तरफ से इंतहाई बाएंबाजों के ग्रुपों के जिक्र और साल 2013 में कांग्रेस कारकुनों के खिलाफ माओनवाजों के तशद्दुद को याद करने पर सवाल उठाया है। सीपीआईएम के रियासती सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम ने भी इस तजवीज को पूरी तरह मुस्तरद कर दिया है और मोहतरमा बनर्जी को एक बदउनवान और फिरकापरस्त शख्सियत करार दिया है। सीपीआईएमएल लिबरेशन के अभिजीत मजुमदार ने भी तृणमूल कांग्रेस को एक दाएं बाजू की तहकुमाना पार्टी कहा है। तमिलनाडु में नौ मुंतखब असेंबली का पहला इजलास आज से शुरू होगा। उबूरी स्पीकर एमवी करुप्पाया नए मुंतखब एमएलएस को हलफ दिलाएंगे। मेंबरान के हलफ लेने के बाद आज या कल स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा। टीवी के सरबराह सी जोसेफ विजय की कयादत वाली नई हुकूमत को इस महीने की 13 तारीख से पहले अपनी अक्सरियत साबित करना होगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज टेक्नोलॉजी के कौमी दिन के मौके पर टेक्नोलॉजी माहिरीन और जदीद टेक्नोलॉजी से वाकिफ नौजवानों को मुबारकबाद पेश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने कहा कि हुकूमत यकसर तब्दीली लाने वाले मुख्तलिफ इकदामात और इख्तराई सलाहियतों को बरूए कार लाकर भारत की तरक्की को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ये दिन हर शख्स को मुल्क के अजीम सफर को मजीद तेज करने और अपनी सलाहियतों से फायदा उठाने की तरगीब देगा। भारत अब काबिले तजदीद तवानाई की सलाहियत के लिहाज से दुनिया में तीसरे मकाम पर पहुंच गया है। मॉर्गन स्टेनली की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत की काबिले तजदीद तवानाई की जानिब मुंतकिली बैरूनी इन्हिसार कम करने में मदद फराहम करेगी। ताहम इसकी कामयाबी इस बात पर मुनहसर होगी कि मुल्क शमसी सेल्स, वेफर्स और पॉलीसिलिकॉन जैसे अहम शोबों को कितनी तेजी से मकामी सतह पर फरोग देता है। नई और काबिले तजदीद तवानाई की वजारत के आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में सोलर मॉड्यूल की पैदावार की सलाहियत मार्च 2024 में 38 गीगावाट से बढ़कर मार्च 2025 में तकरीबन दोगुनी होकर 74 गीगावाट तक पहुंच गई है। उत्तराखंड इंतजामिया ने चारधाम यात्रा के यात्रियों और सैयाहों से अपील की है कि वो पहाड़ी रियासत में मौसम के खराब हालात के पेश नजर मोहतात रहें और महफूज तरीके से सफर करें। भारतीय महकमा मौसमियात ने उत्तराखंड के मुख्तलिफ इलाकों खसूसन पहाड़ी खित्ते में कल और परसों बारिश और खराब मौसम के इम्कान के तनाजुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम को मद्देनजर रखते हुए गढ़वाल डिवीजन के कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने अकीदतमंदों और सैयाहों से अपील की है कि वो अपने सफर के दौरान मौसम से मुतालिक ताजा तरीन मालूमात हासिल करते रहें और इंतहाई एहतियात के साथ अपनी यात्रा की मनसूबाबंदी करें।

0: इस गजल के साथ ही आज का हुस्न गजल प्रोग्राम अब खत्म होता है। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप आकाशवाणी से उर्दू सर्विस सुन रहे हैं। लीजिए अब सुनिए अमीन मालूफ का तहरीर करदा ड्रामा उमर खयाम।
1: ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। उमर खयाम का शुमार दुनिया के मकबूल तरीन शायरों में होता है, हालांकि वो बुनियादी एतबार से एक रियाजीदान और साइंसदान थे। उमर खयाम के दौर को और उनके हम असरों की जिंदगी और उससे जुड़े मसाइल को लेबनान के मुसन्निफ अमीन मालूफ ने अपने नॉवल समरकंद में जिस खूबसूरती से कलमबंद किया है वो अपनी मिसाल आप है। अमीन मालूफ ने रुबाइयात के मखतूते की गुमशुदगी और फिर उसकी बाजियाफ्त का किस्सा सुनाते हुए हमको उस दौर की जिंदगी को जितने करीब से दिखाया है कि हम किसी फिल्म की तरह से उमर खयाम और उनके दौर को देख पाते हैं। पेश खिदमत है उमर खयाम और उनकी रुबाइयात की दास्तान का ड्रामाई अक्स, जिसे तरतीब दिया है जनाब दानिश इकबाल ने।
2: उमर खयाम को तो आप जानते हैं, मशहूर फलसफी, साइंसदान, माहिर फलकियात

0: समर खयाम, तुम समरकंद में नाशना नहीं हो। कम उम्र के बावजूद तुम्हारे इल्मो फजल के पहले ही यहां चर्चे हैं और मदरसों में तुम्हारे गुण गाए जाते हैं। यहां मशहूर है तुमने इस्फहान में इब्न सीना का एक मुश्किल रिसाला 7 बार पढ़ा और नीशापुर लौटने पर हर्फ बा हर्फ हाफिजे से दोहरा दिया।
1: खयाम की फिक्रों में अभी कोई कमी नहीं हुई थी। शाफई मजहब के काजी के मुंह से इब्न सीना का हवाला कोई बहुत काबिले इत्मीनान बात नहीं थी। अबू ताहिर ने कला

0: जारी रखा।
1: मेरे बच्चे, ध्यान से मेरी बात सुनो। परवरदिगार ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, जहानत, कादिरुल कलामी, सेहत, वजाहत, तलब इल्म और जीने और कुछ करने की ख्वाहिश। तुम्हें मर्दों से सताइश मिलेगी और मैं समझता हूं औरतों की आरजूमंद आहें। मैं समझता हूं कि जब खुदा ने सब कुछ दिया तो उसने खामोशी की दानाई से भी तुम्हें महरूम नहीं रखा, जिसके बगैर ना तो तुम्हारी किसी खासियत की कदरदानी जारी रहेगी और ना उन्हें कायम रखा जा सकता है।
0: तो क्या जो मैं सोचता हूं उसके इजहार के लिए बुजुर्गी का या फिर अपने पीर फरतूत हो जाने का इंतजार करूं?
1: कबल इसके कि वो सब जो तुम सोचते हो उसका इजहार कर सको, तुम्हारे बच्चों के बच्चे बूढ़े हो चुके होंगे। हम खौफ के अहद में राजू वाली जिंदगी बसर कर रहे हैं। तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम्हारे दो चेहरे हों, एक का रुख अवाम की तरफ रखो, दूसरे को अपने खुदा के लिए रखो। अगर तुम अपनी आंखों, कानों और जबान की सलामती चाहते हो तो भूल जाओ कि तुम उनके मालिक हो। इस किताब को अपने पास रखो। जब कभी कोई शेर तुम्हारे दिमाग से तुम्हारी नौ के जबान तक आ जाए तो उसे रोके रखो। इन औराक पर उसे नकल कर लो, और जब नकल कर रहे हो तो इस नाचीज अबू ताहिर को याद कर लेना।
2: मंगोल नस्ल का नसर खान वालिये मावरा उन नहर एक कांसी रंग का देव था, जो कारचोबी का लहराता जुम्बा पहने हुए अपने तख्त के सामने खड़ा था। उस पर छोटी छोटी अंदर को धसी हुई आंखें हाजरीन में किसी शिकार को ढूंढ रही थी। जैसे ही वो लोगों को देखता, हर इंसान अपने बराबर वाले की आड़ में सरक जाता, अपने पुश्त, गर्दन और कंधों को ढीला छोड़ देता और तूफान के गुजर जाने का इंतजार करता। जैसा कि हर हुक्मरा की समरकंद पर आमद होता था, उसे भी जश्न का दिन होना चाहिए था, लेकिन आज माहौल ठीक नहीं लग रहा था। खैर, फिर डरते डरते किसी ने कहा कि शायर लोग कसीदे पेश करना चाहते हैं।
3: शायर लोग साफ साफ सुन लें कि हम एक ही बात की तकरार सुनते सुनते थक गए हैं। हम खुद को शेर नहीं कहलाना चाहते, न बाज न उकाब। अगर किसी ने हमें आफताब कहा तो भी हमारा पैमाना ये सब्र छलक जाएगा। वो शायर जो इसके अलावा कुछ कहने से आजिज है बाहर जा सकते हैं।
2: कई शायर दो उल्टे कदम उठाकर खामोशी से खिसक गए। कतार से सिर्फ एक औरत ही निकली और मुस्तहकम चाल से आगे बढ़ी। उमर खयाम की आंखों में तजस्सुस को तैरते देखकर काजी ने सरगोशी की।
1: ये बुखारा की एक शायरा है, जहां तखल्लुस है, नौ उम्र बेवा है, बदमिजाजी उसका जेवर है।
4: इजाजत है?
3: जरूर पढ़ो।
4: तेरी दुनिया में जंगल है, हरे बागात हैं और दूर तक फैले बयाबां हैं। कहीं पर बस्तियां हैं, पहाड़ों पर उतरते बादलों में रक्स करता है समंदर चार सू, और उसी की हमरही में दो कदम चलती रही हूं मैं। हुजूम रोजो शब में किस जगह सहमी हुई हूं मैं, कहां हूं मैं, कहां हूं मैं तेरी मंजिल के रस्ते में। कहीं ठहरी हूं मैं, कहीं ठहरी हूँ मैं।
5: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह
1: वाह। और अब बारी है मुमताज आलिम और फलसफी शायर उमर खय्याम की। उमर खय्याम जिनसे नबातात का कोई राज छिपा नहीं और ना ही सितारों की कोई चाल, खय्याम आज पेश करेंगे अपनी एक नुमाइंदा रुबाई।
6: है मुद्दते उम्र बस दो रोजा गोया, नदी का सा पानी है कि सहरा की हवा, दो दिन का कभी गम नहीं होता है मुझे, एक दिन जो नहीं आया है एक दिन जो गया।
3: दो दिन का कभी गम नहीं होता है तुम्हें, एक दिन जो नहीं आया है एक दिन जो गया। वाह वाह वाह वाह, इनका मुंह जर से भर दिया जाए।
2: उमर हक्का बक्का रह गया, उसको लगा उसे उपकाई आ जाएगी। ये बात काजी अबू ताहिर की तवज्जो में आ गई और वो परेशान हो गया कि कहीं शाह को नागवार खातिर न महसूस हो।
7: बराह मेहरबानी क्या मेरे आका मुझे माफ करेंगे, मैं रोजे से हूं और अपने मुंह में कुछ डालने से आजिज।
3: लेकिन रोजों का महीना अगर मुझसे गलती नहीं हो रही तो 3 हफ्ते पहले ही खत्म हो चुका है।
7: मेरे आका, रमजान के दिनों में मैं नीशापुर से समरकंद का सफर कर रहा था। मैंने इस अहद के साथ उस वक्त रोजे नहीं रखे कि बाद में ये फर्ज पूरा कर लूंगा।
3: क्या तुमने मुझे अपने इनकार की असल वजह बताई है?
7: सिर्फ यही वजह नहीं है।
3: साफ साफ कहो, मुझसे खौफ सदा होने की हाजत नहीं।
7: ये गुर्बत नहीं जो मुझे आपके दर पे लाई है, ये गुर्बत नहीं जो मुझे आपके दर पे लाई है, मैं मुफलिस नहीं कि भूखा हूं पैसे का, आपसे सिर्फ इज्जत चाहता हूं, हालांकि ये बात मैं मुंह से नहीं कहने का।
3: वाह वाह वाह।
2: अबू ताहिर की हालत खराब थी और उसे यकीन नहीं था कि वो वहशी शाह को दोबारा काबू में ला सकेगा। कई दरबारियों ने तो तूफान की आमद से कबल ही वहां से रुखसत हो जाने में आफियत समझी। उमर खय्याम ने इस अफरा तफरी से फायदा उठाते हुए जहान की आंखों को तलाश किया। वो एक सतून से अपनी पुष्ट टिकाए खड़ी थी, इस तरह कि चेहरा हाथों में दफन था। क्या यह हो सकता है कि वो उसकी खातिर डर से कांप रही थी? बिलाखिर खान बुलंद हुआ, साबती कदमी से उमर खय्याम की तरफ आया, गले लगाया, हाथ थामा और उसे लेकर वहां से चल दिया। उस रात जब खय्याम अपने मेहमान खाने की तरफ वापस आ रहा था, जहां छोटी नहरों से घिरे एक बाग में इन दिनों उसकी रिहाइश थी, तो उसने ये सोचकर कि अब कुछ पढ़ने लिखने का वक्त कहां रहा है, चिराग साथ नहीं लिया था। उसके रास्ते पर चांद की रोशनी का मध्यम सा उजाला था। जूं जूं वो काजी के मस्कन से कुछ आगे बढ़ा, उसे बाकायदा टटोल टटोल कर अपना रास्ता तलाश करना पड़ा। खय्याम ने अभी बमुश्किल ही अपने कमरे में कदम रखा था कि उसे मीठी मीठी सी सरजनिश की आवाज सुनाई दी।
8: मुझे उम्मीद थी तुम कुछ जल्दी आ जाओगे। अरे तुम खामोश हो, यानी तुम ये यकीन करने से इनकार कर रहे हो कि कोई औरत यूं बेबकाना तुम्हारे कमरे में दराने की जरूरत कर सकती है।
7: तारीखी में नहीं जान सकता कि तुम कौन हो।
8: वो दरबार में हमारी नजरें मिली थी तो हम दोनों की आंखें चकमका उठी थी, लेकिन खान और दरबारियों की मौजूदगी से तुमने अपनी नजरें फेर ली थी।

0: शायद ये ख्याल आया हो कि एक औरत के खातिर अमीर के खैसो गजब को मोल लेने से क्या हाथ आएगा। वो भी एक बीवा जो जहेज में सिर्फ एक बेबाक जबान और एक उदास माजी ही ला सकती हो। अरे तुम तो कुछ भी नहीं बोल रहे हो। अच्छा खैर मैं खुद ही बोलती रहूंगी, और यूं भी अब तक सिर्फ मैंने ही कोई कदम उठाया है। जब तुम दरबार से जा रहे थे मैंने तुम्हारी पूछगछ की और तुम्हारी कयामगाह का पता लगाया। हाय अब कुछ तुम भी बोलो ना, बोलो।
1: मैं कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन शायद कुछ समझ सकूं इसलिए सुने जा रहा हूं। अपने लड़कपन में या उसके बाद भी जब कोई लड़की मुझे देखकर मुस्कुराई, मैंने कई बार रात को ख्वाब में उसी निगाह को मुजस्सम होते हुए देखा, गोश्त पोस्त में बदलते हुए। लेकिन ख्वाब के बाहर तुम पहली लड़की हो जो यहां मेरे साथ हो।
0: लड़की नहीं, मैं औरत हूं।
1: सिर्फ औरत नहीं, अंधेरे में दमकती हुई एक हसीन मूरत हो, और वो भी एक मजबूत दिल वाली नर्मो नाजुक शायरा।
0: नर्मो नाजुक? ये तुम्हें कैसे मालूम हुआ? तुमने तो मुझे हाथ भी नहीं लगाया, मुझे देखा तक नहीं, और यकीनन देखोगे भी नहीं, क्योंकि इससे पहले कि सूरज मुझे दिखा दे मैं यहां से रुखसत हो जाऊंगी।

0: भी हो, दरबार वाला नकाब पहने हुए हो।
1: वो अकेली नकाब जो मैं पहने हूँ वो बस रात ही है। आंखों से नहीं तो होठों से देख लो।

0: उस लजीज नशीली रात के बाद हर रोज महल में उनकी मुलाकात होती है, लेकिन वो कोशिश करते कि एक दूसरे की तरफ न देखें, कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया को दुनिया का सबसे हसीन राज मालूम हो जाए। हर शाम खयाम जल्द से जल्द अपने आशियाने पे लौट आता और अपनी महबूबा का इंतजार करता। किस्मत ने उन्हें चंद रातें ही तोहफे में दी थी।
1: दरवाजा बंद कर दो, हमारी खुशियों की आवाज किसी कान में ना पड़ जाए।
0: ठीक है,
1: कर दो दरवाजा बंद।
0: कर दिया।
1: सुनो, पहले कोई नई रुबाई सुनाओ ना।
2: वो जान जो ताजा जवानी दे दे, वो जान जो ताजा जवानी दे दे, उस जान को भर के यारे जानी दे दे।

0: ऐसे राज अपने सुनने वालों के कान जला देते हैं।
1: इस राज का असर हम पर भी पड़ता है, क्योंकि ये हमारी जिंदगी बदल देने वाला है। नसर खान मोर्चों के मुआयने के लिए आया है। गर्मी का मौसम खत्म होते ही सलजूक फौज का हमला यहाँ होने वाला है।
0: मैं सलजूक फौजों से खूब वाकिफ हूँ। मेरे बचपन की अव्वलीन यादों में सलजूक सिपाही के मजालिम बसे हैं।
1: मुझे सुनकर अफसोस हुआ।
0: मेरी पैदाइश से 10 साल पहले की बात है। मेरे शहर यानी निशापुर के बाशिंदे एक सभा उठे तो देखा कि उनके शहर को तुर्की जंगजुओं ने घेरा हुआ है। फौज की सरबराही दो भाई कर रहे थे, तुगरल बेग बाज और चगरी बेज शिकरा। ये दोनों मिखाइल इब्ने सलजूक के फर्जंद थे। शहर के लोगों को एक पैगाम आया।
2: कहा जाता है कि तुम्हारे नौजवानों को अपनी शान और शौकत पर बहुत नाज है। अगर तुमने हमें रोकने की कोशिश की तो तुम्हारे सारे सजीले जवान जेरे जमीन होंगे। हम ये शहर बूढ़े बुजुर्गों का शहर बना देंगे।
0: शहर के लोगों ने हमलावर फौज से वादा लिया कि वो लोग शहरियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और शहर के दरवाजे खोल दिए। लेकिन एक फातेह के वादों का क्या भरोसा?
1: उन्हें लड़ना चाहिए था।
0: हाँ बिल्कुल। जब लश्कर शहर में दाखिल हुआ तो बड़ा भाई शिकरा बेग अपनी फौज को सड़कों और बाजारों में खुले बंदों छोड़ देना चाहता था कि जो चाहो करो। छोटा तुगरल माह रमजान का एहतराम करना चाहता था, क्योंकि रोजों के दौरान एक इस्लामी शहर में कत्लो गारत गरी हराम थी। शिकरा थोड़ी देर के लिए छोटे भाई की दलील मान गया और चारों नाचार उस वक्त का इंतजार करने लगा जब रमजान खत्म होगा और उसकी फौज की ईद होगी। जब शहर वालों को भाइयों की बहस की हवा लगी और एहसास हुआ कि ईद के दिन से औरतों से जना बिल जबर और मर्दों का कत्लेआम होने वाला है तो बस यहीं से खौफ अजीम की इब्तिदा हुई। जिना बिल जबर से ज्यादा हतकामेस उसकी नागुजीरियत का एहसास है, यानी हर औरत बाई से जिल्लत इंतजार में मुब्तला थी और मर्द मरने के लिए। दुकानें खाली हो गईं, मर्द कहीं जा छुपे और उनकी बीवी बेटी ने उन्हें अपनी बेचारगी का मातम करते देखा। क्या करें, कैसे फरार हों, किस राह से जाएं? जालिम हर तरफ दनदनाते फिर रहे थे। वो मुसलसल पिए हुए होते और भयानक मजालिम की उम्मीद में दीवाने हो रहे थे।
1: खुदा ने इंसान को बनाकर एक अजीम गलती की है।
0: क्या रमजान में हर शख्स रोजों के खत्म होने और ईद की आमद की ख्वाहिश नहीं करता? पर उस साल वो चाहते थे कि रोजे कभी खत्म ही ना हो, ईद कभी ना आए। जब ईद का चांद नजर आया तो ना कोई खुश हुआ ना मुस्कुराया। पूरा का पूरा शहर ही कुर्बानी का बकरा था। चांद रात जब भले लोगों की हर उम्मीद पूरी होती है, शबे आजाद थी। हजारों खानदानों ने मस्जिदों और औलियाओं की दरगाहों की मुश्तबा अमान में आंसू बहाए और दुआएं मांगी। उस वक्त किले के अंदर दोनों सलजूक भाइयों के दरमियान जबरदस्त बहस जारी थी।
3: मेरी फौज को महीनों से तनख्वाह नहीं मिली। वो सिर्फ इसलिए लड़ने के लिए आमादा हुए थे कि हम इस मालदार और खूबसूरत औरतों के शहर को उन्हें लूटने देंगे। मैं उन्हें और रोकूंगा तो वो बगावत कर देंगे।
4: लेकिन हमने खुदा का नाम लेकर इस शहर के लोगों से एक वायदा किया था। अभी

0: कब्जे के लिए बहुत सारे शहर बाकी है, इस्फहान, शिराज, री, तबरेज और उनसे आगे दूसरे। अगर हम निशापुर के हथियार डालने पर अपने वायदे के बावजूद लूट मचाते हैं तो फिर कोई और दरवाजा हमारे लिए नहीं खुलेगा। कोई और किला बंद शहर अपनी मुहाफिज फौज के साथ जरा बराबर भी कमजोरी नहीं दिखाएगा।
1: अगर हम अपनी फौज सही हाथ धो बैठे और हमारे सिपाही हमें छोड़कर भाग खड़े हुए तो ये जो तुम बहुत से शहरों का ख्वाब देख रहे हो ना, ये कैसे फतह होंगे? वफादार तरीन सिपाही भी आप शिकायत कर रहे हैं, हमें धमकी दे रहे हैं।
2: तुम्हारा भाई सही कह रहा है।
3: शराफत बुजदलों का नकाब है।
2: अरे तुम दोनों भाई जो करो हमें मंजूर है, लेकिन जो करना है जल्दी करो।
3: हाँ जल्दी करो।
1: सुनो बहुत बातें हो ली, मैं अपने आदमियों से जाकर कहता हूँ कि शहर के साथ जो करना है करें। अगर तुम अपने आदमियों को रोके रखना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी, तुम और तुम्हारे सिपाही अलग, मैं और मेरे सिपाही अलग।
4: छोटा भाई अचानक उनके दरमियान से उछलकर दूर हो गया और उसने एक खंजर उठा लिया।
2: अरे ऐसा मत करो।
1: तुम अपने बड़े भाई के लिए खंजर उठाते हो तो ये लो, मेरी तलवार भी नियम से बाहर है।
3: खबरदार, कोई कुछ नहीं बोलेगा ना मदाखलत करेगा। जैसा कि सलजूक का रिवाज है, भाइयों को अपना हिसाब खून से तय कर लेने दो।
0: बिरादर, मैं तुम्हें अपनी बात मानने पर मजबूर नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी फौज को रोक तो नहीं सकता, लेकिन अगर तुमने वादा खिलाफी करके अपनी फौज को इस शहर पर छोड़ दिया तो मैं खुद को तो मार ही सकता हूं ना। मैं ये खंजर अपने सीने में उतार लूंगा।
1: क्या?
0: हाँ।
5: फिर क्या हुआ?
4: ये कहते हुए तुगरल बेग ने खंजर का कब्जा अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और अनी को नीचे अपने सीने की तरफ कर दिया। उसका भाई हिचकिचाया, लेकिन भाई भी तो था। बाजू फैलाकर उसकी तरफ कदम बढ़ाकर आया और देर तक गले लगाए रखा। बड़े भाई ने वादा किया कि वो छोटे की मोहब्बत में शहर से किया वादा निभाएगा। इस तरह मेरा शहर कत्लेआम से बच गया, निशापुर की जान बख्शी हो गई। लेकिन वो शहर उस रमजान के खौफे अजीम को कभी नहीं भूलेगा।
5: वही सलजूक फौज अब यहां आ रही है, नहीं मालूम हम कल होंगे या नहीं, इसलिए चलो मर जाते हैं।
4: क्या?
5: एक दूसरे पर। मुझे यूं प्यार करो कि जैसे ये रात हमारी जिंदगी की आखिरी रात हो।
4: वैसे यही बात अगर मैं तुमसे कहूं तो शायद मेरी जिंदगी बन जाए।
5: कह के तो देखो।

हेमंत कुमार की आवाज में ये नगमा हमने आपको सुनवाया 20 साल बाद फिल्म से। अगली पेशकश लता मंगेशकर की आवाज में है, फिल्म का नाम है काली टोपी लाल रुमाल।

0: बरखा फिल्म का नगमा भी आपने लता मंगेशकर की आवाज में सुना। प्रोग्राम की अगली पेशकश शहनाई फिल्म में सुनिए मोहम्मद रफी को।
1: न झटको जुल्फ से पा

0: आशा भोसले की आवाज में अभी आप सुन रहे थे वक्त फिल्म का नगमा। इसके साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात आप सुन रहे हैं। अब पेश है रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम के गुज़श्ता शुमारे की रिकॉर्डिंग।
1: कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है।
2: नमस्कार, रेडियो डॉक्टर के आज एक नए अंक के साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल, स्वीकार करिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत हमारे सभी श्रोताओं का जो रेडियो डॉक्टर से जुड़ते हैं, अपनी समस्याएं यहां हमारे रेडियो डॉक्टर के सामने रखते हैं और पूरी तरह से संतुष्ट होकर आप हमें फीडबैक देते हैं कि आपको ये कार्यक्रम कितना पसंद आता है। तो आज एक नया अंक है, एक ऐसी समस्या है जिससे हम थोड़ा बहुत डरते हैं, स्पाइन की प्रॉब्लम है। और स्पाइन की प्रॉब्लम से या मेरा यह कहना है कि किसी भी समस्या से नहीं डरना है, क्योंकि रेडियो डॉक्टर आपके साथ है और जब तक रेडियो डॉक्टर आपके साथ है आपका एक स्पेशलिस्ट यहां पर डेली रहेगा, ओपीडी खुलेगी और आपकी समस्याएं यहां सुनी जाएंगी और सिर्फ सुनी नहीं जाएंगी, उसका एक जवाब, सही जवाब आप तक पहुंचेगा। तो आज भी हम यही चाहते हैं कि आपका साथ हमें मिले इस कार्यक्रम में, जैसे आप रोज हमारी हौसला अफजाई करते हैं आज भी करें, क्योंकि आज के हमारे स्पेशलिस्ट बहुत खास हैं। आज हमारे साथ एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में, साथ ही साथ आप प्रेसिडेंट हैं स्पाइनल कॉर्ड सोसाइटी में, चेयरमैन हैं स्पाइन वेलनेस एंड केयर फाउंडेशन में। तो बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर छाबरा, आप स्टूडियो में आए हैं समय निकालकर, नमस्कार।
3: धन्यवाद शालिनी जी, नमस्कार और सारे श्रोताओं को प्यार भरी नमस्कार।
2: बहुत समय बाद डॉक्टर साहब यहां आप आए हैं, काफी बार मैं डॉक्टर साहब को इन्वाइट कर चुकी थी लेकिन हमें पता है सर आप सर्विस पर हैं और पूरी तरह से आप डिवोटेड हैं अपने पेशेंट्स के लिए, और यहां पर हम कोशिश करते हैं कि हमारे उन तमाम श्रोताओं को जो इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं उनको भी थोड़ा सा लाभ पहुंच पाए। तो आज आप आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम चाहेंगे कि एडवांस स्पाइन केयर एंड रिहैबिलिटेशन पर आप जानकारी दें हमारे श्रोताओं को, और चैनल भी वही है आपका पसंदीदा एफएम रेनबो, और ऐप भी वही है प्रसार भारती का ऐप न्यूज ऑन एआईआर। तो आप भी वही, मैं भी वही, बस हमारा रेडियो डॉक्टर जो है वो आज खास है। तो डॉक्टर साहब, ये जो स्पाइन है हमारी, पहले तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, किस तरह की डिफॉर्मिटीज या प्रॉब्लम्स आती हैं इसमें या आ सकती हैं?
3: पहले तो बता दूं कि स्पाइन एक बहुत ही अहम रोल प्ले करती है हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए, ना खाली शरीर का एक ढांचा बनाती है बट इसमें स्पाइनल कॉर्ड एक सुरक्षित रूप में सुरंग में नीचे आती है ब्रेन से, और इसी से जैसे हमारे हिलाने की शक्ति, एहसास की शक्ति, मलमूत्र नियंत्रण और कई ऑटोनॉमिक फंक्शंस इससे हमारे होते हैं और इसको स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। दूसरा मैं बताना चाहूंगा, चाहे स्पाइन की कई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं बट ये भी इम्पोर्टेंट है ये कि जानना कि इनसे आसानी से बचा जा सकता है। अच्छा। हाँ, कुछ स्पाइन की प्रॉब्लम्स के काफी दुष्परिणाम हो सकते हैं पर बचना बहुत आसान है, और बाय चांस अगर स्पाइन की प्रॉब्लम हो जाए तो उसके अच्छे इलाज से एक साधारण जिंदगी में वापस जरूर आया जा सकता है। तो अब जान ले कारण क्या होते हैं, जो अगर हम देखें तो स्पाइन में हर कुछ है, स्पाइन में हड्डी है, डिस्क है, लिगामेंट्स हैं, नर्व्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड है, और हर तरह से इस पे असर हो सकता है। तो सबसे आम कारण स्पाइन की प्रॉब्लम्स के मैकेनिकल कारण होते हैं, जो इंसान पहले चार पैरों पे चलता था जब दो पैरों पे खड़ा हुआ तो मजबूत मांसपेशियों के बलबूते पे। तो अगर हमारी जिंदगी आसीन जैसे हो गई है आजकल, अगर हम आसीन रखें और अगर हम अपने बैठने, लेटने, खड़े होने, काम करने के पोस्चर्स ठीक ना रखें, अपनी जीवन शैली अच्छी ना रखें, तो स्पाइन पे सबसे पहले असर होता है क्योंकि मांसपेशी कमजोर हो जाते हैं। और मैकेनिकल प्रॉब्लम सबसे आम प्रॉब्लम्स हैं। बता दूं शालिनी जी की स्पाइन की प्रॉब्लम्स WHO के मुताबिक सबसे आम कारण है डिसेबिलिटी अमेरिका विश्व भर में। जुकाम के बाद स्पाइन की प्रॉब्लम से सबसे ज्यादा लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। अच्छा। तो ये इतनी आम बीमारी है और इसको बचाने के लिए अगर हम अच्छी जीवन शैली रखें जिसमें कई जनरल कंडीशनिंग एक्सरसाइज हो, प्रॉपर पॉस्चर हो, तो इनसे बचा जा सकता है। तो ये मैकेनिकल प्रॉब्लम स्ट्रेन हो सकता है, बट कई बार डिस्क की डिजेनरेशन हो सकती है और कई बार इन्फेक्शन हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, कभी कभी हमारी इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जैसे गठिया होता है ना छोटे जोड़ों का, वैसे रीढ़ की हड्डी में भी एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होती है कंडीशन में। मैकेनिकल प्रॉब्लम्स में मेहनत से दर्द बढ़ेगी, आराम से ठीक होंगे, बट अगर आराम करने के बाद दिक्कत बढ़ती है तो हमारा बिल्कुल एक तरह से ये रेड फ्लैग है, हमारा सीधा सस्पिशन जाना चाहिए कि कहीं इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम तो नहीं है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो हमें रूल आउट करना होता है। हड्डियां कमजोर भी हो सकती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, विटामिन डी की कमी से भी हड्डी में फर्क पड़ सकता है, ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, तो ऐसी बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण स्पाइन पे असर हो सकता है।
2: जी, बहुत सारे कारण हैं और बहुत सारी बीमारियां भी हैं और हड्डी जैसा आपने कहा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बॉडी का स्ट्रक्चर बनाती है और स्पाइन उसका बिल्कुल बैकबोन है हमारी, तो बहुत सारी समस्याएं इससे जुड़ी हो सकती हैं। कॉजेज भी आपने बताए बहुत सारे हो सकते हैं। एक हमारे इस बीच में कॉलर जुड़ गए हैं, इनसे बात कर लेते हैं पहले। हेलो।
4: हेलो
2: जी,
4: गुड आफ्टरनून मैम।
2: जी गुड आफ्टरनून, अपना नाम बताइए।
4: मैम मेरा नाम कुंवर सिंह है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ।
2: जी बताइए, क्या पूछना है डॉक्टर साहब से?
4: मैम दो तीन क्वेश्चन है, जैसे आज स्पाइन का इशू है, स्पाइनल कॉर्ड का है, तो क्या ये स्लिप डिस्क और सियाटिका का भी प्रॉब्लम इसी से रिलेट होता है स्पाइन से? दूसरा मैम, ये जो क्या जो हमारी स्पाइन पर हमारे वेट का भी कुछ इफेक्ट पड़ता है, अगर वेट कम है या ज्यादा है?
2: जी डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं और डॉक्टर साहब बताएं इनकी जो समस्या।
3: तो हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, सियाटिका, जब भी सियाटिक नर्व के जहाँ फैलती है उसमें दर्द हो तो हम उसे सियाटिका कहते हैं, और एक आम कारण है डिस्क प्रोलैप्स, जो कि अगर रीढ़ की हड्डी में नस पे दबाव हो तो उसके कारण सियाटिका होती है। तो जैसे हमने बताया इससे भी बचा जा सकता है, बट इसका उपचार भी है, अक्सर दवाइयों से, फिजियोथेरेपी से एक मलम से आराम आ जाता है, ना आराम आए तो इंजेक्शंस भी लगते हैं और 100 में 5 लोगों में ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है जो दबाव है उसको हटाने के लिए, जो डिस्क प्रोलैप्स से होता है। दूसरा आपका
2: वेट का
3: देखिए, कई चीजें हैं जो प्रीडिस्पोज करती हैं कमर के दर्द को। हमने बात की एक आसीन जिंदगी, बट हमने बात की गलत पोस्चर, बट अगर वेट भी ज्यादा हो तो उससे क्या होता है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी शरीर का आगे को शिफ्ट हो जाता है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे शिफ्ट होने से रीढ़ की हड्डी पे ज्यादा जोर आने लगता है और इससे कमर की कई प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो ठीक वेट रखना उतना ही जरूरी है जितना कि अच्छी जीवन शैली रखना। इसी से रिलेटेड मिलता जुलता, जब महिलाएं गर्भवती होती हैं तो मांसपेशी ना खाली फूल जाते हैं बट वो आगे की तरफ पेट बढ़ जाता है, उसी तरह रीढ़ की हड्डी पे प्रेशर ज्यादा पड़ता है, बिल्कुल, तो वो रीढ़ की हड्डी पे ज्यादा तनाव आता है। उतना ही जरूरी होता है कि एक बार जब डिलीवरी हो जाती है, प्रेगनेंसी खत्म होती है, तो इन मांसपेशियों को दोबारा टोन अप करना एक्सरसाइजेस से, और आमतौर पे भारतवर्ष में ये नहीं किया जाता, तो ये एक जड़ बन जाती है कि आगे चल के कमर की प्रॉब्लम्स का।
2: जी बिल्कुल, बहुत जरूरी बात है ये, महिलाएं हमारा कार्यक्रम सुन रही हैं तो वो भी ध्यान रखें इस बात को। और इसका मतलब जो है डॉक्टर साहब, एक्सरसाइज बेसिकली बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको बोन्स को हेल्दी रखना है तो।
3: बिल्कुल, बोन्स को सपोर्ट करने वाले मसल्स को और बोन्स को हेल्दी रखना है, तो कहते हैं जनरल कंडीशनिंग एक्सरसाइज जैसे टहलने की आदत, ट्रेडमिल, स्पोर्ट्स, एरोबिक, स्विमिंग, डांस, जॉग, रन, इनसे मसल्स भी स्ट्रांग होते हैं और बोन्स भी स्ट्रांग होती हैं, तो इस पे उनके स्ट्रांग होने से रीढ़ की हड्डी पे कम फोर्स जाता है और उससे डिजेनरेशन कम होती है।
2: हमारे कॉलर से बात करते हैं। हेलो।
5: हेलो
2: जी, जी नमस्कार।
5: राजेंद्र मेरा नाम है और मैं करमपुरा दिल्ली से बोल रहा हूँ।
2: जी राजेंद्र जी बताइए क्या पूछना
5: है। 48 वर्ष मेरी उम्र है, 70-75 kg के आसपास जो है मेरा वजन है और 48 वर्ष मेरी उम्र है, ओ पॉजिटिव मेरा ब्लड ग्रुप है। तो पहले तो शालिनी मैम को शालिनी नमस्कार
2: जी, नमस्कार,
5: और डॉक्टर साहब को भी तहे दिल से नमस्कार और आभार।
3: नमस्कार जी।
5: डॉक्टर साहब, मैं 2005-06 से ना इस प्रॉब्लम से जो है वो जूझ रहा हूँ। क्या है कि मेरे को हिप्स ज्वाइंट्स हैं।

0: में जो है वो पेन है और स्टिफनेस रहती है और सर्दियों में बीमारी बढ़ जाती है। अगर मैं एक्सरसाइज करूं तो इससे रिलीफ मिलता है। और इन दिनों में जो है विटामिन डी दवा होते हैं पेन रिलीफ की और लोशन ऑइंटमेंट और ये टैबलेट ये भी खा रहा हूं, तो इससे होता है कि मुझे टेम्पररी आराम तो मिल जाता है, परमानेंट आराम जो है नहीं मिल पा रहा। अगर मैं आगे की ओर बैंड हो रहा हूं तो मुझे प्रॉब्लम बढ़ जाती है, पीछे की ओर बैंड फोल्ड होता हूं तो इससे मुझे रिलीफ मिलता है। तो अब मैं ये मुझे कुछ ऐसे महसूस होता है कि जैसे एक पेड़ की डाली होती है ना, वो झुकी होती है नीचे की ओर, पर वो टूट जाए मान लो, पर वो मतलब पेड़ जुड़ी रहती है, तो मुझे कुछ इस किस्म का महसूस होता है। तो प्लीज मार्गदर्शन करें। बड़ी
1: थैंक यू। मैं वही सोच रही थी आपका क्वेश्चन जरा समझ लें। तो जी, तो काफी सारी चीजें हैं।
2: तो जैसे आपने कहा आप 48 वर्ष के हैं, बट आपको कूल्हे में दर्द होता है, कूल्हे की हड्डी में, या पीछे बटक्स में पेन होता है, तो आपने बताया कि एक्सरसाइज से भी ये ठीक होता है। तो ये काफी देर से आपकी समस्या चल रही है, तो हमारा आपको ये सलाह होगी हमारी कि आप किसी एक एक्सपर्ट से जरूर मिलें और मुआयना करवा लें, ताकि वो देख के जड़ पता कर सकें और इस हिसाब से इलाज कर सकें। पर जैसे आपने कहा एक्सरसाइज से आपको आराम मिलता है, तो आप एक्सरसाइज जरूर करें, कूल्हे की एक्सरसाइज। कई बार ये प्रॉब्लम स्पाइन की भी होती है, जो बटक्स में पेन होता है लगता है कूल्हे में, पर होते स्पाइन से, तो उसको पता करना है कि कहां से आ रही है, उसका उस हिसाब से इलाज करना है। खाली दवाइयां इसका उपचार नहीं है, तो हमें कारण पता करना है। हाँ, पेन मैनेजमेंट करनी है, बट आगे जो फैक्टर्स हैं जो प्रीडिस्पोज कर रहे हैं आपकी दिक्कत को, उसको भी हमें सही तरह से पकड़ना है। तो जरूर एक सलाह मशवरा लें एक डॉक्टर से, ताकि आपकी बीमारी को पकड़ा जा सके और उसका ठीक उपचार किया जा सके।
1: तो डॉक्टर साहब, आपने ये कहा कि कई बार बीमारी कहीं और होती है पर सिम्टम कहीं और उसका पता लगता है, तो डायग्नोस्टिक्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये डायग्नोस्टिक्स के एक तो रोल प्ले करते ही हैं, ये आप बताएं, और फिर कैसे आप करते हैं, हाउ डू यू डिसाइड?
2: तो आपने बिल्कुल ठीक बताया। वैसे मैं बता दूं कि तकरीबन 80% लोगों में हिस्ट्री से उनको क्या दिक्कत है उनको सुन के ही हम डायग्नोसिस बना सकते हैं, 10% में एग्जामिनेशन से, है ना, तो उनको उनका मुआयना करके हमें पता चल जाता है कि कहाँ दिक्कत है। और इसको सब्सटैंशिएट, इसको पक्का करने के लिए हमें टेस्ट करने पड़ते हैं, बट उल्टा नहीं होना चाहिए। कई बार लोग आते हैं हमारे पास एमआरआई लेके, हमारे रिश्तेदार को ये तकलीफ है जी एमआरआई में देख लीजिए और बताइए, नहीं, एमआरआई का इलाज नहीं करना हमें, हमें क्या दिक्कत है उसका डायग्नोसिस बना के उसको कोरिलेट करना है हमें डायग्नोस्टिक से और उसका इलाज करना है। अब बहुत सारी जगह हमें जब क्लियर पिक्चर ना हो, जैसे कि हमारे पिछले श्रोतागण थे उनकी दिक्कत थी, तो हमें उनमें इन्वेस्टिगेशंस करनी पड़ती है देखने के लिए कि दिक्कत कहां से आ रही है। तो उसके लिए अब बहुत एडवांस डायग्नोस्टिक्स हो गई हैं आप लोग, मतलब जैसे एमआरआई है, एमआरआई भी अब पुराना हो गया, उसमें कई तरह की नई एमआरआई टेक्निक्स आ गई हैं, डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग, कई नए तरह के एमआरआई जिससे हम एक्सपर्ट्स उनमें से ठीक तरह से बीमारी का पता कर सकते हैं। उसी तरह डायनेमिक एमआरआई भी है, आपको दिक्कत लेट के नहीं है, एमआरआई लेट के हो रहा है, तो कई लोगों में खड़े होके एमआरआई करने में अच्छा, उसका अच्छा पता चलता है तकलीफ का। उसी तरह हमारे एडवांस्ड सीटी स्कैन्स हैं, जिसमें जैसे कि हमारा ब्लड फ्लो देखना है हमें, तो एंजियोग्राफी कर सकते हैं जब हम ऑपरेशन करते हैं अगर गर्दन का, तो वहां पे बहुत एक सुरक्षा बहुत छोटे से पैसेज से हमें स्क्रू डालना पड़ता है, एक तरफ स्पाइनल कॉर्ड है, एक तरफ वो नस है जो दिमाग को जा रही है ब्लड सप्लाई करती है, तो उसका पैसेज ठीक है कि नहीं वो भी देखना पड़ता है, तो हमें ऐसे एडवांस सीटी एंजियोग्राम्स होते हैं। उसी तरह ईओएस एक एडवांस रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, जिससे हम पूरे बॉडी का एक 3D इमेज ले सकते हैं, तो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी भी कर सकते हैं, नसों की जांच कर सकते हैं, उसके बारे पता कर सकते हैं। तो कई एडवांस टेक्नोलॉजीज है, बोन डेंसिटी देखने के लिए हम डेक्सा स्कैन से उनके बारे जांच कर सकते हैं। तो हमें पहले हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से शॉर्टलिस्ट करना है कि ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और अगर पूरा डायग्नोसिस नहीं बन रहा तो ये इन एडवांस डायग्नोस्टिक से हमें वो डायग्नोसिस को पक्का करना है। और बहुत सारे, अभी तो मैं टाइम की कमी के कारण बता नहीं पाया, बट बहुत सारी ऐसी और चीजें जैसे पेट स्कैन है और

0: बोन स्कैन है, जो ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिससे हम कहां मर्ज है उसको हम पक्का कर सकते हैं।
1: जी, और डॉक्टर साहब, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि ये बहुत आम हम सुनते हैं कि लोग सबसे पहले MRI कराने पहुंचते हैं और फिर बोलते हैं कि नहीं इसी से पता लगेगा, वो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तो ये कहां तक सही है कि अगर आपको कोई पेन है आप सीधे पहुंच जाए कि MRI कर लो पहले?
0: ये एक तरह से कह सकते हैं मिथ्या है कि आप MRI करा लीजिए आपको सब कुछ पता चल जाएगा। MRI का दुरुपयोग भी नहीं करना चाहिए हमें, और ठीक है MRI एक अच्छा इन्वेस्टिगेशन है, बट ये समझना चाहिए कि उम्र के बदलाव हर किसी में होते हैं। एक अगर 70 साल के इंसान का MRI कराएं तो उसमें बदलाव होंगे ही होंगे, तो हमें देखना है कि उसमें पहले देख के कि क्या बीमारी हो सकती है और उसको क्लिनिकली कोरिलेट करना होता है। तो जनरली MRI हम सजेस्ट करते हैं इंडिया जैसे देश में जहां हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता इसको, कि अगर कोई रेड फ्लैग्स हो तो फिर तो MRI जरूरी करना है। रेड फ्लैग्स मतलब खतरे के लक्षण, तो अगर उसके साथ बुखार आ रहा है या जैसे हमने बोला कि रेस्ट करने के बाद दिक्कत हो रही है, लेटे लेटे दिक्कत हो रही है, नाइट पेन हो रहा है, कमजोरी पैरों में बढ़ती जा रही है, मलमूत्र नियंत्रण पे असर हो रहा है, या हिस्ट्री है कैंसर की, वेट लॉस बहुत ज्यादा हो गया है, तो ऐसे कुछ रेड फ्लैग्स कहते हैं जिसमें MRI जरूरी हो जाता है। उसके बाद अगर आप ठीक से आपने उपचार किया और आराम नहीं आ रहा, जनरली कहते हैं 6 हफ्ते के लिए, या दिक्कत बहुत ज्यादा है और उसमें आराम ना आ रहा हो, तो फिर MRI पे जाना चाहिए, नहीं तो हर किसी को MRI में जाने की जरूरत नहीं होती।
1: तो सबसे पहले कोई तकलीफ है तो पहले डॉक्टर के पास जाए,
0: बिल्कुल
1: खुद डायग्नोस्टिक्स पे या उस पर ना चले जाए।
0: हाँ बिल्कुल, मतलब हाँ अगर हल्की है दिक्कत तो आप खुद भी इलाज शुरू कर सकते हैं, बट अगर आराम ना आ रहा हो तो जरूर डॉक्टर से उसका मुआयना जरूर करा लें।
1: क्या करेंगे इलाज?
0: अब जैसे बताया कि जैसे जुकाम है उतना ही कॉमन कमर का दर्द है ऑलमोस्ट, है ना? हाँ, तो हर जुकाम के लिए तो हम डॉक्टर के पास जाते नहीं, तो कमर का अगर दर्द है और उसमें कोई रेड फ्लैग्स नहीं है जैसे हमने बात की, तो आप सेक कर सकते हैं, मलम लगा सकते हैं, कुछ जो ऑफ द काउंटर ड्रग्स हैं जो मतलब मिल जाती हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के दर्द के लिए, उनको भी ले सकते हैं। कई बार फिजियोथेरेपिस्ट के बाद जाके फिजियोथेरेपी भी करा सकते हैं। अगर आराम ना आ रहा हो या दिक्कत बढ़ रही हो या रेड फ्लैग्स हैं तो जरूर डॉक्टर के पास जाइए।
1: तो डॉक्टर साहब, कितने दिन ऐसे घरेलू इलाज करके वेट कर सकते हैं? कुछ ऐसा होता है क्या कि 2-4 दिन देखो, हफ्ता देखो, महीना देखो?
0: अक्सर देखा गया है कि ये 2 से 3 हफ्तों में ये सिम्टम्स अपने आप सबसाइड हो जाते हैं। अगर बार बार दोबारा नहीं होते तो आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी नहीं है।
1: ठीक है, और मैसेजेस भी हमारे पास बहुत आ गए हैं। हेलो RJ ऑफ आकाशवाणी रेनबो, वेरी वेरी नाइस प्रोग्राम, और इसको मोबाइल एप्लीकेशन पे हम सुन रहे हैं, ये हमें लिखकर भेज रहे हैं। कुंडली नरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट श्री भूमि आसाम से हमारे श्रोता है, हितेंद्र दास, मानस दास, वर्षा दास, शेफाली दास और माधव दास, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मोबाइल ऐप पे आप सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वो श्रोता जो अभी तक नहीं इसे डाउनलोड कर पाए हैं, आप प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, न्यूज ऑन AIR हमारा ऐप है। इसके अलावा जो मैसेज आया है डॉक्टर साहब, कपिल हमें पूछ रहे हैं दुबई से कि क्या B12 का कोई रोल होता है स्पाइन में?
0: हाँ जी, देखिए अगर जैसे पहले श्रोतागण ने पूछा था कि अगर शैटिका होती है या जैसे हाथ में भी दर्द जाता है, तो वाइटामिन B12 का रोल होता है नर्व ट्रांसमिशन में, और अगर वाइटामिन B12 की कमी हो तो जो नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन में दर्द हो सकता है, तो आपके डॉक्टर साहब एवेल्युएट करेंगे और अगर आप में उन्हें लगे कि वाइटामिन B12 की कमी के कारण लक्षण है तो वाइटामिन B12 जरूर देंगे। और आम तौर से जब भी दर्द जैसे पैरों में या हाथ में फैलता है नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन में, तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन में वाइटामिन B12 जरूर हो।

0: 2019 से है सर।
1: 2019 से, तो अभी 7 साल हुए हैं। जब डायबिटीज लंबी रहती है तो उससे हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं, पर आपकी उम्र में 7 साल में हड्डियां इतनी कमजोर हो जाएं कि उससे दर्द हो, चांस थोड़ा कम है। बट ब्लड शुगर से कई बार मसल्स भी थोड़ा वीक होती हैं, बट आप में ज्यादा चांस है कि जो आपका कमर का दर्द है वो मैकेनिकल कारण से है। अगर आपको सुबह उठने में कमर अकड़ी लगती है और चलने फिरने से आराम आता है तो आपको हड्डियां कमजोर या इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम्स की तरफ देखना है, नहीं तो मैकेनिकल पेन का ही ज्यादा चांस है आप में होने का।
0: जी सर,
2: धन्यवाद कॉल करने के लिए। हमें ये चंद्रपुर नेशनल पार्क तालुका तिमूर डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर से लिखने वाले हैं, उनका नाम है कुमार गौरव इंदुरकर। ये लिख रहे हैं सर, फाइन हेयर फ्रैक्चर, ये क्या होता है?
1: हेयरलाइन फ्रैक्चर की बात कर रहे हैं ये? हाँ, बहुत सारे लोगों में जो फ्रैक्चर रीढ़ की हड्डी में होता है वो बिल्कुल जैसे आप फ्रैक्चर का सोचते हैं कि हड्डी आपस में सरक गई है, वैसा नहीं होता, बट उसमें हेयरलाइन फ्रैक्चर की तरफ होता है। और बहुत सारों में वो दब जाती है हड्डी, दो फ्रैक्चर के टुकड़े अलग नहीं होते। तो ये मतलब डिपेंड करता है, कई यंग लोगों में भी, जवान लोगों में भी हेयरलाइन फ्रैक्चर हो सकते हैं चोट के कारण, बट ज्यादातर देखा जाता है जैसे उम्र बढ़ती है तो हड्डियां जब कमजोर होती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो या ऑस्टियोमलेशिया हो, तो उनमें ये हेयरलाइन फ्रैक्चर्स बहुत आम होते हैं। मतलब ज्यादा जोर से चोट भी लगे, चलते चलते झटका लगा, या चलते चलते थोड़ा गिर गए, या स्पीड से कार या बस स्पीड ब्रेकर के ऊपर से चले गए और उसी झटके में हड्डी दब जाती है। तो इसमें जरूरी होता है देखना कि हाँ वो जो फ्रैक्चर है वो स्थायी है या अस्थायी है, स्टेबल है या अनस्टेबल है, क्योंकि हमने बात की कि पीछे ही सुरंग में नसें आ रही हैं, स्पाइन कॉर्ड आ रही है, तो कहीं उस पर दबाव का चांस तो नहीं है। तो एक एक्सरे करते हैं, डायनेमिक एक्सरे, सामने झुक के और पीछे झुक के, अगर उसमें वो आगे पीछे हड्डी नहीं होती तो वो स्थायी फ्रैक्चर है, स्टेबल फ्रैक्चर है, और उसमें चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं जितना दर्द अलाउ करे। बट अगर वो अस्थायी है तो उस समय या तो उसको फिक्स कराना चाहिए या बेड रेस्ट करना जब तक वो स्थायी ना हो जाए। और उतना ही जरूरी है कि जो हड्डियां कमजोर हैं, ऑस्टियोपोरोसिस है, उसका भी पता चले कि क्यों हड्डियां कमजोर हैं, उसका ठीक से उपचार किया जाए, नहीं तो और हड्डियां ऐसे उनमें फ्रैक्चर हो सकते हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस जो रीढ़ की हड्डी में, उससे कई ऐसे दुष्परिणाम होते हैं जो अल्टीमेटली जिसमें काफी मॉर्बिडिटी होती है।
2: जी जी, हमारे कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। हेलो,
3: नमस्कार मैडम
2: जी। नमस्कार
3: डॉक्टर साहब, नमस्कार।
1: नमस्कार जी।
3: जी सर, मेरा नाम संजीव कुमार है, मेरी एज 34 ईयर्स है सर, और वजन 102 किलो था अभी पिछले दिन पहले। हाइट है जो वो 5'10" या 11" है। तो सर मेरी प्रॉब्लम ये है कि जब मैं इसकी तब रखता हूँ ना कुछ देर के लिए तो दुखने लगती है कमर सर, वेट पेट बहुत आगे निकले है सर, अब तो घुटने में प्रॉब्लम है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए सर ताकि बैठने वाली दिक्कत ना हो? अब मैं लेटो है आपसे बात कर रहे हैं, अब मेरी कमर दुख रही है सर नीचे से।
1: 40 साल के लिए भी, मतलब अगर आपका, हमने पहले बात की थी, अगर मोटापा हो तो उससे हमारे रीढ़ की हड्डी पे ज्यादा प्रेशर आता है।
2: जी धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, जैसे समस्याओं की बात हो रही है, आपने भी शुरू में बताया कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड हो सकती हैं, और डायग्नोस्टिक्स पे भी हमने बात की, लेकिन जब आप ट्रीटमेंट शुरू करते हैं किसी भी पेशेंट का तो किस तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं? क्या उसमें भी अलग अलग तरह के होते हैं या सबके साथ उन्हीं मेडिसिन से आप चलते हैं?
1: नहीं, वो कारण के हिसाब से इलाज होता है। और अगर प्रिंसिपल्स बोले स्पाइन की बीमारियों के मैनेजमेंट का, तो प्रिंसिपल यही होता है कि आपने दर्द का तो इलाज करना है, पर उतना ही जरूरी कारण को हटाना है। अगर नहीं हटाएंगे तो वो दर्द बार बार आता जाएगा, और यही एक कारण है कि क्यों कमर का दर्द एक महामारी की तरह फैला हुआ है। अगर हम वो कारण पे नहीं काम करें तो उदाहरण के तौर से जैसे कमर का दर्द है क्योंकि जीवन शैली हमारी आसीन है और पोस्चर ठीक नहीं रखते, दर्द से हमने दर्द को दबा लिया पर कारण नहीं हटाया तो कुछ दिन बाद वो फिर आएगा। तो इसलिए मैनेज द पेन एंड रिमूव द कॉज, उसी बार बार दिक्कत को हटाने के लिए प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स और भी जो है उन पर भी काम करना होता है, जैसे कि अगर मोटापा है तो उस पर काम

0: है, अगर स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, अब आप बोलेंगे स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल से कैसे कमर का दर्द का क्या लेना देना, तो अगर दर्द लंबी चलती है तो उससे टेंशन होती है, टेंशन से दर्द बर्दाश्त करने की शक्ति गिरती है, उससे और दर्द बढ़ती है, उससे और टेंशन होती है, एक विशेष साइकिल हो जाता है और माइंड सेंसिटाइज हो जाता है. तो जब भी लंबी दर्द चलती है, खासतौर से 3 महीने से ज्यादा, अगर हम इस साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को ना देखें तो आराम अच्छा आने का चांस कम हो जाता है.
1: अच्छा.
0: तो इसलिए कारण को देखना है. जैसे अगर आपको दर्द खाली कमर का है तो उसमें से एक मलम दवाई फिजियोथेरेपी से चल सकती है, बट अगर दर्द पैर में फाल रहा है तो उसके लिए अलग तरह से दवाइयां जैसे प्रीगाब्लिन, गाबापेंटिन वगैरह चलती हैं, अलग थेरेपी साथ में शुरू होती है. ना आराम आए तो इंजेक्शन की जरूरत पड़ सकती है, छोटे से 100 में 3-4 में ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ सकती है. उसी तरह अगर दिक्कत, अगर जैसे चोट लगी रीढ़ की हड्डी में और उसके कारण अगर नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो गया तो उसमें जो स्पाइन में इंस्टेबिलिटी है उसको हमें दूर करना पड़ता है, ऑपरेशन से उसको फिक्स करना पड़ता है, दबाव हटाना पड़ता है, पर उसके साथ साथ हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम से पेशेंट को डालना पड़ता है. कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन मतलब ना खाली शारीरिक रिहैबिलिटेशन बट साइकोसोशल रिहैबिलिटेशन. मतलब आप सोचिए अगर जवान इंसान में रीढ़ की हड्डी में चोट के कारण नीचे का हिस्सा पूरा पैरालाइज हो गया तो ना खाली उस इंसान पे पर पूरे परिवार पे कितना मानसिक तनाव आता है ना. तो और आम तौर से ये मेन ब्रेड अर्नर्स होते हैं फैमिली के, इन्हीं पे पूरा परिवार चल रहा होता है. तो ना खाली इंसान की साइको सोशल रिहैबिलिटेशन करनी होती है पर पूरे परिवार की भी साइको सोशल रिहैबिलिटेशन करनी होती है. अगर वो पैरालाइज हो गया बाय चांस तो उसको एक मतलब शारीरिक पुनर्वास से कैसे उसके बावजूद नॉर्मल जिंदगी में आना है, चाहे व्हीलचेयर से. खाली इतना नहीं, इसके साथ साथ उसको कैसे एक व्यवसाय में वापस लाना है, कैसे वो समाज में वापस जा पाए. आम तौर से जैसे बाहर सड़क पे व्हीलचेयर चलाना मुश्किल है, बस में जाना मुश्किल है, तो कैसे पूरा समाज में वो एक तरह से कम्युनिटी इंक्लूजन हो जाए और नॉर्मल लाइफस्टाइल पे आ जाए, ये सारा स्पाइनल इंजरी मैनेजमेंट का बहुत एक अहम पार्ट होता है.
1: जी.
0: और ऐसे रीढ़ की हड्डी की कई तरह की बीमारियां होती हैं, ट्यूमर भी हो सकता है, उसका इलाज उस हिसाब से कई बार ट्यूमर निकालना पड़ता है, कई बार उसमें स्पेसिफिक इंजेक्शन से आराम आ जाता है. उसी तरह अगर कोई बचपन से बीमारी है ना, या जैसे डिफॉर्मिटी है, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो रही है और टेढ़ी बढ़ती जा रही है, ना खाली देखने में बुरा लगता है बट अगर बचपन से हो तो इससे सांस लेने की क्षमता पे भी असर हो सकता है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी और रिब्स ही तो वो चेस्ट कैविटी को बना रहे हैं.
1: कई लोग बहुत झुक के चलते हैं.
0: हाँ बिल्कुल. तो वो मतलब बहुत तरह की रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम्स हैं, सबका इलाज अलग है पर संभव है. यहां मैं बोलना चाहूंगा कि दो चीजें तो खास तौर से बताना चाहूंगा कि एक तो ज्यादातर बीमारियों का इलाज बिना सर्जरी के कंजर्वेटिव तरीके से किया जा सकता है. आप कह लीजिए 95% या 97% पेशेंट्स में, पर अगर वो 3-5% में हो जिनमें ऑपरेशन की जरूरत हो तो उससे डरना नहीं चाहिए. वो जमाने गए जब रीढ़ की हड्डी कि स्पाइन की सर्जरीज सेफ नहीं होती थी. आज एडवांस टेक्नोलॉजी से ये बिल्कुल सेफ हैं और सुरक्षित तरह से सर्जरी करके उनको साधारण जिंदगी में वापस लाया जा सकता है. जब ऑपरेशन का जरूरत हो तो ना करना कहीं ज्यादा हानिकारक हो सकता है ना कि करना. अच्छा. तो उससे डरना नहीं. बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे हम स्पाइन सर्जरी के दौरान पूरा स्पाइनल कॉर्ड और नसों की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, न्यूरो मॉनिटरिंग कहते हैं इसको, ताकि कभी भी कोई दिक्कत आ रही हो उसी समय उसका उपचार कर सके. अगर मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी से रीढ़ की हड्डी में लोग क्यों डरते हैं कि कहीं स्पाइनल कॉर्ड पे या नस पे उसका असर ना आ जाए, तो एक तो ये न्यूरो मॉनिटरिंग है बट प्रिसीजन भी आ गया. आप कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी से आ गए, अब नेविगेशन टेक्नोलॉजी है जिसमें टेबल पे सीटी स्कैन करके नेविगेशन टेक्नोलॉजी से आप रियल टाइम देख पा रहे हैं कि आप कहां काम कर रहे हैं, आपका स्क्रू अगर जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, और रोबोटिक नेविगेशन

0: टेक्नोलॉजी से वो रोबो के थ्रू स्क्रू जाता है जिससे और भी सुरक्षित हो जाते हैं. तो इसी तरह एनेस्थेटिक टेक्निक्स बढ़ गई हैं, बेहतर हो गई हैं. और उसके बाद पूरा जो पुनर्वास जो ऑपरेशन के बाद बहुत जरूरी होता है वो भी इतना एडवांस्ड हो गया, उसमें भी रोबोटिक टेक्नोलॉजी है, एडवांस्ड फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन है, कई ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिससे रीढ़ की हड्डी की अगर प्रॉब्लम हो तो इंसान को साधारण जिंदगी में वापस लाया जा सकता है.
1: अब हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि डॉक्टर साहब को धन्यवाद दे सके. आज हमारे साथ रहे डॉक्टर HS छाबरा, डायरेक्टर हैं स्पाइन एंड रिहैबिलिटेशन में श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में, प्रेसिडेंट हैं स्पाइनल कॉर्ड सोसाइटी में और चेयरमैन हैं स्पाइन वेलनेस एंड केयर फाउंडेशन में. बात की आज हमने एडवांस स्पाइन केयर एंड रिहैबिलिटेशन में. बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार डॉक्टर साहब, यहाँ आप आए हैं, इतना समय आपने दिया.
0: बहुत धन्यवाद शालिनी मित्तल जी आपका, आपने मौका दिया.
1: तो धन्यवाद हमें मैसेज करने के लिए. इसी तरह से जुड़े रहिए, सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर. स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का भी नमस्कार.
2: अभी आप सुन रहे थे रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम के गुज़श्ता शुमारे की रिकॉर्डिंग. मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला जारी है. अब खबरें नशर की जाएंगी.

ये आकाशवाणी है, अब आप निधि का त्यागी से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया बहरान के दौरान शहरियों से जोर देकर कहा है कि वो एक साल तक सोना न खरीदें, ईंधन की खपत कम करें और गैर मुल्की जर मुबादला का तहफ्फुज करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शिरकत के लिए प्रभात पटन पहुंच गए हैं। वो वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का इफ्तिताह भी करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की अमन तजवीज के तई ईरान के जवाब को पूरी तरह नाकाबिले कबूल करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। दो भारतीय शहरी जो हंता वायरस से मुतासर एक सियाहती जहाज में सवार थे महफूज हैं और उनमें से वायरस की कोई अलामत नहीं पाई गई हैं। और फुटबॉल में आज सोजू में 17 साल तक की उम्र की खवातीन के एएफसी एशियाई कप में अहम क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत का मुकाबला मेजबान चीन से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया बहरान के दौरान शहरियों से जोर देकर कहा है कि वो एक साल तक सोना न खरीदें, ईंधन का कम इस्तेमाल करें और गैर मुल्की जर मुबादला की बचत करें। हैदराबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने वर्क फ्रॉम होम के तरीके को एक बार फिर अपनाने को कहा। यह रायजनी कई मुल्कों में ईंधन के रिकॉर्ड ऊंची कीमतों के तनाजुर में की गई है। वजीर आजम ने यह अपील ऐसे वक्त में की है जब खाम तेल की आलमी कीमतों में मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी और आबनाए हुरमुज में रुकावटों की वजह से इजाफा हो गया है। वजीर आजम ने शहरियों से अपील की है कि वो बेधड़क अखराजात पर गौर करें क्योंकि मुल्क को तवानाई की आलमी कीमतों के इजाफे से इक्तिसादी दबाव का सामना है। वजीर आजम मोदी ने शहरियों से यह भी कहा है कि वो खुरदनी तेल का भी इस्तेमाल कम करें। उन्होंने किसानों से जोर देकर कहा है कि वो बैरूने मुल्क से दरामद की गई कीमियावी खादों पर इन्हिसार को कम करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सोमनाथ अमृत पर्व की तकरीबात में शिरकत के लिए गुजरात में प्रभास पटन पहुंच गए हैं। वजीर आजम ने हेलीपैड पर उतरने के बाद हमीरजी गोहिल सर्कल तक 1 किलोमीटर तक का एक शानदार रोड शो किया जिसके दौरान लोगों का एक हुजूम मौजूद था। जनाब मोदी ने अवाम को मुबारकबाद दी और लोगों ने उनका इस्तकबाल डमरुओं से किया। रोड शो के दौरान वजीर आला भूपेन्द्र पटेल और नायब वजीर आला हर्ष सांघवी भी मौजूद थे। तकरीबात के दौरान वजीर आजम मजहबी प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। वो महापूजा करेंगे जिसके बाद कुंभाभिषेक और परचम लहराने की तकरीब में शिरकत करेंगे। इस मौके पर वो एक अवामी इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अवाम को टेक्नोलॉजी के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद पेश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि इस दिन के मौके पर भारत फख्र के साथ साइंसदानों की मेहनत और लगन को याद करता है जिसकी वजह से साल 1998 में पोखरण में कामयाब न्यूक्लियाई तजर्बात हो पाए थे। उन्होंने मजीद कहा कि ये दिन भारत के साइंस के शोबे में आला मेयार और गैर मुतजलजल अहदबस्तगी की अक्कासी करता है।

भारत अब काबिल तश्दीद तवानाई की सलाहियत के लिहाज से दुनिया में तीसरे मकाम पर पहुंच गया है। मॉर्गन स्टैनली की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत की काबिल तश्दीद तवानाई की जानिब मुंतकली बैरूनी इन्हिसार कम करने में मदद फराहम करेगी, ताहम इसकी कामयाबी इस बात पर मुनहसर होगी कि मुल्क शमसी सेल्स, वेफर्स और पॉलीसिलिकॉन जैसे अहम शोबों को कितनी तेजी से मकामी सतह पर फरोग देता है। नई और काबिल तश्दीद तवानाई की वजारत के आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में सोलर मॉड्यूल की पैदावार की सलाहियत मार्च 2024 में 38 गीगावाट से बढ़कर मार्च 2025 में तकरीबन दोगुनी होकर 74 गीगावाट तक पहुंच गई है। इसी तरह सोलर सेल की सलाहियत भी 9 गीगावाट से बढ़कर 25 गीगावाट हो गई है। आसाम के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने रियासत में एनडीए की मुसलसल तीसरी मुद्दतेकार के लिए रहा हमवार करते हुए मुंतखब वजीर आला हेमंत बिस्वा सरमा को नई हुकूमत तश्कील देने के लिए मदु किया है। बीजेपी की कयादत वाली एनडीए कानून साज पार्टी का मुत्तफिका तौर से लीडर मुंतखब होने के बाद जनाब सरमा ने इत्तेहादी पार्टियों के लीडरान के साथ लोकभवन में गवर्नर से मुलाकात की और बाजाब्ता तौर पर हुकूमत तश्कील देने का दावा पेश किया। गवर्नर मौसूफ जनाब शर्मा और वुजराए काउंसिल के नए मेंबरों को कल ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब खानापाड़ा के वेटरनरी कॉलेज प्लेग्राउंड में मुनक्किद की जाएगी। तवक्को है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और बीजेपी के सदर नितिन नवीन के अलावा दीगर मौजिजीन इसमें शिरकत करेंगे। तमिलनाडु में नौ मुंतखब असेंबली का पहला इजलास आज से शुरू होगा। उबूरी स्पीकर नए मुंतखब एमएलएज को हलफ दिलाएंगे। मेंबरान के हलफ लेने के बाद आज या कल स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा। टीवी के सरबराह सी जोसेफ विजय की कयादत वाली नई हुकूमत को इस महीने की 13 तारीख से पहले अपनी अक्सरियत साबित करना होगी। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की ताजा तरीन अमन तजवीज को पूरी तरह नाकाबिल कबूल करार दिया है। अलबत्ता मगरबी एशिया में कई महीने से जारी महाजाराई के खात्मे के लिए एक मुआहदे की कोशिशें जारी हैं। सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि उन्होंने ईरान के जवाब को पढ़ा है जो उनके बकौल ईरान के नाम निहाद नुमाइंदों की तरफ से आया है। इससे पहले ईरान ने कहा था कि उसने अमरीका की ताजा तरीन तजवीज के तई जिसका मकसद अमरीकी मगरबी एशिया में तनाजे को खत्म करना है अपना जवाब भेज दिया है। यह जवाब पाकिस्तान के जरिए भेजा गया है जो ईरान और अमरीका के दरमियान एक सालिस का किरदार अदा कर रहा है। ईरान की इसना खबर एजेंसी ने कहा कि ईरान के जवाब में तनाजे के खात्मे और आबनाए हुरमुज में समंदरी इलाके की सलामती को यकीनी बनाने पर तवज्जो मरकूज की गई है जो तेल ले जाने वाले जहाजों का एक अहम आलमी रास्ता है। ईरान के सदर मसूद पेजश्कियां ने कहा कि मगरिब के साथ मुजाकरात को हथियार डाल देने या फौज वापस बुलाने के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। इसी दौरान इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने ईरान की तरफ से जवाब दिए जाने के बाद कल रात सदर ट्रंप से बातचीत की। नेतन्याहू ने कहा कि सदर ट्रंप ने ईरान के अफसूदा यूरेनियम के जखीरे को खत्म करने की जरूरत से इत्तेफाक किया जो मुजाकरात का एक अहम मौजू है। सदर ट्रंप ने फौजी सूरत हाल का जिक्र करते हुए ईरान को फौजी तौर पर शिकस्त खुर्दा करार दिया और दावा किया कि ईरान की दिफाई और हमला करने की सलाहियतों को मुनज्जम तरीके से खत्म किया जा चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि अमरीका ईरान के ताकतवर यूरेनियम जखीरे पर करीबी नजर रख रहा है। इस दौरान खलीजी खित्ते में कशीदगी जारी है। ईरान ने खबरदार किया कि अगर आप नए हुरमुज में अमरीकी बहरी कार्रवाई के साथ साथ फ्रांस और बरतानिया के जंगी जहाजों को तैनात किया गया तो एक फैसला कुन और फौरी जवाब का सामना करना पड़ेगा। फ्रांस के हुकाम ने तस्दीक की है कि न्यूक्लियाई ताकत वाला तैयारा बरदार जहाज चार्ल्स डी गोल खित्ते की तरफ बढ़ रहा है। ये जहाज फ्रांस के सदर इमैनुअल मैखों और बरतानिया के वजीर आजम कीर स्टार्मर की कयादत वाली कोशिशों के हिस्से के तौर पर आगे बढ़ रहा है ताकि आप नए हुरमुज में जहाजों की नकलो हरकत को बहाल किया जा सके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 13 से 15 मई तक चीन के सरकारी दौरे पर रहेंगे। सदर ट्रंप यह दौरा चीनी सदर शी जिनपिंग की दावत पर कर रहे हैं। मजकूरा दौरा गुज़श्ता तकरीबन 9 साल में किसी अमरीकी सदर का चीन का पहला दौरा होगा। यह दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमरीका इसराइल ईरान जंग हो रही है और आबनाई हुरमुज की नाकाबंदी को लेकर बहरान बरकरार है जिसकी वजह से तवानाई का आलमी बहरान पैदा हो गया है और दोनों ममालिक के दरमियान ताइवान समेत कई मुद्दों पर कशीदा हालात में इजाफा हो रहा है। स्पेन के शहर

0: मैड्रिड में भारतीय सफारतखाने ने कहा है कि दो भारतीय शहरी चोहंता वायरस से मुतासिर एक सियाहती जहाज में सवार थे महफूज हैं और उनमें इस वायरस की कोई अलामत नहीं पाई गई हैं। जर्मनी का परचम बरदार जहाज एमवी होंडियस इन दो भारतीय बाशिंदों समेत तकरीबन 150 अफराद को ले जा रहा था जो कल स्पेन पहुंचा। इस जहाज को इस वबा के फूट पड़ने के बाद कैनरी जजीरे से कुछ दूर लंगरअंदाज कर दिया गया है। फुटबॉल में सोजू के मकाम पर 17 साल तक की उम्र के खवातीन एएफसी एशियन कप के क्वार्टर फाइनल में भारत का मुकाबला मेजबान चीन से होगा। इस मैच में कामयाबी से भारत को 17 साल तक की उम्र की खवातीन फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लेगी जो खवातीन फुटबॉल में मेरिट की बुनियाद पर फीफा वर्ल्ड कप के लिए पहली तारीखी रिसाई होगी। और अब आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया बोहरान के दौरान शहरियों से जोर देकर कहा है कि वो एक साल तक सोना न खरीदें, ईंधन की खपत कम करें और गैर मुल्की जर मुबादला का तहफ्फुज करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शिरकत के लिए प्रभात पटन पहुंच गए हैं। वो वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का इफ्तिताह भी करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की अमन तजवीज के तई ईरान के जवाब को पूरी तरह नाकाबिल कबूल करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। दो भारतीय शहरी जो हंता वायरस से मुतासिर एक सियाहती जहाज में सवार थे महफूज हैं और उनमें इस वायरस की कोई अलामत नहीं पाई गई है। और फुटबॉल में आज सोजू में 17 साल तक की उम्र की खवातीन के एएफसी एशियाई कप में अहम क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत का मुकाबला मेजबान चीन से होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात आप सुन रहे हैं। पेशो खदमत है प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा।

तीसरी मंजिल फिल्म का नगमा आपने मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में सुना। किशोर कुमार के साथ अब सुनिए लता मंगेशकर को फिल्म है खुददार।

मुकेश और आशा भोसले की आवाजों में जंगली फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना। अब सुनिए काजल फिल्म का नगमा, महेंद्र कपूर और आशा भोसले का गाया हुआ।

0: सर आँखों पर।
1: असली नकली फिल्म का नगमा आपने लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में सुना। मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम अभी जारी है। वक्त हुआ है तारीख साज प्रोग्राम का और आज का मौजू है पानीपत।
2: शहरों की अहमियत अमूमन तारीख बनाती है, मगर बाज़ शहर ऐसे भी हैं जिन्होंने तारीख बनाई है। शुमाली हिंदुस्तान में एक छोटा सा शहर पानीपत इसकी एक मिसाल है। ये दिल्ली से 50 मील शुमाल में वाक़े है और अब रियासत हरियाणा का एक हिस्सा है और सनती तरक्की के रास्ते पर तेजी से जा रहा है। सन 1947 तक इसकी हैसियत जिला करनाल के एक कस्बे की थी जिसकी आबादी 1 लाख भी नहीं थी। बाशिंदे ज्यादातर जमींदार, किसान, अहले हरफा और मजदूर पेशा थे। मुतवस्सित तबके में इल्म अदब, शायरी, तसव्वुफ और दीनियात की रिवायत भी बहुत उस्तवार और पुरानी थी। किसी एतबार से पानीपत हिंदुस्तान के दूसरे सूबों से मुख्तलिफ न था, बल्कि बाद शहर और कस्बे यकीनी तौर पर इससे ज्यादा आबाद, ज्यादा वसी, बारौनक और जराए पैदावार में कहीं आगे थे। मगर हिंदुस्तान की तारीख पर शायद ही किसी दूसरे शहर ने इतनी गहरी छाप लगाई हो जितना उसे पानीपत ने मुतासिर किया है। इस सरजमीन पर कई फैसलाकुन जंगें लड़ी गईं। हिंदुस्तान का अजीम रजमिया महाभारत कुरुक्षेत्र के मैदान में पेश आया था, जो पानीपत से कुछ बहुत फासले पर नहीं है। पानीपत दिल्ली का दरवाजा और आखिरी दिफाई मोर्चा था, इसलिए यहां की फतह और शिकस्त भी आखिरी होती थी। पानीपत की पहली जंग सन 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के दरमियान हुई और इस सरजमीन पर उस मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी गई जो सन 1857 में बहादुर शाह जफर पर खत्म हुई। मुगल हुकूमत अपने इब्तदाई दौर में बाबर के बेटे हुमायूं के हाथ से निकल गई थी और तकरीबन 20 साल तक शुमाली हिंदुस्तान पर सूरी अफगानों का सिक्का चलता रहा। हुमायूं ने शाह ईरान की मदद से इस दौलत गुमगश्ता को फिर हासिल किया। हुमायूं के मरने पर उसका नौउम्र बेटा जलालुद्दीन अकबर वारिस हुआ। उस वक्त मुगल सल्तनत डामाडोल थी।

0: गुलाम फिल्म का नगमा आपने सुना, कुमार सानू अलका याग्निक का गाया हुआ, और इसके साथ ही आज का मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम भी खत्म हुआ। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, पेश है प्रोग्राम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
0: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं जया भारती। आज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर्नाटक और तेलंगाना दौरे तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने हैदराबाद, वारंगल, संगारेड्डी और बेंगलुरु में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी कई अहम परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया तथा बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में भी हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे की शुरुआत कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में द आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होने के साथ की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने ध्यान, मानसिक स्वास्थ्य, प्रकृति संरक्षण और सामाजिक सेवा से जुड़े विभिन्न राष्ट्रीय अभियानों की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने संस्था के नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया, जिसे आंतरिक शांति और समग्र कल्याण के केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की कई उपलब्धियों के पीछे युवाओं की बड़ी भूमिका है। उन्होंने खुशी व्यक्त की कि आर्ट ऑफ लिविंग जैसी संस्थाएं युवाओं को आधुनिक दौर की चुनौतियों का सामना करने और उनके समाधान खोजने में मदद कर रही है।
2: साथियों, बहुत तेजी से बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। हर दिन नए नए इनोवेशन पूरे की पूरी इकोनॉमी को बदल रहे हैं। भारत इस बदलाव में केवल भागीदारी नहीं कर रहा, वो कई क्षेत्रों में नेतृत्व भी कर रहा है। भारत को डिजिटल पेमेंट में ग्लोबल लीडर बनाया है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है और फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। स्टार्टअप में भारत बहुत तेजी से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बना है। हमारे युवा आज स्पेस में अपनी सैटेलाइट भेज रहे हैं। देश की ऐसी सभी उपलब्धियों का सबसे बड़ा कारण है हमारे युवा है और आर्ट ऑफ लिविंग है।
0: द आर्ट ऑफ लिविंग के वर्षगांठ समारोह में भाग लेने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक अन्य कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया, जहां उन्होंने आज के दिन यानी 10 मई के ऐतिहासिक महत्व की चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसी दिन वर्ष 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी भड़की थी, जो आगे चलकर एक बड़े आंदोलन में बदल गई और गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया। प्रधानमंत्री ने साहस और वीरता की इसी विरासत को देश की सबसे बड़ी ताकत बताया।
2: 10 मई की ऐतिहासिक तारीख है। 1857 में आज के ही दिन स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी फूटी थी।

0: मनाई है। 11 तारीख को मैं गुजरात के सोमनाथ में रहूंगा, वहां सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्षों का उत्सव मनाया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए ऐसे ऐतिहासिक अवसर हमें नई ऊर्जा से भरते हैं।
1: साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच देश के हितों की रक्षा के लिए संसाधनों का संरक्षण भी बेहद जरूरी है। उन्होंने इस संबंध में लोगों से विशेष अपील करते हुए जिम्मेदारी और जागरूकता के साथ संसाधनों के उपयोग पर जोर दिया।
0: देश का हित, देश के लोगों का हित, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। आप देख रहे हैं कि इस समय वैश्विक स्तर पर किस तरह की चुनौतियां हैं। वेस्ट एशिया में संकट की स्थितियां लगातार बनी हुई है। युद्ध के इस माहौल का बहुत नकारात्मक असर पूरे विश्व पर पड़ा है और भारत भी इससे प्रभावित हो रहा है। हमारे नार प्रभु केम्पेगौड़ा जी कर्तव्य पालन की मिसाल रहे हैं। उनकी धरती से मैं देश के लोगों से भी एक आग्रह करना चाहता हूं, देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य में हमें अपना संयम भी बढ़ाना होगा, हमें मिलकर संसाधनों को बचाना होगा, देश के हितों की रक्षा करनी होगी। जिस तरह कोरोना काल में हमने संकटों का मिलकर सामना किया था, वैसे ही देशभक्ति की भावना से हमें फिर एक बार भारत को इन वैश्विक संकटों से निकालने के लिए एक साथ खड़ा होना ही होगा।
1: बेंगलुरु के कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद पहुंचे, जहां उन्होंने लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे के अंतर्गत गुडबल्लूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 को 4 लेन करने की परियोजना की आधारशिला रखी। करीब 3,175 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से यात्रा समय में लगभग 1.5 घंटे की कमी आएगी, साथ ही ईंधन की बचत और लॉजिस्टिक्स दक्षता में भी सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र की नींव रखी। यह क्षेत्र हैदराबाद नागपुर औद्योगिक गलियारे के तहत विकसित किया जा रहा है। करीब 3,245 एकड़ में बनने वाली इस परियोजना पर 2,350 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 65 के पास स्थित यह औद्योगिक क्षेत्र सड़क, रेल और हवाई संपर्क से जुड़ा हुआ है। यहां ऑटोमोबाइल, फूड प्रोसेसिंग, मशीनरी और इलेक्ट्रिकल उपकरण जैसे उद्योग स्थापित किए जाने हैं। इस परियोजना से लगभग 10,000 करोड़ रुपए के निवेश और बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन किया। ये पार्क काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ये देश का पहला पूरी तरह से तैयार पीएम मित्र पार्क है, जो लगभग 1,700 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है।
0: अतीत में जब भारत दुनिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी था, तब हमारे वस्त्र उद्योग की बहुत बड़ी भूमिका थी। अब हम अपनी उस विरासत को फिर से सशक्त कर रहे हैं। वारंगल का पीएम मित्र पार्क देश में टेक्सटाइल क्रांति को गति देगा। पीएम मित्र पार्क में लगने वाली यूनिट्स को केंद्र सरकार की योजनाओं का भी पूरा लाभ मिलेगा। उन्हें केंद्र सरकार की पीएलआई स्कीम से भी मदद मिलेगी, यानी इस टेक्सटाइल पार्क से बड़ी संख्या में रोजगार का निर्माण होगा। खासतौर पर जो हमारी बहनें बेटियां हैं, उनके लिए अनेक अवसर बनने वाले हैं।
1: ये पार्क किसानों से लेकर कपड़ा उद्योग और निर्यात तक पूरी प्रक्रिया को एक ही जगह जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पार्क में सड़क, बिजली और पानी जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष जल शोधन व्यवस्था भी तैयार की गई है। प्रधानमंत्री ने लगभग 1,535 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित की। इसके तहत काजीपेट विजयवाड़ा रेल लाइन के कई हिस्सों में नई लाइन और अतिरिक्त ट्रैक तैयार किए गए। इससे ट्रेनों की आवाजाही तेज होने, भीड़ कम होने और माल ढुलाई में सुविधा मिलने की उम्मीद है। हैदराबाद में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वर्ष 2000

0: 14 से पहले अविभाजित आंध्र प्रदेश के लिए रेलवे बजट 1,000 करोड़ रुपए से भी कम हुआ करता था, जबकि आज अकेले तेलंगाना के लिए रेलवे बजट करीब 5,500 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। साथ ही राज्य में इस समय लगभग 50,000 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
1: साथियों, साल 2014 से पहले अविभाजित आंध्र प्रदेश के लिए 1,000 करोड़ रुपए से भी कम का रेलवे बजट होता था। रेवंता जी सुन रहे हैं ना, संयुक्त आंध्र के समय रेलवे का बजट 1,000 करोड़ रुपए से भी कम था। आज सिर्फ संयुक्त आंध्र की बात नहीं कर रहा, आज सिर्फ तेलंगाना का रेलवे बजट ही लगभग 5,500 करोड़ रुपए का है। वर्तमान में करीब 50,000 करोड़ रुपए के रेल प्रोजेक्ट्स पर यहाँ काम चल रहा है।
0: इसके अलावा काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का भी लोकार्पण हुआ। इससे रेलवे जंक्शन पर ट्रेनों की भीड़ कम होगी और ट्रेनों के संचालन में भी तेजी आएगी। प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में इंजन ऑयल के मलकापुर टर्मिनल का भी लोकार्पण किया। 600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार इस परियोजना को क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति मजबूत करने और बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण किया। ये अस्पताल कैंसर के इलाज के लिए बनाया गया एक बड़ा मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है। 18 मंजिला यह अस्पताल करीब 21 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है। अस्पताल में 1,500 बिस्तरों की सुविधा है। यहाँ 150 से अधिक डॉक्टर परामर्श कक्ष और 29 आधुनिक ऑपरेशन थिएटर बनाए गए हैं। अस्पताल में कैंसर से जुड़े कई तरह के इलाज की भी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इनमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, कैंसर सर्जरी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी सेवाएं भी शामिल है। इसके साथ ही आधुनिक जांच लैब और ब्लड सेंटर की सुविधा भी दी गई है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में तेलंगाना की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि साइबराबाद आज देश और दुनिया में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है और ये तेलंगाना तथा देश के तेज विकास का बड़ा केंद्र बन रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को देश का प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के उद्देश्य से कई बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। उन्होंने इन विकास परियोजनाओं के लिए तेलंगाना के लोगों को भी बधाई दी।
1: साइबराबाद का सामर्थ्य नेशनल भी है और ग्लोबल भी है। ये तेलंगाना के और देश के तेज विकास का प्रमुख केंद्र है। इसलिए आज साइबराबाद से तेलंगाना को देश का एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाने के लिए अनेक बड़े प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं। आज जिन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, इससे यहाँ हजारों हजार नए रोजगार बनेंगे और तेलंगाना की कनेक्टिविटी भी सशक्त होगी। मैं तेलंगाना की जनता को इन प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: आज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि तेलंगाना का युवा नए सपने देख रहा है, किसान नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और राज्य के उद्योग, एमएसएमई तथा स्टार्टअप विकसित तेलंगाना के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि तेलंगाना का विकास विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री ने ये आश्वासन भी दिया कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए तेज गति से काम करती रहेगी।
1: आज तेलंगाना का युवा नए सपने देख रहा है, यहाँ का किसान नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ना चाहता है, यहाँ के उद्योग, यहाँ के एमएसएमई, यहाँ के स्टार्टअप सब एक विकसित तेलंगाना के निर्माण में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं, क्योंकि तेलंगाना विकसित होगा तो भारत विकसित होगा। मैं तेलंगाना के हर परिवारजनों को भरोसा दिलाता हूँ कि आपके सपने पूरे करने के लिए केंद्र सरकार ही इससे भी और तेज गति से काम करती ही रहेगी।
0: कर्नाटक और तेलंगाना की इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुनियादी ढांचे, उद्योग, स्वास्थ्य, ऊर्जा और सामाजिक विकास से जुड़ी अनेक परियोजनाओं की सौगात दी है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना, विकास को गति देना और देश में बेहतर संपर्क सुविधाओं का विस्तार करना है। ये सभी परियोजनाएं विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करती है।

0: इन परियोजनाओं से न केवल दक्षिण भारत में संपर्क और निवेश को बढ़ावा मिलेगा बल्कि रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाओं और औद्योगिक विकास को भी नई दिशा मिलेगी। इसी के साथ आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, जिसे लिखा है हमारे सहयोगी अनिकेत ने। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। नमस्कार।
1: सुर्खियों में
2: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर उर्दू सर्विस की नशरियात आप सबके लिए दस्तयाब है। अब से चंद ही लम्हों के बाद आलमी खबरें नशर की जाएंगी।

ये आकाशवाणी है। अब आप माजिद अली से आलमी खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया बहरान के तनाजुर में शहरियों से जोर देकर कहा है कि वो एक साल तक सोना ना खरीदें, ईंधन की खपत कम करें और गैर मुल्की जर मुबादला का तहफुज करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की अमन तजवीज के तई ईरान के जवाब को पूरी तरह नाकाबिल कबूल करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। सऊदी अरब ने पड़ोसी खलीजी ममालिक को निशाना बनाकर किए गए ईरानी हमलों की मजम्मत की है। दो भारतीय शहरी जो हंता वायरस से मुतासर एक सियाहती जहाज में सवार थे महफूज हैं और उनमें इस वायरस की कोई अलामत नहीं पाई गई है। और फुटबॉल में आज सुजू में 17 साल की उम्र की खवातीन के एएफसी एशियाई कप में अहम क्वार्टर फाइनल मैच में भारत का मुकाबला मेजबान चीन से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के शहरियों से कहा है कि वो मगरबी एशिया बहरान के दौरान मुल्क को मजबूत करने में हिस्सेदार बने। उन्होंने शहरियों से जोर देकर कहा है कि वो एक साल तक सोना ना खरीदें, ईंधन का कम इस्तेमाल करें और गैर मुल्की जर मुबादला की बचत करें। कल हैदराबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने मुल्क के शहरियों से सात अपीलें की। उन्होंने शहरियों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूलिंग के जरिए दरामदी ईंधन को बचाकर गैर मुल्की जर मुबादला बचाने में मदद करने को कहा। वजीर आजम ने यह अपील ऐसे वक्त की है जब मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी और आबनाए हुरमुज में रुकावटों की वजह से खाम तेल की आलमी कीमतें $100 के पार पहुंच गई हैं। पिछले महीने के आखिर में खाम तेल की कीमतें 52 हफ्तों की सबसे ऊंची सतह $126 पर पहुंच गई थी। वजीर आजम मोदी ने एक साल के लिए गैर मुल्की सफर न करने पर गौर करने को कहा है। उन्होंने शहरियों से यह भी कहा है कि वो गैर मुल्की अखराजात जैसे गैर ममालिक में शादियां करना जैसी तकरीबात में भी कमी लाएं और एक साल के लिए ज्यादा सोना खरीदने से भी परहेज करें। जनाब मोदी ने वर्क फ्रॉम होम को फिर से शुरू करने को भी कहा है। वजीर आजम मोदी ने शहरियों से यह भी कहा है कि वो खुरदनी तेल का भी इस्तेमाल कम करें। उन्होंने किसानों से जोर देकर कहा है कि वो बैरून मुल्क से दरामद की गई कीमियावी खादों पर इन्हसार कम करें। इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने शहरियों और तिजारती इदारों से जोर देकर कहा है कि वो ऐसी चीजों पर अखराजात को कम करें जिसमें गैर मुल्की जर मुबादला की जरूरत पड़ती है। आज नई दिल्ली में सीआईआई की सालाना तिजारती छोटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि मगरबी एशिया में तनाज़ा अभी जारी है और कोई समझौता अभी बहुत दूर है, इसलिए इक्तिसादी महाज पर जिम्मेदारी के साथ काम करना मुल्क के लिए बहुत अहम है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मुल्क के शहरी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे मकाम तलाश करें जहां गैर मुल्की जर मुबादला को कम किया जा सकता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सोमनाथ अमृत पर्व की तकरीबात में शिरकत के लिए आज गुजरात में प्रभास पटन पहुंचे। वजीर आजम ने हेलीपैड पर उतरने के बाद हमीर जी गोहिल सर्किल तक 1 किलोमीटर तक का एक शानदार रोड शो किया जिसके दौरान लोगों का एक हुजूम मौजूद था। जनाब मोदी ने आवाम को मुबारकबाद दी और लोगों ने उनका इस्तकबाल डमरुओं से किया। रोड शो के दौरान वजीर आला भूपेंद्र पटेल और नायब वजीर आला हर्ष सांघवी भी मौजूद थे। तकरीबात के दौरान वजीर आजम मजहबी प्रोग्रामों में शिरकत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आवाम को टेक्नोलॉजी के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद पेश की।

0: कोई अलामत नहीं पाई गई है। जर्मनी का परचम बरदार जहाज एमवी होंडियस इन दो भारतीय बाशिंदों समेत तकरीबन 150 अफराद को ले जा रहा था, जो कल स्पेन पहुंचा। इस जहाज को इस वबा के फूट पड़ने के बाद कैनरी जजीरों से कुछ दूर लंगरअंदाज कर दिया गया है। फुटबॉल में आज सुजू के मकाम पर 17 साल की उम्र तक की खवातीन एएफसी एशियन कप के क्वार्टर फाइनल में भारत का मुकाबला मेजबान चीन से होगा। इस मैच में कामयाबी से भारत को 17 साल की उम्र तक की खवातीन फीफा वर्ल्ड के लिए क्वालिफाई कर लेगा, जो खवातीन फुटबॉल में मेरिट की बुनियाद पर फीफा वर्ल्ड कप के लिए पहली तारीखी रसाई होगी। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मग़रिबी एशिया बहरान के तनाजुर में शहरियों से जोर देकर कहा है कि वो एक साल तक सोना ना खरीदें, ईंधन की खपत कम करें और गैर मुल्की ज़र-ए-मुबादला का तहफ्फुज़ करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की अहम तजवीज़ के तहत ईरान के जवाब को पूरी तरह नाकाबिले कबूल करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। सऊदी अरब ने पड़ोसी खलीजी ममालिक को निशाना बनाकर किए गए ईरानी हमलों की मजम्मत की है। दो भारतीय शहरी जो हंता वायरस से मुतासर एक सयाहती जहाज में सवार थे महफूज हैं और उनमें इस वायरस की कोई अलामत नहीं पाई गई है। और फुटबॉल में आज सुजू में 17 साल तक की उम्र की खवातीन के एएफसी एशियाई कप में अहम क्वार्टर फाइनल मैच में भारत का मुकाबला मेजबान चीन से होगा। इसके साथ ही आलमी खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात आप सुन रहे हैं। पेश है अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया बहरान के तनाजुर में शहरियों से जोर देकर कहा है कि वो एक साल तक सोना न खरीदें, ईंधन की खपत कम करें और गैर मुल्की जर मुबादला का तहफ्फुज करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की अमन तजवीज के तई ईरान के जवाब को पूरी तरह नाकाबिले कबूल करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। सऊदी अरब ने पड़ोसी खलीजी ममालिक को निशाना बनाकर किए गए ईरानी हमलों की मजम्मत की है। दो भारतीय शहरी जो हंटा वायरस से मुतासिरा एक सियाहती जहाज में सवार थे महफूज हैं और उनमें इस वायरस की कोई अलामत नहीं पाई गई है। और फुटबॉल में आज सोजू में 17 साल तक की उम्र की खवातीन के एशियाई कप में अहम क्वार्टर फाइनल मैच में भारत का मुकाबला मेजबान चीन से होगा। इसके साथ ही उर्दू सर्विस की पहली मजलिस का वक्त अब खत्म होता है। दीजिए इजाजत।
1: कश्मीर दिल्ली का इंद्रप्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर दिन के 1:15 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं एक ही फिल्म से कार्यक्रम। तो स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी का नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में।

श्रोताओं, 90 के दशक में एक ऐसी फिल्म आई थी जिसने प्यार को इतनी खूबसूरत अंदाज में दिखाया कि लोग आज भी उसके गाने, उसके डायलॉग को भूल नहीं पाए। एक ऐसी फिल्म जिसकी कहानी आजादी की लड़ाई के दौर से सांस ले रही है, जहां एक तरफ भारत छोड़ो आंदोलन की गूंज थी और दूसरी तरफ एक प्यारी सी प्रेम कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उस दौर में इस फिल्म ने तकनीकी मामले में भी इतिहास रचा, क्योंकि ये भारत की पहली फिल्म थी जो डॉल्बी एसआर साउंड के साथ रिलीज हुई थी। शानदार सिनेमेटोग्राफी, दिल को छू लेने वाला संगीत और हर फ्रेम में महसूस होने वाली नजाकत, जो लोगों के लिए थिएटर का एक्सपीरियंस बिल्कुल नया बना गया।

श्रोताओ, विदु विनोद चोपड़ा के निर्देशन में बनी इस कहानी को संजय लीला भंसाली, कामना चंद्रा और खुद विधु विनोद चोपड़ा ने लिखा था। कहा जाता है कि इसकी मूल कहानी 1992 की कन्नड़ फिल्म मैसूर मलिंगे से प्रेरित थी। और श्रोताओ, अब हम फिल्म का नाम बताने से पहले जरा इसका एक खूबसूरत सा गाना आपको सुनाते हैं और उसके बाद बताएंगे इस फिल्म का नाम। तब तक आप लोग भी इस फिल्म का नाम गेस कीजिए और हमें iPRADIODELH@gmail.com पर मेल करके बता दीजिए।

श्रोताओं, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस फिल्म की बात कर रहे हैं। एक ऐसी फिल्म जिसका संगीत आज भी हवाओं में खुला हुआ है, महसूस होता है, 1942 अ लव स्टोरी। आइए अब बात करते हैं फिल्म के किरदारों की। नरेन के किरदार के लिए सबसे पहले आमिर खान का नाम सोचा गया था, लेकिन डेट्स की समस्या की वजह से बात आगे बढ़ नहीं पाई। वहीं विनोद चोपड़ा शाहरुख खान को भी एक अहम रोल देना चाहते थे, जो बाद में रघुवीर यादव ने निभाया। इसके बाद ये रोल अनिल कपूर तक पहुंचा। शुरुआत में अनिल कपूर इस फिल्म को करने को लेकर थोड़ा हिचकिचा रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद वो उस समय इस तरह के यंग रोमांटिक किरदार स्क्रीन पर सही तरह से निभा नहीं पाएंगे। लेकिन बाद में उन्होंने इस रोल के लिए अपने लुक पर काफी काम किया। आज एक्ट्रेस के ट्रांसफॉर्मेशन की खूब बातें होती हैं, लेकिन 90 के दौर में अपने किरदार के हिसाब से लुक बदलने वालों में अनिल कपूर भी काफी आगे थे। लम्हे के लिए इन्होंने मशहूर मूछें हटवाई थी और 1942 लव स्टोरी के लिए बाल छोटे करवाए और मूछों को भी थोड़ा हल्का करवाया। उनका ये नया और फ्रेश लुक दर्शकों को खूब पसंद आया। मनीषा कोइराला के लिए इस फिल्म तक पहुंचना काफी दिलचस्प रहा। दरअसल फिल्म का मशहूर गाना एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जावेद अख्तर ने माधुरी दीक्षित को ध्यान में रखकर लिखा था और रज्जो का जो किरदार था वो भी पहले माधुरी दीक्षित के हिसाब से ही तैयार किया गया था। लेकिन मनीषा ने शुरुआत में फिल्म में रज्जो की छोटी बहन के रोल के लिए ऑडिशन दिया था, और लेकिन बाद में जब माधुरी दीक्षित की डेट्स नहीं मिल पाई तब विनोद चोपड़ा ने मनीषा का ऑडिशन टेप दोबारा देखा और उन्हें रज्जू के किरदार के लिए फाइनल कर दिया। बाद में छोटी बहन वाला किरदार भी कहानी से हटा दिया गया। वहीं फिल्म में आशीष विद्यार्थी, रघुवीर यादव, सुषमा सेठ, अनुपम खेर, डैनी मनोहर सिंह और ब्रायन ग्रोवर जैसे कलाकारों ने भी अपने किरदार से फिल्म को और मजबूत बना दिया। और इस फिल्म से जुड़ी एक बहुत दिलचस्प बात यह भी है कि पूरी फिल्म में जैकी श्रॉफ के किरदार शुभांकर और अनिल कपूर के किरदार नरेन के बीच एक भी डायलॉग नहीं है, फिर भी दोनों के किरदारों की मौजूदगी कहानी में बराबर महसूस होती है। तो चलिए सुनते हैं इसी फिल्म से एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रेस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की जो हमारी फिल्म है वो है 1942 अ लव स्टोरी, और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। तो श्रोताओं, अब जरा चलते हैं इस फिल्म की कहानी की ओर। 1942 अ लव स्टोरी की कहानी आजादी के आंदोलन के दौर की एक खूबसूरत प्रेम कहानी है। फिल्म में नरेन एक अमीर परिवार का लड़का है जिसके पिता अंग्रेजों के वफादार अधिकारी होते हैं। वहीं राजेश्वरी एक क्रांतिकारी की बेटी है जिसका परिवार अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा होता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन उनके परिवारों की सोच और रास्ते बिल्कुल अलग होते हैं। हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब नरेन के पिता चालाकी से राजेश्वरी के पिता का ठिकाना अंग्रेजों को बता देते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद राजेश्वरी क्रांतिकारियों के साथ जुड़ जाती है और नरेंद्र को भी अपने पिता की सच्चाई का एहसास होता है। नरेंद्र फिर अंग्रेजों और अपने पिता के खिलाफ खड़ा हो जाता है। प्यार, धोखा, बलिदान और देशभक्ति के बीच कहानी आगे बढ़ती है। आखिरकार में कई संघर्षों और कुर्बानियों के बाद अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जीत की ओर बढ़ती है। नरेंद्र और राजेश्वरी फिर एक हो जाते हैं और फिल्म भारतीय तिरंगे के साथ एक भावुक और देशभक्ति से भरे अंत पर खत्म होती है, जो प्यार और आजादी दोनों की जीत का एहसास कराती है। तो श्रोताओं, चलिए अब सुनते हैं एक ऐसा ही गाना जो आज भी लोगों के दिलों में उसी ताजगी के साथ बसता है।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इन द प्रेस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की जो हमारी फिल्म है वो है 1942 अ लव स्टोरी, और मैं आपके साथ हूं आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। श्रोताओं, अब बात करते हैं इस फिल्म के संगीत की। 1942 अ लव स्टोरी का संगीत सिर्फ सुपरहिट नहीं था, ये वो एल्बम था जिसे सुनकर लोगों को प्यार महसूस होने लगा था। इस फिल्म के गानों को पंचमदा यानी RD बर्मन ने अपने संगीत से सजाया था, और खूबसूरत बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने, लता मंगेशकर, कुमार शानो, शिवाजी चट्टोपाध्याय और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों ने इन गानों को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। लेकिन इस संगीत के पीछे एक भावुक कहानी भी जुड़ी है। यह RD बर्मन की आखिरी फिल्म थी। कहा जाता है कि फिल्म का काम पूरा करने के कुछ समय बाद ही पंचमदा इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। यह फिल्म उनके निधन के 4 महीने बाद रिलीज हुई, और विनोद चोपड़ा ने यह फिल्म उन्हें ही समर्पित किया था। कुमार शानो से जुड़ा एक मजेदार किस्सा भी है। वो एक दिन रिकॉर्डिंग के लिए बिना शेव किए हुए स्टूडियो पहुंच गए। उन्हें देखकर पंचमदा ने कहा कि ये बड़े मुस्कुराते हुए पंचमदा ने उनसे कहा कि गाना रोमांटिक है तो जरा फ्रेश होकर आओ, और यही बारीकी उनके संगीत को इतना खास बनाती है। ये फिल्म उस दौर में ऐसा छाया कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और अपने नाम 9 फिल्म फेयर अवार्ड किया। तो चलिए सुनते हैं इसी फिल्म से एक और प्यारा और खूबसूरत सा गीत।

0: वर्क फ्रॉम होम हाई सैलरी बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की जो हमारी फिल्म है वो है 1942 अ लव स्टोरी। श्रोताओं, आपके प्यारे प्यारे मेल हमारे पास आ गए हैं। ये मेल आया है दुर्गा कॉलोनी हांसी से, राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बबलू डब्लू का, और ये है संदीप, मक्कर, ज्योति, मन्नत, कमल हैं, और ये हैं संजय साहू पोटली करला दुर्ग से, और इनके पूरे परिवार के सदस्य हैं इनके साथ जुड़े हुए, और ये हैं गांव लोहागढ़ ठाकुरावाला से स्वर्णजीत सिंह, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुनरूर, गुनलाल और अविराज सिंह। तो श्रोताओं, चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलते चलते इस फिल्म से जुड़ा एक और दिलचस्प किस्सा हम आपको सुनाते हैं। फिल्म का प्रीमियर मुंबई के मशहूर मेट्रो स्टेशन में रखा गया था। शो रात 9:30 बजे शुरू होना था, लेकिन जैसे ही घड़ी में 9:35 हुए, निर्माता निर्देशक विधु विनोद

मानना था कि जो लोग उनकी मेहनत की कद्र करते हैं उन्हें समय पर पहुंचना चाहिए। नतीजा ये हुआ कि कई बड़े सितारे, निर्माता और निर्देशक बाहर ही रह गए क्योंकि वे देर से पहुंचे थे। विधु नहीं चाहते थे कि लेट आने वालों की वजह से फिल्म देख रहे लोगों का ध्यान भटके। चलिए इसी फिल्म से जुड़ा एक और दिलचस्प किस्सा हम आपको सुनाते हैं। नेशनल अवार्ड विनर निर्देशक अश्विनी चौधरी अपनी गर्भवती पत्नी के साथ ये फिल्म देखने गए थे। अभिनय और हमेशा याद रखने वाला संगीत, यही वजह है कि 1942 अ लव स्टोरी आज भी बेहतरीन फिल्मों की लिस्ट में शामिल की जाती है। उम्मीद है कि आपको फिल्म से जुड़ी ये बातें पसंद आई होगी। अगर आपने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी है तो इसे अपनी वॉच लिस्ट में जरूर शामिल कीजिएगा। फिलहाल इसी के साथ अपनी दोस्त राखी बैनर्जी को दीजिए अनुमति, फिर मुलाकात होगी एक और शानदार फिल्म और उससे जुड़े दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक आप सुनते रहिए गीत और गुनगुनाते रहिए संगीत।

0: इसी के साथ ही एक ही फिल्म से कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज की जो फिल्म थी वो थी 1942 अ लव स्टोरी। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर दिन के 1:40 होने वाले हैं। आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं चंचल शर्मा। पहला बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात विच सोमनाथ अमृत पर्व समारोह नूं कीता संबोधन। कहा, सोमनाथ अमृत पर्व अगले 1000 सालां लई देश दी प्रेरणा होवेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वल्लों पछमी एशिया संकट दौरान राष्ट्र नूं मजबूत करन विच देशवासियां नूं भाईवाल बनन दा सद्दा दित्ता। अज राष्ट्रीय तकनालोजी दिवस मनाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अते विज्ञान ते तकनालोजी मंत्री ने देश दे विज्ञानियां इंजीनियर्स नूं शुभकामनावां दित्तियां। हिमाचल प्रदेश दे चंबा जिले विच एक कार हादसे च 6 सैलानियां दी मौत, 4 होर गंभीर जख्मी। अते आईपीएल क्रिकेट विच अज पंजाब किंग्स दा मुकाबला धर्मशाला च शामी 7:30 दिल्ली कैपिटल्स नाल होवेगा। ते हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदर अटुट विश्वास, ब्रह्मता अते देश दी सदीवी आत्मा दे प्रतीक वजों खड़ा है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व सिर्फ अतीत नूं मनाउण लई इक त्यौहार नहीं है, ए अगले 1000 सालां लई देश दी प्रेरणा होवेगा। ओ अज गुजरात विच सोमनाथ अमृत महोत्सव दे मौके लोकां नूं संबोधन कर रहे सन। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोकां नूं याद दवाउंदा है कि कोई भी राष्ट्र लंबे समय तक उदों ही मजबूत रह सकदा है जदों ओ अपणियां जड़ां नाल जुड़िया रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभ्याचार ਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦਾ ਇਕ ਲੇਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਨਾਥ ਇਕ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਨੋਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੋਮਨਾਥ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਲਈ ਇਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पछमी एशिया संकट दौरान राष्ट्र नूं मजबूत करने विच देशवासियां नूं भाईवाल बनन दा सद्दा दित्ता। कल हैदराबाद च एक समागम नूं संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री ने राष्ट्र नूं 7 अपील कीतीआं। उन्होंने नागरिकां नूं जनतक आवाजाई अते कारपूलिंग दी वरतों राहीं दरामद कीते ईंधन दी खपत नूं घटा के विदेशी मुद्रा भंडार नूं बचाउण विच मदद करन दी अपील कीती। प्रधानमंत्री दी इह अपील अजिहे समय आई है जदों पछमी एशिया संकट ते हॉर्मुज़ बंद जोड़ विच चल रहे रूकावट कारण प्रति बैरल

0: कच्चे तेल की कीमत $100 तो उपर बनी हुई है। कच्चे तेल दी कीमतां पिछले महीने के अखीर तक 52 हफ्तों के सब तो उच्च पद्धर से $126 प्रति बैरल से पहुंच गई। प्रधानमंत्री ने नागरिकां नूं एक साल लई विदेश यात्रा नूं मुलतवी करन जिहे विवेकशील खर्चा से मुड़ विचार करन दी अपील की। उन्होंने नागरिकां नूं एक साल लई विदेशां विच व्याह प्रोग्रामां ते खर्चा नूं घटाउण ते सोना ना खरीदन दी भी अपील की।
1: एक जमाना था जब संकट आता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे।
0: श्री मोदी ने घर तो कम यानी वर्क फ्रॉम होम करन दे तरीकियां नूं दुबारा शुरू करन दा सद्दा भी दिता। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकां नूं खाण वाले तेल दी खपत घटाउण ते किसानां नूं विदेशां तों दरामद कीते रसायण खादां ते अपनी निर्भरता घटाउण दी भी अपील की। वोकल फॉर लोकल अंदोलन की शुरूआत करदिया प्रधानमंत्री ने कहा कि साल 2047 तक विकसित भारत के अपने टीचे नूं प्राप्त करन लई भारत लई आत्म निर्भरता ते जैविक खेती जरूरी है। वातावरण जंगलात ते जलवायु तब्दीली बारे मंत्री भूपेन्द्र यादव ने आज नवी दिल्ली तो आस्ट्रेलिया दे जलवायु ते ऊर्जा मंत्री क्रिस बोवेन नाल एक वर्चुअल माध्यम राही मीटिंग की थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच श्री यादव ने कहा कि उन्होंने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP31 दी तरजीहां ते इस साल दे खीच गलबात लई एजेंडे ते चर्चा की है। श्री यादव ने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र जलवायु तब्दीली संगठन नूं 2031 तो 35 लई अपना इरादा राष्ट्रीय तौर ते निर्धारित योगदान जमा करन वाके हल दा हिस्सा बनन लई पूरी तरह वचनबद्ध है। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਹੈ @AIRRNU ਜਲੰਧਰ। ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ RNU-AIR ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ @AIR ਜਲੰਧਰ। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अज राष्ट्रीय तकनालोजी दिवस के मौके से देशवासियों विशेष करके इंजीनियर्स विज्ञानियां नवीनताकारां ते खोजकर्तावां नूं अपनियां शुभकामनावां दित्तियां ने। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच उपराष्ट्रपति ने जिक्र कीता कि इस दिन पोखरण टेस्ट रेंज ने परमाणु परीक्षण कीते गए सन जो कि देश की आत्म निर्भरता अते रणनीतिक शक्ति वाल यात्रा च एक प्रभाषित पल साबित होया सी। उन्हां कहा कि 11 मई 1998 नूं भारत ने दुनिया नूं अपनियां शानदार विज्ञानिक ते तकनीकी समर्थावां दा विखाला कीता सी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय तकनालोजी दिवस के मौके पर देशवासियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया से एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दिन भारत उन विज्ञानियों की अणथक मेहनत और समर्पण को मान नाल याद करता है जिन्हों के उपरालिया ने 1998 च सफल पोखरण परीक्षण को संभव बनाया। उन्होंने कहा कि यह पल भारत की विज्ञानिक उत्तमता और अटुट वचनबद्धता का प्रतीक है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि तकनालोजी एक आत्म निर्भर राष्ट्र बनाउण नवीनता को तेज करन मौकों का विस्तार करन देश के सारे खेत्र विकास योगदान पाने लई एक मुख थम बन गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार का निरंतर ध्यान प्रतिभा सशक्त बनाने खोज न उत्साहित करन ते राष्ट्रीय तरक्की का समर्थन करने वाले नागरिकां दी इच्छावां नूं पूरा करने वाले हल विकसित करन ते है। इस मौके विज्ञान ते तकनालोजी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय तकनालोजी दिवस विज्ञान नवीनता तकनालोजी तरक्की अते विज्ञान समाज ते उद्योग दरम्यान तालमेल प्रति भारत की मजबूत वचनबद्धता नूं दर्शाउंदा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साबका प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूरदर्शी अगुवाई राजनीतिक हिम्मत ते कुशल अगुवाई नूं याद किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि पोखरण तो लैके पुलाड़ डिजिटल नवीनता रक्षा ते उभर रही तकनालोजियां विच बेमिसाल तरक्की तक भारत की यात्रा ज्ञान ते आत्म निर्भरता की शक्ति नूं दर्शाउंदा है। आलमी उथल पुथल के बावजूद देश की आर्थिकता लचकीली बनी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक वालों आज जारी की गई एक खोज रिपोर्ट मुताबिक वित्तीय साल 2026-27 अर्थव्यवस्था के 6.6% के वाधे का अनुमान है। रिपोर्ट में पिछले वित्तीय साल की चौथी तिमाही असल जीडीपी विकास दर लगभग 7.2% रहने का अनुमान लाया गया। आलमी अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने एक मजबूत विकास गति बनाई हुई है। सूचकांक लचकीले आर्थिक गतिविधियां वाल इशारा करते हैं। हालांकि चौथी तिमाही थोड़ी मंदी जरूर आई है। रिपोर्ट मुताबिक अनुसूचित व्यापारक बैंकों वालों बैंक क्रेडिट वाधा एक साल पहला 11.0% के मुकाबले 16.1% तक वध गया। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਲਮੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚ CII ਸਾਲਾਨਾ ਵਪਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨੂਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਏ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਦੂਰ ਏ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। एसबीआई के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। अगले वित्त वर्ष में 6.6% की वृद्धि का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि आने वाले 1000 वर्ष तक देश की प्रेरणा बनेगा।
1: यहां देख रहा हूं विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहां देख रहा हूं असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहां देख रहा हूं हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहां देख रहा हूं भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके, न हरा सके।
0: गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 11 मई 1998 को 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे, जिनके माध्यम से देश के वैज्ञानिकों ने भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने किया।
1: दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष महापूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक भी किया। मंदिर के इतिहास में पहली बार शिखर पर 11 तीर्थस्थलों से लाए गए पवित्र जल से जलाभिषेक किया गया। श्री मोदी ध्वजारोहण समारोह में भी शामिल हुए। इस बीच वायुसेना ने एयर शो किया, जिसमें सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने सोमनाथ के ऊपर मनमोहक करतब दिखाए। हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई। इसके बाद श्री मोदी ने विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन किया। श्री मोदी ने हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान उत्सव के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये उत्सव भारत की शाश्वत ऊर्जा का उत्सव है और सोमनाथ मंदिर भारत की आध्यात्मिक चेतना और आस्था का सशक्त प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर की दृढ़ता और शाश्वत सभ्यतागत महत्व को उजागर करने वाले संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लेख को साझा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि

0: सोमनाथ एक मंदिर से अधिक देश के मजबूत मनोबल का प्रमाण है। अपने लेख में श्री शेखावत ने मंदिर के इतिहास को समकालीन भारत के साथ जोड़ते हुए लिखा है कि सोमनाथ की भावना 21वीं सदी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। श्री शेखावत ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत वर्ष भर चलने वाले राष्ट्रीय आयोजनों का उल्लेख किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कहा कि राज्य सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में नई सरकार गठित होने के बाद आज हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी।
1: आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा। पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा, बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजोल्व हो जाएगा।
0: श्री अधिकारी ने राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना और कई अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की घोषणा की। राज्य को अब आधिकारिक तौर पर आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर लिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ भी प्राप्त किया जा सकेगा। श्री अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश तत्काल लागू किए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल ने चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए वचन के अनुसार विद्यालय की नौकरी के आवेदकों के लिए उम्र सीमा में 5 वर्ष का विस्तार करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। तमिलनाडु विधानसभा में आज 100 से अधिक नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। मुख्यमंत्री सी जोसफ विजय और कैबिनेट सदस्यों, प्रतिपक्ष नेता उदयनिधि स्टालिन, पूर्व मुख्यमंत्रियों इडापड्डी के पलनीसामी तथा ओ पन्नीरसेल्वम ने भी शपथ ली। इसके अलावा प्रमुख सदस्यों प्रेमलता विजयकांत, सौम्या, अंबुमणि और गठबंधन के नेताओं ने भी शपथ ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देशभर में लागू हो जाएगा। देशभर में नए ढांचे के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गांव के समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महिला श्रमिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम कार्यस्थलों पर बच्चों की देखभाल के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान करता है। 5 वर्ष से कम उम्र के 5 या अधिक बच्चों की उपस्थिति में उनकी देखभाल के लिए एक महिला श्रमिक को नियुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों को साझेदार बनने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से 7 अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पोलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपभोग को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह किया। उन्होंने 1 वर्ष के लिए विदेशों में शादी कार्यक्रम और अत्यधिक सोने की खरीदारी न करने का आग्रह भी किया। वोकल फॉर लोकल आंदोलन का नारा बुलंद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भरता और जैविक कृषि भारत के लिए आवश्यक है।
3: भारत सरकार खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप की योजना चला रही है। मैं कोविड काल में भी आग्रह करता था कि हम स्थानीय चीजें खरीदें, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चले। हम मेड इन इंडिया चीजें खरीदकर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं और हमारे देश में स्थानीय उत्पादन की कोई कमी नहीं है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पश्चिम एशिया की स्थिति की निगरानी करने के लिए गठित अनौपचारिक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में क्षेत्र की उभरती स्थिति की समीक्षा की गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए नागरिकों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है। आज नई दिल्ली में आयोजित सीआईआई के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष अब भी जारी है और शांति की स्थिति अभी दूर है। देश के लिए आर्थिक मोर्चे पर जिम्मेदारी से काम करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों को अपने दैनिक जीवन में उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहां विदेशी मुद्रा का खर्च कम से कम किया जा सके।
4: We as citizens, as our Prime Minister has asked,
5: हमारे प्रधानमंत्री ने हम सभी नागरिकों से उन सभी चीजों पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है जिनके लिए विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। साथ ही हमें अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करनी भी होगी। ये दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम दिए गए आह्वान को गंभीरता से लें।
4: Take cognizance of Honorable Prime Minister's call to the nation.
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे में एकीकृत कार्बन कैप्चर और उपयोग संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने भूवैज्ञानिक कार्बन डाइऑक्साइड पृथक्करण के लिए वैज्ञानिक ड्रिलिंग का भी शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस गंभीर वैश्विक समस्या का समाधान विकसित करने के लिए आईआईटी बॉम्बे को बधाई दी और घोषणा की कि इस परियोजना को अगले महीने फ्रांस में होने वाले भारत इनोवेट्स 2026 में प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय विमानों और हवाई अड्डों को निशाना बनाया था। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्योपुर जिले में कुनौर राष्ट्रीय उद्यान के खुले जंगल में आज दो मादा चीता को छोड़ा। ये दोनों चीते इस वर्ष फरवरी में बोत्सवाना से भारत लाए गए 9 चीतों में से हैं। उन्हें क्वारंटीन और अनुकूलन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद जंगल में छोड़ा गया। इनके आने से देश में चीतों की कुल संख्या 57 हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वैश्विक उथल पुथल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आज जारी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अर्थव्यवस्था में 6.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान लगभग 7.2% लगाया गया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने विकास की मजबूत गति को बनाए रखा है। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे धर्मशाला में खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। एसबीआई के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:30 हुए हैं। वक्त है कार्यक्रम एक ही कलाकार का। कार्यक्रम एक ही कलाकार लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ, आपकी होस्ट और दोस्त रिया प्रकाश। तो आज के जो हमारे कलाकार हैं उनका नाम है बॉबी देओल। जी हां, आप में से बहुत सारे लोग शायद ये नहीं जानते होंगे कि असल में उनका नाम बॉबी देओल नहीं बल्कि विजय सिंह देओल है। बॉबी देओल तो उनका स्टेज नेम है। ये एक प्रसिद्ध भारतीय फिल्म अभिनेता हैं और हमारे दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के छोटे बेटे भी हैं। इनका जन्म 27 जनवरी 1969 में मुंबई में हुआ था। तो बातें तो और भी होंगी। फिलहाल इनकी पहली फिल्म बरसात, जो कि 1995 में रिलीज हुई थी, इस फिल्म का गीत आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, साल 1995 में बरसात फिल्म से डेब्यू करने वाले बॉबी देओल ने गुप्त, सोल्जर और हमराज जैसी कई हिट फिल्मों से बॉलीवुड में अपनी पहचान बना ली। उन्हें फिल्म बरसात के लिए बेस्ट डेब्यू मेल का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। बॉबी देओल ने बाल कलाकार के रूप में साल 1977 में धर्मवीर फिल्म में भी काम किया। हिंदी फिल्मों के साथ साथ इन्होंने तमिल एवं तेलुगु फिल्मों में भी अभिनय किया है। इनकी दूसरी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म गुप्त, जो कि 1997 में रिलीज हुई थी, बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई, जिसमें इनके ऑपोजिट मनीषा कोइराला एवं काजोल नजर आईं। इस फिल्म के सारे गीतों की भी काफी सराहना की गई।

श्रोताओं, बॉबी देओल की अगली सुपरहिट सन 2002 में आई फिल्म हमराज थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल साबित हुई। नतीजा ये निकला कि यह फिल्म उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक रही। इस फिल्म में उनके ग्रे शेड वाले कैरेक्टर और दमदार अभिनय को खूब सराहा गया। इस फिल्म में उन्होंने राज सिंघानिया की मुख्य भूमिका निभाई, जो काफी लोकप्रिय रही। इस फिल्म में इनके ऑपोजिट अमीषा पटेल और अक्षय खन्ना थे। हमराज फिल्म के लिए बॉबी देओल फिल्म फेयर के लिए भी नॉमिनेट हुए। साथ ही आपको बता दें कि इस फिल्म के गाने को भी खूब सराहा गया।

श्रोताओं, 2007 में आई फिल्म अपने एक ऐसी फिल्म रही जहां बॉबी देओल अपने बड़े भाई सनी देओल और पिता धर्मेंद्र के साथ नजर आए थे। ये फिल्म बॉबी देओल के दिल के काफी करीब है क्योंकि इस फिल्म का जो टाइटल है वो अपने आप में ही उनकी निजी जिंदगी में मायने रखता है। आखिर अपने तो अपने होते हैं।

श्रोताओं, देखा जाए तो बॉबी देओल एक ऑलराउंडर अभिनेता हैं, जिन्होंने एक्शन, रोमांस, सस्पेंस, थ्रिलर, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव रोल एवं सीरियस रोल के साथ साथ इमोशनल कैरेक्टर भी बखूबी निभाए हैं। इन्होंने सफलता एवं संघर्ष दोनों दौर देखे हैं, पर कभी ना तो हिम्मत हारी ना ही कभी सफलता को अपने सर चढ़ने दिया।

इस अंतिम गीत के साथ ही संपन्न होता है कार्यक्रम एक ही कलाकार। आशा करती हूँ कार्यक्रम से जुड़ी जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी। अब अपनी होस्ट और दोस्त रिया प्रकाश को दीजिए अनुमति।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

सामिन आदावर्स, ये आकाशवाणी है। सपेर के 3 बज चुके हैं। उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस के नशात का आगाज होता है। इस मजलिस में आप तमाम सामिन का खैर मकदम है। उर्दू सर्विस के नशात आप सुन सकते हैं मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। एक मुख्तसर तारुफ इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों के हवाले से।

सपहर 3:30 कहकशा प्रोग्राम के तहत आज आप सुनेंगे फिल्म राम और श्याम की कहानी और उसके नगमे। इस प्रोग्राम को तरतीब दिया है जनाब विपिन कुमार ने। शाम 4:00 आप लुत्फंदोज होंगे फिल्मी मौसीकी से। फिल्मी नगमों का ये प्रोग्राम जारी रहेगा 4:50 तक। चार बजकर 50 मिनट पर खबरी नशे की जाएंगी और शाम 5:00 उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। सामिन ये एक मुख्तसर तारुफ इस मजलिस में नशोनाले प्रोग्रामों के हवाले से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सहपहर के 3:05 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशे की जाएंगी।
1: अब आप अर्जुमंद अली खान से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव से अगले 1000 साल के लिए मुल्क के नजरिए को तरगीब मिलेगी। जनाब मोदी ने मंदिर के अहिया के 75 साल मुकम्मल होने पर महापूजा की। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने सरहद पर बाड़ लगाने के लिए आराजी बीएसएफ को मुंतकिल करने का ऐलान किया है और रियासत में आयुष्मान भारत सेहत स्कीम का आगाज भी किया है। मरकज ने विकसित भारत जी राम जी एक्ट के निफाज को नोटिफाई कर दिया है जो 1 जुलाई से शुरू होगा। स्टेट बैंक की तहकीक में कहा गया है कि आलमी उथल पुथल के तनाजुर में मुल्क की मईशत बदस्तूर मुस्तहकम है और अगले माली साल में शरह तरक्की 6.6% रहने का अंदाजा लगाया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम धर्मशाला में पंजाब किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर पुख्ता अकीदे रूहानियत और मुल्क की दायमी रूह की एक पवित्र अलामत के तौर पर कायम है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व माजी का जश्न मनाने के लिए सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है बल्कि यह आइंदा 1000 बरस के लिए मुल्क की तहरीक का बायस है। वो गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव के मौके पर आवाम से खिताब कर रहे थे। वजीर आजम ने कहा कि सोमनाथ हमें ये याद दिलाता है कि एक मुल्क उस सूरत में ही मजबूत और मुस्तहकम रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से मरबूत रहे। उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को न झुका सकती है न दबा सकती है। उन्होंने कहा कि 11 मई को पहले 3 न्यूक्लियाई तजुर्बे किए गए और मुल्क के साइंसदानों ने पूरी दुनिया को भारत की सलाहियतों से बावर कराया। उन्होंने कहा कि इन तजुर्बात से दुनिया पर यह जाहिर हुआ कि मुल्क की सियासी कुव्वत इरादी कितनी मजबूत है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज सोमनाथ अमृत पर्व के मौके पर पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव में खसूसी महापूजा की और जनाब मोदी ने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभ अभिषेक रस्म अदा की। मंदिर की तारीख में पहली मरतबा 11 तीर्थ स्थानों का पवित्र जल इस्तेमाल करते हुए मंदिर के शिखर पर जल अभिषेक किया गया। जनाब मोदी ने परचम कुशाई की तकरीब में भी शिरकत की। इस दौरान भारतीय फिजाइया ने एयर शो का एहतमाम किया जिसमें सूर्य किरण टीम ने सोमनाथ मंदिर के ऊपर आसमान में शानदार फिजाई करतब का मुजाहरा किया। इस मौके पर हेलीकॉप्टरों से मंदिर के ऊपर फूल भी बरसाए गए। इसके बाद जनाब मोदी खसूसी नुमाइश देखने गए। जनाब मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्मे पर अकीदत के फूल भी नजर किए। सोमनाथ मंदिर के अहिया के 75 साल पूरे होने के मौके पर सोमनाथ अमृत पर्व मनाया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लोगों पर जोर दिया है कि वो मगरबी एशिया बहरान के तनाजुर में मुल्क को मजबूत बनाने में साझेदार बने। हैदराबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने मुल्क के लोगों से 7 अपीलें की। जनाब मोदी ने शहरियों पर जोर दिया कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूलिंग के इस्तेमाल के जरिए दरामद शुदा ईंधन की खपत कम करके गैर मुल्की जर मुबादला के जखायर बचाने में मदद करें। वजीर आजम की अपील एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब मगरबी एशिया बहरान और आबनाए हुरमुज में तातुल जारी रहने की वजह से खाम तेल की कीमतें $100 फी बैरल से ऊपर चल रही हैं। गुज़श्ता महीने के आखिर में खाम तेल की कीमतें $126 फी बैरल तक पहुंच गई थीं जो पिछले 52 हफ्तों में सबसे ज्यादा हैं। वजीर आजम ने वर्क फ्रॉम होम सिलसिले को बहाल किए जाने की जरूरत भी उजागर की। जनाब मोदी ने लोगों से कहा कि वो खुरदनी तेल का इस्तेमाल कम करें। साथ ही उन्होंने किसानों पर जोर दिया कि वो मुल्क के बाहर से मंगाई गई कीमियावी खाद पर इन्हिसार कम करें। वोकल फॉर लोकल तहरीक को उजागर करते हुए वजीर आजम ने जोर देकर कहा कि 2047 तक विकसित भारत का निशाना हासिल करने के लिए खुद किफालत और नामियाती खेती बाड़ी जरूरी है। वजीर आजम मोदी ने सखाफत और सियाहत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत का एक मजमून शेयर किया है जिसमें सोमनाथ मंदिर की दायमी तहजीबी अहमियत और मजबूती को उजागर किया गया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मगरबी एशिया

0: और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम धर्मशाला में पंजाब किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप हमें सुन रहे हैं। मेरी पसंद ये प्रोग्राम लेकर आपका दोस्त, आपका मेजबान नईम हाजिर खिदमत है। आप सभी को मेरा आदाब। प्रोग्राम की पहली पेशकश मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया हुआ कश्मीर की कली फिल्म का ये दुगाना।

और लीजिए सुनिए जब जब फूल खिले फिल्म का दो गाना मोहम्मद रफी और नंदा का गाया हुआ। नगमा निगार आनंद बख्शी, मौसीकी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

इस नगमे के साथ ही मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। कहकशां प्रोग्राम के तहत लीजिए सुनिए राम और श्याम फिल्म की कहानी और उसके नगमे।

राम यानी अदाकार दिलीप कुमार मरहूम राजा यशवंत राव का इकलौता बेटा है और जायदाद का वाहिद वारिस है, लेकिन इस जायदाद को राजा का दामाद गजेंद्र यानी अदाकार प्राण हड़पना चाहता है। इसलिए बरसों से अपने साले राम और हवेली के लोगों पर वो जुल्म सितम करता रहा है। उसने राम के दिल में बचपन से ही इतनी दहशत भर दी है कि वो उसके साये से भी डरता है। राम का कोई हमदर्द है तो वो है उसकी बहन सुलक्षणा यानी अदाकारा निरुपराय और भांजी यानी बेबी फरीदा। राजा साहब की 15वीं बरसी के मौके पर मिल और कारखानों के मजदूरों ने अपने छोटे मालिक राम की शान में एक जलसे का इंतजाम किया ताकि वो अपनी मांगे भी रख सके। राम इस जलसे में शरीक हुआ। इस मौके पर रक्स और मौसीकी का एक प्रोग्राम भी रखा गया।

जब गजेंद्र को गलतफहमी हुई कि राम अंजना के घर में है तो उसे बहुत गुस्सा आया और वो राम को वापस लाने के इरादे से अंजना के घर पहुंचा जहां श्याम दावतें उड़ा रहा था। श्याम को राम समझकर गजेंद्र उसे हवेली में ले आया। उसने चाहा कि श्याम की हंटर से पिटाई लगाए लेकिन सुलक्षण ने फिलहाल उसे बचा लिया। यहां आकर श्याम को सारी कहानी समझ में आ गई। वो यहां से निकल जाना चाहता था लेकिन न जाने क्यों उसे सुलक्षणा और उसकी छोटी सी गुड़िया जैसी ही बेटी में मकदतीसी कशिश महसूस हुई। उसे अंदाजा हुआ कि हवेली के लोग गजेंद्र के जुल्म का शिकार हैं। दूसरी तरफ राम श्याम के घर में बस गया। शांता भी उसे श्याम समझ बैठी और अपनी खुशी में अपनी सहेलियों को भी शरीक कर लिया।

उधर गजेंद्र ने श्याम से जबरदस्ती कागजात पर दस्तखत करने को कहा। श्याम ने साफ इनकार कर दिया। गजेंद्र ने तैश में आकर श्याम के मुंह पर एक थप्पड़ रसीद किया। जवाब में श्याम ने गजेंद्र की जबरदस्त पिटाई की। श्याम की हिम्मत और बहादुरी को देखकर घर के तमाम लोग हैरत में पड़ गए। धीरे धीरे श्याम ने राम का बिजनेस भी अपने हाथ में ले लिया। गजेंद्र अब श्याम की परछाई से भी कांपता था। एक रोज गजेंद्र की बेटी की सालगिरह के मौके पर श्याम ने खूब खुशियां मनाई और जबरदस्ती गजेंद्र को भी अपने हाथों से केक खिलाया।

और राम के साथ साथ शांता को भी अगवा कर लिया और दोनों को अपने एक गोदाम में कैद कर दिया। अब सारी कहानी गजेंद्र को भी समझ में आ चुकी थी। अब शाम को फंसाने की गरज से उसने एक साजिश तैयार की। उसने एक पार्टी का एहतमाम किया और उसने अंजना और राय साहब को भी मदु किया। शाम ने अपने दिल के जज्बात एक गीत की शक्ल में पेश किए।

सुनने के बाद गजेंद्र ने श्याम पर अपने साले राम के कत्ल का इल्जाम लगाया और इसी महफिल में उसने श्याम की माँ को भी गांव से बुलाकर तमाम लोगों के सामने पेश कर दिया। आखिरकार श्याम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक रोज जब अंजना ने श्याम का दिया हुआ खत पढ़ा तो उसे सारी हकीकत से आगाही हुई। जब राय साहब ने खत पढ़ा तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ कि उन्होंने खामखा श्याम को फांसी के तख्ते तक पहुंचा दिया है। उधर श्याम जेल से फरार होकर फौरन अपनी माँ से मिला तो उसे मालूम हुआ कि राम उसका जुड़वा भाई है। श्याम राम और शांता को आजाद करने के लिए गोदाम में पहुंचा। श्याम और राम एक दूसरे के सामने थे, दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। इतनी देर में गजेंद्र के आदमी ऊपर आ गए, लेकिन उनके आने से पहले ही श्याम ने राम का भेद बदल लिया। गजेंद्र के आदमी उसे राम समझकर नीचे ले गए, जहां गजेंद्र एक पिस्तौल लिए उसका इंतजार कर रहा था। पिस्तौल के निशाने पर गजेंद्र ने श्याम को हुक्म दिया कि वो जायदाद के कागजात पर दस्तखत कर दे। श्याम ने ड्रामा करते हुए दस्तखत कर दिए। जब गजेंद्र ने कागजात पर श्याम लिखे हुए देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन जब तक तो श्याम ने उसकी पिस्तौल को दूर फेंक दिया था। श्याम ने गजेंद्र और उसके आदमियों की खूब जमकर मरम्मत की और फिर अपनी बहन के स्वाग होने की वजह से उसे माफ कर दिया। आखिरकार राम की शादी शांता के साथ और श्याम की शादी अंजना के साथ कर दी गई और इस तरह से हवेली में बरसों से चले आ रहे जुल्म सितम का

0: जाए।
1: कहकशा प्रोग्राम के तहत अभी आप सुन रहे थे राम और श्याम फिल्म की कहानी और उसके नखमे। इस प्रोग्राम को तरतीब दिया था जनाब विपिन कुमार ने। रावी थे एसएम जकी। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारी नशा जारी है मीडियम वेव से 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। लीजिए सुनिए फिल्मी नगमे। फिल्मी मौसीकी का आगाज कर रहे हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। फिल्म है एक मुसाफिर एक हसीना।

महुआ फिल्म का ये नगमा आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। मौसीकी सोनी कोमी की थी, नगमा निगार थे कमर जलालाबादी। और जब सुनी सरस्वती चंद्र फिल्म का नगमा, कल्याण जी आनंद जी की मौसीकी में लता मंगेशकर का गाया हुआ।

नीलकमल फिल्म का नाम आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, साहिल लुधियानवी का लिखा हुआ, मौसीकी थी रवि की। और लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में इस प्रोग्राम का अगला नगमा। फिल्म है आपकी परछाइयां, नगमा निगार राजा मेहदी अली खां, मौसीकी मदन मोहन की।

ये फिल्मी नगमे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से। अगली पेशकश एक कली मुस्काई फिल्म का नगमा लता मंगेशकर का गाया हुआ, मौसीकी मदन मोहन की।

जुलाई से शुरू होगा। स्टेट बैंक की तहकीक में कहा गया है कि आलमी उथल पुथल के तनाजुर में मुल्क की मईशत बदस्तूर मुस्तहकम है और अगले माली साल में शरह तरक्की 6.6% रहने का अंदाजा लगाया गया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम धर्मशाला में पंजाब किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर पुख्ता अकीदे रूहानियत और मुल्क की दायमी रूह की एक पवित्र अलामत के तौर पर कायम है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व माजी का जश्न मनाने के लिए सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है बल्कि यह आइंदा 1000 बरस के लिए मुल्क की तहरीक का बाइस है। वो गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव के मौके पर अवाम से खिताब कर रहे थे। वजीर आजम ने कहा कि सोमनाथ हमें ये याद दिलाता है कि एक मुल्क उस सूरत में ही मजबूत और मुस्तहकम रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से मजबूत रहे। उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को न झुका सकती है न दबा सकती है। उन्होंने कहा कि 11 मई को पहले 3 न्यूक्लियाई तजर्बे किए गए और मुल्क के साइंसदानों ने पूरी दुनिया को भारत की सलाहियतों से बावर कराया। उन्होंने कहा कि इन तजर्बात से दुनिया पर यह जाहिर हुआ कि मुल्क की सियासी कुव्वत इरादी कितनी मजबूत है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज सोमनाथ अमृत पर्व के मौके पर पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर में खसूसी महापूजा की। जनाब मोदी ने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभ अभिषेक रस्म अदा की। मंदिर की तारीख में पहली मरतबा 11 तीर्थ स्थानों का पवित्र जल इस्तेमाल करते हुए मंदिर के शिखर पर जल अभिषेक किया गया। जनाब मोदी ने परचम कुशाई की तकरीब में भी शिरकत की। इस दौरान भारतीय फजाई फौज ने एयर शो का एहतमाम किया जिसमें सूर्य किरण टीम ने सोमनाथ मंदिर के ऊपर आसमान में शानदार फजाई करतब का मुजाहरा किया। इसके बाद जनाब मोदी खुसूसी नुमाइश देखने गए। इससे कबल वजीर आजम ने हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो किया। जनाब मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्मे पर अकीदत के फूल भी नजर किए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लोगों पर जोर दिया है कि वो मगरबी एशिया बहरान के तनाजुर में मुल्क को मजबूत बनाने में साझेदार बने। हैदराबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने मुल्क के लोगों से 7 अपीलें की। जनाब मोदी ने शहरियों पर जोर दिया कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूलिंग के इस्तेमाल के जरिए दरामद शुदा ईंधन की खपत कम करके गैर मुल्की जर मुबादला के जखायर बचाने में मदद करें। वजीर आजम की अपील एक ऐसे वक्त में सामने आई है कि जब मगरबी एशिया बहरान और आबनाए हुरमुज में तातुल जारी रहने की वजह से खाम तेल की कीमतें $100 फी बैरल से ऊपर चल रही हैं। वजीर आजम ने वर्क फ्रॉम होम सिलसिले को बहाल किए जाने की जरूरत भी उजागर की। जनाब मोदी ने लोगों से कहा कि वो खुर्दनी तेल का इस्तेमाल कम करें। साथ ही उन्होंने किसानों पर जोर दिया कि वो मुल्क से बाहर मंगाई गई कीमियावी खाद पर इन्हिसार कम करें। वोकल फॉर लोकल तहरीक को उजागर करते हुए वजीर आजम ने जोर देकर कहा कि 2047 तक विकसित भारत का निशाना हासिल करने के लिए खुद किफालत और नामियाती खेती बाड़ी जरूरी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सकाफत और सयाहत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत का एक मजमून शेयर किया है जिसमें सोमनाथ मंदिर की दायमी तहजीबी अहमियत और मजबूती को उजागर किया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम ने कहा कि मुल्क के देर पर जज्बे को तकवियत पहुंचाते हुए सोमनाथ एक मंदिर से कहीं ज्यादा बढ़कर है। जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि खंडरात से आहिया तक इसके सफर से मुल्क की शानदार मजबूत विरासत और विरसे की अक्कासी होती है। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश से मुत्तसिल सरहद पर बाड़ लगाने के लिए आराजी बीएसएफ को मुंतकिल करने का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि जमीन की मुंतकली का अमल पीर से शुरू हो जाएगा और 1.5 महीने के अंदर अंदर इसे मुकम्मल कर लिया जाएगा। चुनाव के बाद मगरबी बंगाल में नई सरकार की तश्कील के बाद आज काबीना की पहली मीटिंग में यह फैसला किया गया। जनाब अधिकारी ने रियासत में आयुष्मान भारत सेहत स्कीम नीज मरकजी सरकार की कई दीगर स्कीमें नाफिज करने का भी ऐलान किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकज ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी ग्रामीण एक्ट 2025 के निफाज को नोटिफाई किया है। इस साल 1 जुलाई से मुल्क भर में इसका इतलाक होगा। देही तरक्की की वजारत ने कहा है कि यह कानून जिसके तहत हर माली बरस में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी जा रही है देही भारत को बाइख्तियार बनाएगा। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि मुल्क भर में इस नए तरीकाकार को लागू करने के

0: की मौजूदा माली बरस में इसके लिए 95,692 करोड़ रुपए की रकम रखी गई है। खवातीन वर्करों की ज्यादा से ज्यादा शमूलियत को यकीनी बनाने के लिए विकसित भारत जी राम जी एक्ट काम की जगहों पर बच्चों की देखभाल में मदद फराहम करने को खासतौर से तरजीह देता है। काम की जिस जगह पर 5 साल से कम उम्र के 5 या उससे ज्यादा बच्चे होंगे वहां बच्चों की देखभाल के लिए एक खातून वर्कर को मुकर्रर किया जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक तहकीकी रिपोर्ट के मुताबिक आलमी उतार चढ़ाव के बावजूद मुल्क की मईशत मजबूत है। इसमें माली साल 2026-27 के दौरान मईशत की शरह तरक्की 6.6% रहने का अंदाजा लगाया गया है। मजकूरा रिपोर्ट में गुज़िश्ता माली साल की चौथी सहमाही में हकीकी GDP की शरह तरक्की तकरीबन 7.2% रहने की बात कही गई है। अहम शोबों के इशारियों से मजबूत इक्तिसादी सरगर्मी की अक्कासी होती है। हालांकि चौथी सहमाही में मामूली गिरावट देखी गई। आज टेक्नोलॉजी का कौमी दिन मनाया जा रहा है। 1998 के तारीखी पोखरण दोयम एटमी तजर्बात की याद में यह दिन मनाया जाता है। इसका मकसद उन साइंसदानों, इख्तिराकारों और नजरिया साज शख्सियात को खराज तहसीन पेश करना है जो टेक्नोलॉजी, तहकीक और इख्तिरा के जरिए आत्मनिर्भर भारत के ख्वाब को अमली शक्ल देने की खातिर पेश रहे हैं। नायब सदर जमहूरिया CP राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर मुल्क के साइंसदानों, इंजीनियर्स, इख्तिराकारों और तहकीकारों को मुबारकबाद पेश की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज के दिन भारत साइंसदानों की सख्त मेहनत और उनकी लगन को शान से याद करता है जिसके नतीजे में 1998 में पोखरण में कामयाब तजर्बात किए गए। जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि सरकार बासलाहियत अफराद को बाइख्तियार बनाने, तहकीक की हौसला अफजाई करने और मसाइल के हल पैदा करने पर तवज्जो मरकूज कर रही है जिससे मुल्क की पेशरफ्त और अवाम की उमंगों की तकमील दोनों में मदद मिल रही है। IPL क्रिकेट में आज शाम धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में पंजाब किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। फुटबॉल में आज सुजू के मकाम पर 17 साल की उम्र तक की खवातीन AFC एशियन कप के एक अहम क्वार्टर फाइनल में भारत का मुकाबला मेजबान चीन से होगा। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव से अगले 1000 साल के लिए मुल्क के नजरिए को तरगीब मिलेगी। जनाब मोदी ने मंदिर के अहिया को 75 साल मुकम्मल होने पर महापूजा की। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने सरहद पर बाढ़ लगाने के लिए आराजी BSF को मुंतकिल करने का ऐलान किया है और रियासत में आयुष्मान भारत सेहत स्कीम का आगाज भी किया है। मरकज ने विकसित भारत जी राम जी एक्ट के निफाज को नोटिफाई कर दिया है जो 1 जुलाई से शुरू होगा। स्टेट बैंक की तहकीक में कहा गया है कि आलमी उथल पुथल के तनाजुर में मुल्क की मईशत बदस्तूर मुस्तहकम है। और IPL क्रिकेट में आज शाम धर्मशाला में पंजाब किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शाम के 5 बजे जाते हैं। हमारी दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। शब के 9:15 पर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस दिल्ली ए पंजाबी सेवा है। शाम के 5 बजे ने हुन साडी दूजी सभा शुरू हुंदी है। सभा दी शुरुआत सब तो पहला समाज फरमाओ सराई की प्रोग्राम झोक माहिती। ए ऑल इंडिया रेडियो दा सराई की प्रोग्राम है। मैं हरजीत कौर हाजिर हां तुहाडे कीते अज दा प्रोग्राम गिन के सुनन आलियो। सराई कियां दा सुभा है खिलावण पिलावण दा।
3: ਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਖਿਲਾਵਣ ਪਿਲਾਵਣ ਦੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

0: जी हाँ, पहला तुहाकों सुनवेंदे हाँ खाना खजाना प्रोग्राम। तुसा लिट्टी चोखा दा नाम सुना हो सी। बिहार दा खाना है, बहु स्वाद भी होंदा है। ते आओ सूरज कटपालिया कोलू आज खाना खजाना प्रोग्राम विच जानदे हाँ कि लिट्टी चोखा किंज बनावना है।
1: मेरा भारत एक बहु बड़ा मुल्क है, जेंदी उत्तर तो दक्षिण तोनी दी दूरी तकरीबन 3214 किलोमीटर है अते पूर्व कोलो पश्चिम दी दूरी 2933 किलोमीटर है अते दुनिया दा आबादी दे हिसाब नाल दूसरा सब कोल बड़ा मुल्क है, जेंदी आबादी तकरीबन 135 करोड़ दे आसपास है। भंडारे कोल पहले मेरा मतलब है सन 1947 कोल पहले दी गल करूं ता तुसा इंदे विस्तार दा अंदाजा ला सकदे वे, जिर वेले पाकिस्तान ते बंगलादेश भी इंदा हिस्सा होंदे हन। कितने अलग अलग वंश बन्ने बोलियां रीतां ते रिवाज खावण पावण दे सोहणे रंग ते स्वाद अलग अलग मौसम अलग अलग सकाफतां दे लोक इन धरती ते कितनी समझदारी नाल मिलजुल के रहंदे हन। कश्मीर तो घिन के कन्याकुमारी तक एक एजी संस्कृति दा प्रभाव है जेंदी जियो ते जीने दो दी विचारधारा को पुष्ट करेंदी है, इना मतलब है पक्का करेंदी है। ते सर्वे भवंतु सुखीना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणी पशंतु, मां कश्यप दुख भाव भवित जेंदा महामंत्र है। ते आज भी सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास दी विचारधारा को अपना आधार बना के असा दुनिया दे तरक्की याफ्ता मुल्क के नाल रेस लावण दी तैयारी विच है। कहीं भी मुल्क दी सफलता दा मूल मंत्र है उन देश दे लोकां दी सेहत, ते जे मुल्क दे सारे बशिंदे सेहतमंद होसन ता उन मुल्क दे सारे इदारे सेहतमंद होसन ते उन मुल्क दे माशी हालात भी ठीक होसन। ते सेहतमंद रावण दा राज क्या है ओ तुसा सारे जान देवे कि सेहतमंद रावण वाले सीधा सादा घर दा खावण जिवे जिंदे विच मां ते दुवें भी मिलिया होया हुंदेन ओ खावण जेड़ा अपनी मिट्टी नाल जुड़िया होया हुंदे ओ खावण जेड़ा सदियां तो साडी सकाफत दा हिस्सा बन वेंदे बड़ा जरूरी है। हर इलाके दा कोई ना कोई एजा खावण हुंदे जेड़ा उन वसेब दी पछाण बन वेंदे। अपनी सरायकी वसेब दी गल करूं ता साडे सरायकी वसेब दी डोली फिक्का खुआ चिलड़ा मटके आले सीमिया सोबत सोन हलवा इतना दे जाने पिछाने खावण है। अगो पंजाब आ वनो तो सब कुल पहले सरसों दा साग ते मक्की दी रोटी अमृतसरी कुलचा लस्सी गोभी शलगम ते गाजर दा अचार ते पिन्नी इतो दे सेहतमंद खावण है पे। अगो आंदे है हरियाणा विच इतना ताकु खावण को मिलसी राबड़ी सिंगरी दी सब्जी बाजरे दी खिचड़ी कचरी दी चटनी बूरे ते घ्यू नाल मंदी हुई रोटी कड़ी पकौड़ा। वल इंदे कोल अगे चलदे है ते पहुंचदे हैं दिल्ली। दिल्ली ता मरकज है सारे सकाफतां दा ते इत्थां ताकू सब कुछ मिलवे सी। उंदे बाद चलदे हैं उत्तर प्रदेश। आबादी दे हिसाब नाल ते रकबे दे हिसाब नाल ए सब कोल वड्डा सूबा है। इंदी आबादी तकरीबन 22 करोड़ दे आसपास है। इत्थों दे मन भावण मन भांदे खावण हिन पे खस्ता कचोरी जलेबी समोसा लस्सी आलू पूड़ी कड़ी चावल बिरयानी गुजिया कुल्फी। हुन गाल करेनी है बिहार दी। बिहार भी बड़ा बड़ा सूबा है ते इत्थों दे मन भांदे खावण हैं जिवे सत्तू चना घुंगणी मालपुआ परवल दी मिठाई लिट्टी चोखा इत्थां बहुत पसंद कीता वेंदे अते उभरदे पासे दे उत्तर प्रदेश अते झारखंड विच भी ए लोकां दी पहली पसंद है। शुक्र है सोशल मीडिया दा, हुण तां सारे खावण अपने शिंगरे होए रूप विच वड्डे शहरां दे पंज तारा होटलां विच भी मिल वेंदे न अते राह चलदे सड़क दे किनारे खड़ी रेहड़ी ते भी इन्हां दा असां स्वाद गिन सकदे हैं। गलबात करेंदे हैं अते इन्दा इतिहास भी जानण दी कोशिश करेंदे हैं। लिट्टी चोखा बिहार दा व्यंजन है। बिहारी पछाण आले ई भोजन को लोग बड़े शौक नाल खांदे न। हुण तां ए दक्षिण भारत दे डोसे ते इडली आली कार सारे भारत विच लोकें दा मन भांदा खावण बनदा वेंदे। ई खावण विच स्वाद तां हुंदा ही है नाल सेहत वास्ते भी ए बड़ा फायदेमंद हुंदे। लिट्टी चोखे दा इतिहास भी बड़ा दिलचस्प है। इंदा इतिहास मगध काल कोल शुरू थींदे। आ दिन ई भोजन दी शुरुआत मगध साम्राज्य दे वेले थई आई। बाद विच वाले दूजे हिस्से विच भी अपनी सादगी ते सेहतमंद होवण वास्ते अपनी पछाण या अपनी जगह बनेंदा रह गए। ग्रीक यात्री मेगस्थनीस 302 ईसा पूर्व विच पाटलिपुत्र आया है। उन ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਠਾਠ ਬਾਟ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਥੀ ਗਿਆ। ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 64 ਗੇਟ, 570 ਟਾਵਰ ਤੇ ਕਈ ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ ਹਨ। ਮਹਿਲੇ ਤੇ ਮੁੰਦਰੇ ਦੀ ਇੱਥਾਂ ਭਰਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ। ਇਹ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥਾਂ ਲਿੱਟੀ ਚੋਖੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ।

आई। इतने पुराने समय तो ए बिहार दा पसंदीदा भोजन है, जेड़ा अमीर ते गरीब सब दा मन भावन भोजन है। वक्त दे हिसाब नाल इंदे बनावन दे तौर तरीके विच भी बदलाव आंदे रहे। लिट्टी चोखे दा जिक्र मुगल काल दे इतिहास विच भी मिलदे। मुगल दौर विच लिट्टी चोखे दे स्वाद ते स्वरूप विच काफी तब्दीली आई। उन्हें एक मांसाहारी भी बना दिता ते शोरबे ते पाए नाल एक खिजना शुरू थी गया। वल अंग्रेजन दे दौर विच भी इंदे खिजन दे तौर तरीके बदल दे रहे। अंग्रेज जो कि अपने पसंद की करी नाल लिट्टी चोखे दा स्वाद गिंदे हन, जिवें जिवें वक्त गुजरता गया उवें लिट्टी चोखे दे विच भी नवे नवे प्रयोग थींदे रहे। लिट्टी चोखे को लड़ाई दे दौरान खावन आला भोजन भी आख्या वेंदे। पुराने समय तो सैनिक लिट्टी को खावन दे समान दे तौर ते अपने नाल घिन के जुलदे हन, क्यों जो ए लंबे टाइम तोनी खराब नहीं थींदा ते इंदी पौष्टिकता भी बनी रहंदी है और इको बड़ी आसानी नाल बनाया भी बन सकदे ते बनावन वास्ते सामान भी आसानी नाल हर जहां ते मिल वेंदे। इको बनावन वेले कई बर्तने दी लोड़ भी नहीं पौंदी, पानी भी घट लगदे, आसानी नाल पच भी वेंदे, पौष्टिक भी बड़ा होंदे, सैनिकों को लड़न वास्ते भरपूर ताकत भी मिलदी है ते जल्दी खराब भी नहीं थींदा। एक बारी बनावन दे बाद 3-4 दिन तोनी इको खादा बन सकदे। जेकर असा अपनी धरती नाल जुड़े हुए खावन पीवन आले पासे ध्यान देऊं ता असा ज्यादा सेहतमंद रह के खुशगवार जिंदगी जी सकते हैं। आजकल दे जानलेवा बीमारियों को लो बच सकते हैं। नित दिहाड़े नवी बीमारी आके दरवाजे ते दस्तक देंदी है अते दे दे असा उन्दे चंगल विच फस वेंदे हैं। साडे शरीर दी इम्यूनिटी सिस्टम भी इतनी कमजोर थी वेंदी है कि नजला जुकाम भी साडा पीछा नहीं छुड़ेंदा ते शरीर दुख झेलन वास्ते मजबूर थी वेंदे। साडे वड्डे वडेरे जेड़ा खावन पीवन दा सिस्टम साडे वास्ते बनाया है ओ मुकामी मिट्टी नाल जुड़ा आया होंदे। हुण तां असा रांदे हिंदुस्तान विच है ते खांदे है इटली दे पिज्जे ते पास्ते। शरीर को कोई पौष्टिकता नहीं मिलदी, ए शरीर वास्ते बिल्कुल पौष्टिक नहीं होंदे ते ही वास्ते कोरोना भी साडा पीछा नहीं छुड़ेंदा। छोटे छोटे बाल एजे बीमारियों दे मरीज हन जिन्हां दे बारे विच पहले असक नहीं सुनिया भी कोई नहीं। बाले दे अखी कमजोर हैं, शरीर कमजोर हैं, शुगर ते दिल दे बीमारियां ते हर कहीं को हैं पिया जिवे कि थई इन दा लंगर लगा पिया होवे। हुण तां वक्त दी लोड़ है कि असा अपने खावन पीवन आले पासे ज्यादा ध्यान देउ। बाले को केजा खावन पीवन दी आदत पावनी है ए जिम्मेवारी घर दे वड्डे ते जिम्मेदार बंदे दी हुंदी है। जेकर हर परिवार अपने बाले दी सेहत दा समझदारी नाल ध्यान रखे ता असा अपने मुल्क को सेहतमंद बना सकते हैं। सेहत बनदी है खावन पीवन नाल। खावन पीवन होना चाहिदा है धरती नाल जुड़िया होया ते मौसम दे मुताबिक। थोड़ी जेही कोशिश नाल असा एक एजे स्वस्थ समाज दी रचना कर सकते हैं ते अपने हजारा करोड़ रुपए जेड़े असा दवाई ते खर्च करे नी है ओ बचा के असा दुनिया दे अमीर तरीन मुल्के विच शामिल थी सकते हैं। हुन तोनी ता तुसा लिट्टी चोखे दे बारे सुनिया, हुन तुसा सुनना चाहसो कि लिट्टी चोखा बनदा किवे है तो चलो ताकू इंदे बनावण दा तरीका भी दसेंदे हैं। ए बड़ा सोखा तरीका है। अपनी कापी पेंसिल चा गिनो ते ध्यान नाल सुनो, नाल नाल लिखदे वंजो ताकि ताकू अगो मुश्किल ना थीवे। चोखा बनाने वास्ते गिनो एक वड्डा गोल बैंगन, एक दरेबाने साइज दा आलू, 3 टमाटर, 2 3 कटे हुए प्याज, छोटी जई अदरक दा टुकड़ा पतली पतली कटी हुई, एक हरी मिर्च कटी हुई, 2 कलिया थोम जा जको असा लसन भी आदि है, थोड़ा जिया धनिया, एक चमचा नींबू दा रस, थोड़ा जिया सरसों दा तेल या ओ तेल जेड़ा तुसा अपने घर इस्तेमाल करें देवे ते आखिर विच स्वाद दे हिसाब नाल नमक। चोखा बनाने वास्ते पहले आलू को उबाल गिनो, टमाटर ते बैंगन को ग्रिल ते सेक गिनो, जेले चंगी तरह पक वंजन ते ठंडे पानी विच पा के इन्हें दा छिलका ला गिनो। हुण सारा समान एक साफ बर्तन विच पा के इको मंद गिनो, मेरा मतलब है इको मैश कर गिनो, धाने दे सावे पत्रे नाल इको सजा गिनो, तुहाडा चोखा तैयार है। हुण लिट्टी दी वारी। पहले लिट्टी दा स्टफ बनावण किते 4 सावे हरे मिर्चा घिन गिनो, पतला पतला कट गिनो, एक प्याज दा छोटा टुकड़ा घिन के उको भी पतला पतला कट गिनो, 200 ग्राम चने दा सत्तू, अदरक ते लहसुन दी पेस्ट, आधा चम्मच अजवाइन, थोड़ा जा नींबू दा रस, सरसों दा तेल ते नमक अपने स्वाद दे हिसाब नाल। लिट्टी दे सारे स्टफ को एक वड्डे कटोरे विच या बाउल विच पा के चंगी तरह मिला गिनो, थोड़ा जिया पानी पा के एजा मिसाला तैयार करो कि इको लिट्टी विच आसानी नाल भर सको। हुण एक बर्तन विच 400 ग्राम कणक दा आटा गिनो, इको थोड़ा जा नमक अजवाइन
पा के थोड़ा जा पानी पा के सख्त गुन गिनो, दो चम्मच तेल दे भी पा दो ताकि लिट्टी खस्ता बने। तली ते रख के अंगूठे का दबाव दे के आटे की कटोरिया लिकाल शक्कर बनाओ। इन्दे विच जेड़ा तुसा मिसाला बनाए वह भर के धीरे धीरे इकू बंद कर गिनो। इकू तुसा हुण

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र ए। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। शाम दे 6:30 बज चुके ने, आओ सुनदे हां देहाती प्रोग्राम।

0: मैं क्या डॉक्टर सरूप सिंह जी तुसी खेती दा भविख दसन दे नाल नाल ये भी दसो भी चौहां पासियां तो घिरी अपनी जट कौम दा की बनू।
1: देखो जी तुहानू उदण भी दस्या सी दिशावां चार ने दस हुंदियां ने, कल साडा वर्तमान बन जांदा है ओही अगले दिन साडा भविख। देखो हालत यह है जी बई साडे बुढ़िया दा कल माड़ा सी ते साडा अज वडेरियां दे कल तो पैड़ा, ते न्याणे दे भविख दा अंदाजा हिसाब किताब तुसी आपे ला सकदे हो।
2: ते हुण सुनो इस लड़ीवार रेडियो नाटक दी छेवीं कड़ी।

0: यार उस दिन तो टेलर मास्टर तेज प्रकाश का सुपना हर वेले मरे मन ते सवार हो रहा।
1: सच कहना सरूप सिंह, ओदन का ही मैं भी सोची जाना भी बई असी वसदे केड़े देश हां।
0: इस दा तत् सार तां इहो होया कि सारी जमीन ते गुरु घरां ते वी गैरां दा कब्जा होया ही लो, पंच सरपंच भी गैर पंजाबी बनिया करनगे। क्यों भाई तुहानूं की लगदा इदां हो सकदा?
1: ओ होया ही पिया, ओ जे सारे छड बाहर भजी जावांगे आ गिनती दा मामला है, साडे नहीं बाहरले मुल्कां च MLA जां मंत्री बनदे, उत्थे तां तुसीं इह देख सुन के चौड़े हो जांदे हो। आखे कनेडे च साडे 11 MLA है ते 7 MP भी हैगे है। आ टेलर मार्टर सच्चा रोंदा, यूपी बिहार आलियां दा कब्जा तां हो ही जाऊ भाई।
0: तां फिर यारो सुन लो गल मेरी ध्यान नाल, बंदा बेवस होण दी अपना वसेबा छड़दा ते किरत दा धक्या ही अगे तो अगे तुरिया जांदा। पहली पातशाही ने सानू इहो समझाया, सैकड़े साल पहला दरिया सतलुज दे ढाए च इस पिंड दी मोड़ी गड्ढण वाले वडेरे नू किरत खातर पुराना टिकाणा छड्डना पिया सी। उहदे वडेरे होर कई सदियां पहला बठिंडे संगरूर धूरी ते मुक्तसर दे जंगली इलाके च वी किरत दे धक्के आए सी। हुण मित्रों मुकदी गल इह है बई साडे वडेरियां वांगू ही किरत दी चाक च इत्थे आए इन्हां प्रवासियां ने तां आपां नू वसदे रख लिया। अरे इनकलाब मगरों जे प्रवासी ना आउंदे तां अपनी खेती खड़ जानी सी। खन्ने लुधियाणे गोबिंदगढ़ दियां सारियां फैक्टरियां बंद हो जाणियां सीगियां। भाई हुण वी जे इह ना होण तां अपणियां तों बहुतियां दे डंगर वच्छे भुखे मर जाण, पशुआं मगर गोहे कूड़े दे ढेर लग जाण, मोटरां दी राखी इह सौंदे आ। गल की अपनी सारी खेती तां चलदी इन्हां प्रवासियां दे सहारे ही आ।
1: हां नाले होर तां होर साडे न्याणे इह खड़ाउंदे आ, उधर गोरियां दे न्याणे साडियां नूहां धीआं खड़ाउंदियां।
2: हुण तां अपने सरकारी स्कूल वी इन्हां प्रवासियां दे आसरे चलदे आ, इन्हां दे न्याणे ही पंजाबी पढ़दे आ।
3: तुहाडे स्कूले को अपना न्याणा क्यों भेजू मास्टर जी, जदों अपने कोलों तां वोट बनाउण दा कम ही नहीं मुकना, नाले तुहाडे तां अपने बच्चे अंग्रेजी स्कूलां च जांदे आ।
1: मास्टर देबो को इन प्रवासियों में से अपना स्कूल नजर आ गया। वैसे टेलर साहब को भी सपने में इस स्कूल मास्टर का डेरा दिखाई दिया होगा, क्या कहते हैं वैसे?
4: तुसी सही गैस लाया सरपंच मेजर साहब जी, टेलर मास्टर जिमीदार बनन दे सपने भी लेंदे होंगे।
1: गल बिल्कुल वाजिब करनी चाहिए। क्या नाम है आपका? अमला सिंह जी, सपना किसी को भी

0: कैसा भी आ सकता है, क्या कहते हो?
1: तुसी घबराओ ना मेजर साहब, इन्हों की नोक टोक इदा चलती रही सारा दिन।
2: कसरत पूरी नहीं, हर बार कोई ना कोई नवा तो तकड़ा झाड़ के मोड़ देते।
3: चल कोई ना, तू ऐसे गलो हूं कोई नशा ना करन लग जाई। मैं मेजर मक्खन सिंह गल करदा, शायद कोई हिला वसीला बन जाए।
2: नहीं डैडी, तुसी नशे वाले पासे तो बेफिक्र हो जाओ।
3: मिस्टर साहब, 4 महीने हो चले मुंडे नूं भर्ती लई टेस्ट दिंदे नूं, हर बार कोई ना कोई नवा नुक्स कढ के घर नूं मोड़ दिंदे।
0: कोई बात नहीं सरदार स्वरूप सिंह, मैं अगली बार लड़के के साथ ही जाऊंगा और पर्सनली चेक करूंगा कि क्या बात है, गड़बड़ कहां हो रही है। आप फिक्र ना करें, मैं ये भी देखूंगा कि भर्ती स्टाफ में मुझे कोई मेरा चेला बालक मिल जाए तो मैं जरूर बात करूंगा। मैंने कईयों को लेफ्टिनेंट की ट्रेनिंग दिला के स्टार लगवाए हुए हैं स्वरूप सिंह जी, हो जाएगा आपका काम, कोई बात नहीं। हाँ एक बात और, लड़के को मेरी तरफ से बोलना कि वो एक्सरसाइज करना जारी रखे, ठीक है?
3: ठीक है जी, इस बात का ध्यान मैं भी रखूंगा। चंगा जी, हूं इजाजत दियो।

0: शाबाश करमप्रीत सिंह, इसी तरह हर टेस्ट पास करते जाओ। अब मैं देखूंगा कि भर्ती अफसर तुम्हें कैसे भर्ती नहीं करेगा।
1: वे तुम आठों के आठों लड़के एकदम आउट आउट, आपकी मेडिकल रिपोर्ट सही नहीं है।
0: डॉक्टर, व्हाट्स रॉन्ग विद ब्लडी मेडिकल रिपोर्ट? आज मैं बात खत्म करके जाऊंगा और देखूंगा कि ये सिकटू सा डॉक्टर अपने आप को समझता क्या है। इसे मालूम नहीं है कि पेंशनर ऑफिसर की रिस्पेक्ट क्या होती
2: है। मैं मेजर साहब, अपन इन मिलिट्री अफसर है ना, खै बनना थोड़ी। हाँ चलिए छो खे, इन्हों जो बाजे बाजे बड़े कब्बे होंगे, सिरों पुठे बंदे, पुराने बुढ़े उन्होंने ओडा दे गदे क्या करते।
0: बिल्कुल जाहिल लोगों से पाला पड़ा है मेरा। नहीं नहीं, लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं, पशुओं से। इनको तो इतना भी इल्म नहीं कि सूबेदार और मेजर साहब में क्या फर्क होता है। ब्लडी इडियट।

0: क्या नाम है आपके कैंडिडेट का साहब?
1: जी करमप्रीत सिंह।
0: करमप्रीत सिंह की मेडिकल रिपोर्ट दिखानी साहब।
2: ये लीजिए सर, करमप्रीत सिंह सन ऑफ स्वरूप सिंह।
3: मैं जानना चाहता हूँ कि इस छड़ी जैसे जवान में क्या कमी है।
0: देखने में ये आपको फिट लगता है साहब, पर हमें इंडियन आर्मी में नशेड़ी नहीं चाहिए मेजर साहब, हमें नशा रहित कंचन जैसी काया की जरूरत है।

0: देख भाई करमप्रीत, तेरी मां ने मैनू तेरे सारे चाले दस दिते। वो कहंदी है भी तेनू हर तरह समझा के देख लिया, पर तू किसे कड़े बैठने नहीं तैयार।
1: नहीं डैडी जी, मैं तो मम्मी नू एहो कहा सी भई जे सुखजीवन पा दी डैथ हो गई तो उस च मेरा की कसूर है। जेड़े तुसी भाभी नाल मेरा मैड करना चाहते हो,
0: पहला तो तू उन्हू भाभी भाभी कहना बंद कर। भाभी तेरी उदों तक सी जदों तक सुखजीवन उसका घर वाला सी। सुखजीवन नहीं रहा वो तेरी भाभी नहीं, समझ आएगा। बाकी रही है नैड वाली गल, ये नैड नहीं करके जहान का दस्तूर है। घर की इज्जत बार खजल खुआर होने नालों घर च ही रख ली जाए। आप ही तो कहना भी इस प्रीत नूं गहले वालियां नाल नहीं जान देना। ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਹੋ ਰਾਹ ਬਈ ਤੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਪਾ ਲੈ।
1: ਇਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਭਾਬੀ ਯਾਨੀ ਨਰਿੰਦਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।
0: ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ, ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਬਰਖੁਰਦਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਐਡੇ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਮੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ।

0: से पक्का नशेड़ी बनने से बचाना है, क्या कहते हो? ये काम हमें घर के अंदर से शुरू करना होगा।
1: घर के अंदर से? मैं कुछ समझा नहीं मेजर साहब।
0: मैंने सुना है कि आपने अपनी बेवा हो गई बहू का रिश्ता अपने छोटे बेटे से बनाने का फैसला किया।
1: जी जी।
0: अब आप अपनी पत्नी के जरिए अपनी बहू को इस बात के लिए मनाइए कि वो कर्मप्रीत को अपने चारम से रिझाए। आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कह रहा हूँ स्वरूप सिंह, क्या कहते हो?
1: जी मेजर साहब, मैं समझ रहा हूँ।
0: हाँ, इस चाम में बहुत ताकत होती है। इसके जरिए मर्द से नशा छुड़ाना तो क्या कुछ भी कराया जा सकता है, कुछ भी, क्या कहते हो?
1: कहना तो बस अपनी पत्नी को जी, वही कहेगी आके।
2: सुखजीवन की विधवा नरेंद्र कौर करमप्रीत यानी करमे दे सिर धर दिती गई। उसने भी करमे नू अपना पति मान लिया। वो सुखजीवन दे पुत्तर ईशप्रीत नू भी करमे नू चाचा कहण दी थां डैडी कहण लई प्रेरण लग पई। कुछ महीने करमे ने शामां नू एक दो पैग शराब पी के रातां लंघाउण दे हीले कीते। नरेंद्र कौर ने भी मनजीत कौर राही उस कोल पुजियां मेजर मक्खण सिंह दियां हदायतां उत्ते अमल करदियां करमे नू पत्नी सुख दे के मारू नशियां तों वरजना शुरू कर दिता। उदां नरेंद्र कौर दे इह हीले बहुता चिर कामयाब नहीं होए।
3: बिलू, हैगा पूरा माल तां कढ यार।
4: ओए माल दा की घाटा है, पर पहलां रेगुलर कस्टमरां नू मिलदा।
3: अच्छा जी, रेगुलर कस्टमरां नू दो दिन आया नहीं गया तां तूं रेगुलर ना होण दा मेणा मार दित्ता हुण मैनू।
4: राम नाल बह जा, कर दिया तेरा हल भी, पर रता को वेले होके।
3: उधर घरदिया ने नशा छड़न लई नसी धूण दिता होया, इधर डीलर दे मते ने उदां दी उदां ही झड़ी वाला होण जोगे छड़ना नहीं। मैं तां पहलां ही छड़न नू फिरदा, हुण तां पूरा दे छड़।
4: ओ ना आंदा चिड़ी वल नू, चिड़ी तेरे बिना उदास हो गई सी, असी तेनू आउन खातर टाइम दिता होया सी।
5: ओ बिले यार, एवें क्यों गल वधाई जानी, कोई ओनू पुड़ी फड़ा ते विचों चलदा कर।
4: ओ आ चक पुड़ी ते पैसे सुट। अगे तो आउन वेले बहुत तहू जा ना हुई, तेनू मैं दस दया।
3: हा चक पैसे, कोई ना तू तीरा हो माड़ा जा, तेरी हीर भी सुन दे अगे दिन।
6: बथेरा इंतजाम है, कल नू उथे ही रह लू मैं, तू मेरा राह रोक रोक के खड़ी ना हो, मैं दसी जावा।
7: रह ली सो जाई उथे, मैं जी कराउणा तेथो रही उथे, मैं तेनू उड़ीक ने बत्तियां बाल के पनेरे नी भरने, हुण मन खाणा के उथे कराया खिसवा।
6: कुछ नहीं चाहिदा मैनू, बस पूरा खला लै दे जा।
0: सरदार स्वरूप सिंह, आप और हम मर्द हैं, हमें अपने बच्चों को माँ वाली नजर से नहीं बाप वाली यानी मर्द वाली नजर से देखना शुरू करना होगा, क्या कहते हो?
1: मैं आपकी ये बात समझा नहीं मेजर साहब।
0: इसमें समझ ना सकने वाली ज्यादा बात नहीं है सरदार स्वरूप सिंह। माँ को अपना बच्चा हमेशा बेकसूर और पाक साफ दिखाई देता है, जबकि उसके ऐब और नुक्स बाप को दिखाई देते हैं। माँ को जो प्योर सोना नजर आता है ना, उसमें मिलावट होती है, शुद्ध सोना बाप ही देख सकता है। आई बात समझ में, क्या कहते हो?
1: जी मेजर साहब, हुण तो चानन चानन हो गया।
0: अगले दिनों शाम के वक्त इस चिड़ी पर नजर रखनी है हमें। मैं हर शाम बच्चों को एक्सरसाइज और गेम्स करते सुपरवाइज करता हूँ। इसके साथ ही मैं दरख्तों के इस छोटे से जंगल यानी चिड़ी में आने जाने वालों पर भी नजर रखता हूँ। मैंने कर्मे को भी इस चिड़ी में जाते और फिर बाहर निकलते भी देखा है। अंदर ड्रग वगैरह सप्लाई की जाती है स्वरूप सिंह, मुझे ये शक है, क्या कहते हो?
1: मैं आज से ही यहाँ पहरा देना शुरू करता हूँ मेजर साहब, कोई गलत नहीं।
0: इसका मतलब मेरा शक सही साबित हुआ स्वरूप सिंह, इन दरख्तों के इस झुरमट में ड्रग्स का बिजनेस किया जाता है।

0: और कर्मा भी इन लोगों के चंगुल में फंसा हुआ है और यहाँ से ड्रग की सप्लाई लेता है।
1: मेजर साहब, मैंने तो कर्मे को नशे से बचाने के लिए अपने परिवार की रिहाइश खुद पे कर देती थी, पर उस नशेड़ी ने इस बात का भी फायदा उठाना शुरू कर दिया। अब क्या किया जाए मेजर साहब?
0: हमें कर्मे को डॉक्टर से बात करके रिहैब सेंटर में एडमिट करा देना चाहिए। दूसरी तरफ पुलिस को ड्रग्स के इस अड्डे की सूचना देनी चाहिए। आप कर्मे को रिहैब में एंटर कराएं। दूसरे फ्रंट पर मैं अपनी सरपंच वाली ड्यूटी निभाता हूं।
2: सुरूप सिंह वालों अपने परिवार की रिहायश खुद करने नाल कुछ चिर तां सुख सांभ रही। आखिर नशेड़िया ने खेतों विची डंडी पा के अपने शिकार कर्मे तक रसाई कर ही ली। कर्मा भी उन्हां दे गुज्जे इशारे ते खास आवाजा सुनदा जंगल पानी जाण दे बहाने फसलां विची अगे तो अगे निकल जांदा। वह पता नहीं किन्ना किन्ना चिर खेतों विच ही लुकिया रहिंदा। कई बारी वह कई कई दिन खूह वाले घर ना मुड़दा। कर्मे ते सुरूप सिंह दे परिवार नाल की बनदा है, ये आपां नाटक की 7वीं कड़ी विच सुणांगे।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਵਲ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਲੜੀਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਹੋਇਆ ਦੇਸ ਪਰਾਇਆ ਦੀ 6ਵੀਂ ਕੜੀ। ਰੇਡੀਓ ਨਾਟਕ ਰੂਪਾ
1: ਨਮਸਕਾਰ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਅਤਹਰ ਸਈਦ। सरकार ने कहा है कि देश के पास 60 दिन का कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस तथा 45 दिन का एलपीजी भंडार है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन 2026 के लिए देश में उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से की गई 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल देशवासियों से 1 वर्ष तक विदेश यात्रा से बचने और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की थी। श्री मोदी ने लोगों से खाना पकाने के तेल की खपत कम करने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने तथा सोने की अनावश्यक खरीदारी से बचने का भी आग्रह किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र

0: अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रूपये का विशेष सिक्का भी जारी किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने बड़ौदरा में सरदार धाम परिसर का उद्घाटन किया। उन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने परिसर में भोजन और स्वागत क्षेत्र तथा ई पुस्तकालय का अवलोकन किया। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देशभर में लागू हो जाएगा। अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। निर्धारित समय में काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि बाघ शेर चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1313 अंकों की भारी गिरावट के साथ 76015 पर बंद हुआ। निफ्टी 360 अंक कम होकर 23816 पर आ गया। एएफसी अंडर 17 एशिया कप फुटबॉल का क्वार्टर फाइनल भारत और मेजबान चीन के बीच सोझो में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक चीन ने 3-0 की बढ़त बना ली थी। इधर आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को, सभी किसान भाइयों बहनों को हमारा राम राम।
1: यमुना बहन, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो अपने प्रसारण के 90 गौरवशाली वर्ष मना रहा है, जो राष्ट्र को जोड़ने, संस्कृति को बढ़ावा देने और समाचार पहुंचाने के 9 दशकों को चिन्हित करता है। और ये 90 वर्ष आकाशवाणी उत्सव की बहुत ही खास महत्वपूर्ण चीजें हैं।
0: बिल्कुल। और जो 90 वर्ष की बात करें तो जो दिन था 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो किया गया था। इस उपलक्ष में देश भर में वाकथन, मैराथन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जैसा कि अभी दिल्ली में भी इसका आयोजन किया गया और सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया इसमें।
1: और विषय वस्तु समारोह की बात करें तो आवाज, संस्कृति और जुड़ाव के 90 वर्ष विषय पर प्रकाश डाला गया था।
0: बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आकाशवाणी की जो ये आवाज है कहाँ कहाँ तक पहुंचती है, जहां न पहुंचे वाणी वहां पहुंचे आकाशवाणी। तो आज हमारी वाणी आकाशवाणी के जरिए कहाँ कहाँ पहुंचती है और कितने लोग जुड़े हैं, अगर देखा जाए तो ये जो रेडियो है ये बहुत ही लाभदायक है। कारण ये है कि खेती का काम अगर किसान कर रहा है अपने खेत पर, तो वहां पर रेडियो लगा के वो सुनता रहता है और उससे काम भी होता है। और काम कोई ये नहीं कि हम उसी को बैठ के अगर हम देखें कोई चीज तो उससे हानि होती है, लेकिन वो काम करते करते कान में आवाज गूंज रही थी। आकाशवाणी का सबसे बड़ा लाभ है हमारी रेडियो का।
1: जी हाँ। और अगर डिजिटल परिवर्तन की बात करें तो अपने एनालॉग अतीत का सम्मान करते हुए 90वीं वर्षगांठ का यह समारोह न्यूज ऑन एयर ऐप, पॉडकास्ट और यूट्यूब के माध्यम से आकाशवाणी के डिजिटल युग में प्रवेश को भी उजागर करता है।
0: बिल्कुल, आकाशवाणी अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पर 90 वर्षों का हम सफर श्रृंखला मना रहा है, तो हम भी थोड़ा सा ही कहेंगे कि हमारा देश कितना तरक्की कर गया है। सभी लोग तरक्की कर रहे हैं, तरक्की की बात मस्तराम यादव भी कर रहे हैं अपने इस रागर के जरिए।

0: अभी आप मस्तराम यादव से सुन रहे थे ये उपदेश
1: और बातचीत के सिलसिले में हम चलते हैं और आज हम जानकारी दिलवाते हैं बागबानी फसलों मतलब आम और लीची में सिंचाई और सुरक्षा। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर मधुबाला ठाकरे जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं फल विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से, और इनसे बातचीत कर रहे हैं शिव नंदन लाल।
2: किसान भाइयों नमस्कार। देश की अर्थव्यवस्था में जिस तरीके से किसानों का योगदान है उसी तरीके से हमारी जो फसलें हैं उनका भी उतना ही योगदान है, चाहे हमारी अनाज वाली हो या बागवानी। और जब बागवानी फसलों की हम बात करते हैं तो बागवानी में जो हमारे किसान भाई खेती करते हैं तो निश्चित तौर पे जो आम फसलें हैं उनसे ज्यादा आमदनी लेते हैं। और जहाँ तक बात है कि बागवानी फसलों में आम और लीची की, आम एक ऐसी फसल है जिसके बारे में सभी जानते हैं और एक बार ऐसी आती है कि हर व्यक्ति उसका प्रयोग करता है, और लीची का भी समय चल रहा है और लीची भी एक महत्वपूर्ण फसल है कुछ क्षेत्रों के लिए और वहाँ के जो बागवान भाई हैं उनके लिए एक आय का अच्छा साधन है। तो आम और लीची फसलों में किस तरीके से सिंचाई प्रबंधन किया जाए, किस तरीके से उसकी तुड़ाई की जाए और उसमें क्या देखभाल की आवश्यकता है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर मधुबाला ठाकरे जी को जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं फल विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: नमस्कार।
2: तो डॉक्टर साहब इस समय जो हमारे बागवान भाई हैं और जिनके आम के बाग हैं और पहले से अच्छे तैयार हैं, इस समय उसमें तो फलत आई हुई है, तो उसमें उनको क्या कुछ खास करने की आवश्यकता है?
3: किसान भाइयों को सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि उसमें बैगिंग की है या नहीं की है, क्योंकि बैगिंग एक बहुत ही सामान्य सा उपाय है जिससे कि किसान भाई अपने आम के फलों को कीटों से बचा सकते हैं। और इसके साथ साथ बैगिंग करने का एक बहुत बड़ा फायदा यह होता है कि जो फलों की सतह होती है वह चमक युक्त रहती है और उसमें किसी तरह के दाग धब्बे नहीं आते। परिणाम स्वरूप किसानों को उसका बहुत अच्छा मूल्य मिलता है जब वो मार्केट में बेचने के लिए लेकर जाते हैं। तो इस वजह से बैगिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है, तो किसान भाई बैगिंग अवश्य करें।
2: बैगिंग करने का तरीका क्या है कि उसको किस समय किया जाता है और कैसे करें?
3: जी देखिए, बैगिंग का जो एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है वो जो फल मक्खी होती है उससे फलों का बचाव करना होता है। तो आपके क्षेत्र की जो वर्षा का पैटर्न है उसको ध्यान में रखते हुए बैगिंग का समय थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो फल मक्खी आकर आपके फलों में बैठकर अंडे दे उससे पहले ही आपको बैगिंग का कार्य कर लेना है। अब ऐसी आम की किस्में जिसमें कि जो लाल रंग युक्त नहीं होती, सामान्यतः जो पीले रंग का आम होता है उसमें आप बैगिंग कर सकते हैं। अलग अलग तरह के बैग मार्केट में अवेलेबल होते हैं तो उसका उपयोग कर सकते हैं। और जो ऐसी किस्में हैं जिसमें रंग आता है उसमें बैगिंग का जो प्रकार है उसका चुनाव सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि यदि आपने उसको ऐसे किसी अपारदर्शी पदार्थ के बैग से कवर कर दिया तो उसमें वो रंग नहीं आ पाएगा, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और दूसरी चीज की जो आपकी आमदनी और मुनाफा का जो आपका गुणा भाग जोड़ घटाना है उसको भी जरूर कर लें। ऐसा ना हो कि बैगिंग की लागत इतनी ज्यादा आ जाए कि जितना मुनाफा किसान भाइयों को हो रहा है उतना ना हो और वो अतिरिक्त बोझ बने, तो इसका जो गणना है इसे भी किसान भाइयों को पहले कर लेना चाहिए।
2: तो ये तो बैगिंग की बात रही जी। और बैगिंग का समय क्या होता है, कब से कब तक?
3: बैगिंग का समय ये होता है कि जब आपके फल बन चुके हैं।
2: साइज कितना है?
3: साइज लगभग जैसे आप अभी का समझ लीजिए, उत्तर भारत की यदि हम बात करें तो अभी का समय बिल्कुल सही है बैगिंग करने के लिए, या थोड़ा पहले भी की जा सकती है।
2: और जैसे आम के बाग हैं कभी कभी उनमें इस समय आप देखते हो कभी बारिश हो जाती है, कभी तूफान भी आ जाते हैं, तेज हवाएं चल जाते हैं, तो उससे आम जैसी फसल को बहुत नुकसान होता है।
3: बिल्कुल,
2: उनकी

0: गलत काफी गिर जाते हैं, तो उसको बचाने का कोई उपाय?
1: देखिए, अभी का जो समय चल रहा है वो जलवायु परिवर्तन का समय चल रहा है। इस समय बहुत तेज हवाएं चलती है और बहुत सारा आम जो फलों पर लदा होता है वो जमीन पर गिर जाता है और वो वेस्ट हो जाता है। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि जो आम के बगीचे हैं उसके आसपास हम विंड ब्रेक्स लगाएं। उसमें ऐसे वृक्षों को या ऐसी झाड़ियों को लगाया जाता है जिससे कि हवा की गति को कम किया जा सके। तो होता यह है कि जब आम का बगीचा लगा रहे होते उसी समय आपको साथ ही साथ में अपने जो बगीचे की बाउंड्री है उसके किनारे किनारे ये विंड ब्रेक लगा देना चाहिए, जिससे कि जो हवा की गति है वह कम हो जाती है और जिसके परिणाम स्वरूप नुकसान कम होता है।
0: लेकिन किसी कारण से उस समय उन्होंने नहीं लगाया है
1: जी,
0: और इस समय उनकी फलत बाग में तैयार है
1: जी,
0: तो इस समय क्या वो
1: इस समय ये कर सकते हैं कि सबसे पहले तो सिंचाई का बहुत ध्यान रखें
0: जी।
1: ऐसा ना करें कि मिट्टी बहुत ज्यादा सूख गई है और उसके बाद आप अचानक में सिंचाई कर रहे हैं, क्योंकि होता क्या है, यह एक तरह का जिसे कहते हैं स्ट्रेस को क्रिएट करती है। यदि आप पानी रोक दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं और फिर अचानक दे रहे हैं, तो वो एक तरह का स्ट्रेस क्रिएट करती है प्लांट को। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो फल होते हैं, फलों का जो डंठल से जुड़ाव होता है वहां से वो कमजोर होते हैं और जैसे ही हवा आंधी आती है तो वो बहुत जल्दी गिरते हैं। तो इसीलिए ये बहुत आवश्यक है कि मृदा में एक उपयुक्त नमी की अवस्था को बनाए रखा जाए, ना तो बहुत अधिक सिंचाई की जाए और ना ही बहुत कम।
0: तो जैसे आम एक फसल तो है नहीं
1: जी,
0: लेकिन आम बड़े बड़े पौधे होते हैं
1: जी,
0: तो सिंचाई का क्या तरीका अपनाया जाए, कितने दिनों बाद की जाए?
1: देखिए, सिंचाई जो पुराने बगीचे होते हैं वहाँ तो किसान भाई चैनल जो होते हैं उसकी सहायता से ही सिंचाई करते हैं, और जो नए बगीचे लगा रखे हैं उसमें वो ड्रिप की सहायता से करते हैं जो टपक विधि होती है। तो अंतराल जो निर्भर करता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि तापमान क्या चल रहा है। अभी आप देख रहे होंगे पिछले कुछ समय से तापमान में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहे हैं, कभी ज्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है। तो तापमान को ध्यान में रखिए और जो मौसम की भविष्यवाणी की जाती है मौसम विभाग द्वारा उसको ध्यान में रखकर ही इरिगेशन का सिंचाई का आप समय निर्धारित करें। यदि आपको पता है कि आगे आने वाला एक हफ्ते में ज्यादा तापमान होने वाला है, लू चलने वाली है, तो आप सिंचाई के जो अंतराल है उसको कम करेंगे और मृदा की नमी को व्यवस्थित बना के रखेंगे।
0: हमने देखा है कि कुछ किसान भाइयों के जो पानी के फवारे होते हैं उससे भी पौधों के ऊपर से सिंचाई करते हैं।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने, इसको स्प्रिंकलर विधि के द्वारा सिंचाई करना बोलते हैं। तो होता क्या है, ये लीची में भी बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो लीची के केस में क्या होता है कि जैसे अभी लीची तुड़ाई के पास आ चुकी है, तो लीची में एक समस्या होती है फलों के फटने की, जिसको फ्रूट क्रैकिंग कहते हैं, और वह इतनी महत्वपूर्ण समस्या है क्योंकि यदि फ्रूट क्रैकिंग हो गई है तो उसके बाद लीची के फलों का कोई भी उपयोग नहीं रह जाता, पूरा वेस्ट हो जाता है।
0: कारण क्या है उसका?
1: उसका कारण यह होता है कि लीची का जो छिलका होता है, जब बहुत ज्यादा मृदा में नमी की कमी होती है तो उसकी वजह से जो छिलका होता है उसकी इलास्टिसिटी, जो खिंचावपन तनावपन होता है वो कम हो जाता है। अब होता यह है कि मृदा में नमी कम है और अचानक आप सिंचाई कर रहे हैं या अचानक से बारिश हो जा रही है जिसकी वजह से जड़ों को पानी की उपलब्धता अधिक हो रही है, तो पानी अचानक से पौधा लेता है, फलों में पानी अधिक आता है और वह ज्यादा फैलता है, और जैसे ही फल फैलने की कोशिश करता है, चूंकि छिलका जो है उसमें उतनी इलास्टिसिटी नहीं है तो वो उस परिमाण से बढ़ नहीं पाता है, और इस डिफरेंस की वजह से फल का जो छिलका होता है वो फट जाता है और फलों में क्रैकिंग होती है। तो इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि लीची में भी स्पेशली ये जो 15-20 दिन होते हैं इसमें नमी की मात्रा को बहुत ही अच्छे से नियंत्रित किया जाए, और जो स्प्रिंकलर की आप बात कर रहे थे यह एक बहुत ही प्रभावी तरीका है जिससे आप लीची में क्रैकिंग को प्रबंधित कर सकते हैं।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत से किसान भाई, क्योंकि आम को एकदम पूरा तो पकाया नहीं जाता तोड़ने से पहले
1: जी,
0: और एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाते हैं क्योंकि उसको बाजार में भी भेजना होता है
1: जी,
0: तो उसमें कितना गैप होना चाहिए तुड़ाई में, और तुड़ाई करते समय क्या सावधानी रखें?
1: देखिए, आम एक जिसे हम वैज्ञानिक भाषा में हम बोलते हैं क्लाइमेक्टिक फल है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो मैच्योर हो जाता है और उस मैच्योरिटी के बाद हम उसको आसानी से तोड़ सकते हैं और तोड़कर पका सकते हैं, सामान्य भाषा में यदि हम बात करें। लेकिन लीची इसके विपरीत नॉन क्लाइमेक्टिक फल है, तो इसका मतलब ये है कि एक बार आपने उसको तोड़ लिया पेड़ से तो उसके बाद उसके रंग में स्वाद में कोई वृद्धि नहीं होगी, तो इसलिए

0: लीची को जब हम तोड़ते हैं, जब वो पूरी तरह से रंग आ जाता है, उसमें जो TSS एसिडिटी आ जाती है, तभी हम तोड़ते हैं। आम की जो हम बात कर रहे थे कि जो मैच्योरिटी इंडाइसेस होती हैं कि ये पक गया, पहले के जमाने में बोलते हैं कि फल गिरने लगा है अपने आप, तो फल तोड़ सकते हैं, तैयार हो गया है। कुछ वैज्ञानिक विधियां भी हैं, किसान भाइयों को ये अंदाजा हो जाता है कि फल मैच्योर हो गया है। और अलग अलग किस्मों का जो मैच्योरिटी टाइम होता है वो भी अलग अलग होता है। तो जब आपका फल मैच्योर हो गया है पेड़ पर, उसके बाद आप तोड़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप उसकी बैगिंग किस तरह से कर रहे हैं, कैसे उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितने दूर के मार्केट को आप टारगेट कर रहे हैं बेचने के लिए। यदि आप पास के मार्केट में कर रहे हैं तो आप जब हल्का रंग उसमें आ गया है तभी भी आप कर सकते हैं, तो ये निर्भर करता है।
1: अच्छा, हम लीची की बात करते हैं। जैसे लीची मैंने देखा है कि जब लीची को ऊपर से निकाल के छिलके को अंदर से खाते हैं, उसके अंदर जो बीज होता है
0: जी,
1: हमने ज्यादातर देखा है कि बीज में कीड़ा जरूर होता है, तो वो क्या कारण है कि क्या कीड़े से बचत नहीं की जाती है?
0: जी, वो कीड़ा जो होता है वो फ्रूट बोरर होता है। वो फ्रूट बोरर जो है वो अंदर उसके जो इल्लियां होती है वो आपको दिखाई देती है, लेकिन इसका जो प्रबंधन होता है ये काफी पहले ही कर लेना होता है। तो अभी आप सोचेंगे कि अभी कीड़े दिखाई दे रहे हैं तो अभी कुछ छिड़क के हम उसका बचाव कर लें, तो वह संभव नहीं है। तो इसलिए जैसे मैंने फ्रूट फ्लाई की बात की, यदि अभी 2-3 बारिश हो गई, फल मक्खी ने फल में आम के अंडा दे दिया, तो उसके बाद आप कुछ भी डालें, बैगिंग करें, कुछ भी छिड़काव करें, आप फिर फलों को नहीं बचा पाएंगे। तो इसलिए सही अवस्था में, जबकि बारिश नहीं हुई है, फल मक्खी का प्रजनन नहीं हुआ है, तभी आपको उसकी बैगिंग कर लेनी है। और फल मक्खी एक ऐसा कीट है जो अमरूद में भी एक बहुत महत्वपूर्ण कीट है और बहुत नुकसान पहुंचाता है, तो सही समय पर उसका नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। और लीची की जैसे आप बात कर रहे थे, लीची एक ऐसा फल है जिसमें साल में 4 से 6 बार नए नए कोपलों का जो आना होता है, पत्तियों का वो होता है, तो उस वजह से क्या होता है, जैसी नई पत्तियां आती है बहुत सारे कीटों का उस पर अटैक होता है। तो लीची में समय समय पर कई बार बहुत सारे नए नए कीटों का प्रकोप देखा गया है। तो इसलिए जो भी लीची के किसान भाई हैं, उनको हमेशा यह ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि जब लीची लगे तभी आप बगीचे में जाकर देखें, आप पहले से ध्यान में रखें जिससे कि किसी भी नए कीट का प्रकोप ना हो। क्योंकि लीची का जो आप देखेंगे कल्टीवेशन या बागवानी है, वो क्षेत्र विशेष पे सीमित है, तो यदि कोई भी नया कीट आता है तो वो बहुत तेजी से पूरे क्षेत्र में फैलेगा और वो लीची की पैदावार को बहुत अफेक्ट करेगा। इसलिए इस पर नजर रखना बहुत जरूरी है जिससे समय पर उसका प्रबंधन किया जा सके।
1: अच्छा, लीची की तुड़ाई करते हैं तो उसमें क्या सावधानी रखते हैं?
0: लीची की तुड़ाई जो करते हैं, आप देखेंगे कि उसके डंठलों और पत्तियों के साथ में तोड़ते हैं, ठीक है?
1: उसका क्या कारण है?
0: उसका कारण ये होता है कि एक तो ये होता है कि यदि आपको एक एक फल को तोड़ेंगे तो वो जो ओपनिंग होगी, जो खुला हिस्सा होगा, उसमें कोई भी बीमारी कीट लगेंगे और जो फलों की शेल्फ लाइफ होगी वो कम होगी। तो डंठल के साथ तोड़ना, पैक हमेशा यही किया जाता है। दूसरा रीजन ये है कि जब आप डंठल के साथ तोड़ते हैं तो आपके जो लीची के पेड़ होते हैं उसकी प्रूनिंग भी साथ में हो जाती है। लीची जो है वो एक ऐसा फल है जिसमें कि जो उसका मंजर होता है जिसे बोलते हैं, वह आता है पुरानी टहनियों पे, और यदि उसमें प्रूनिंग का काम आपने लेट किया तो जब फरवरी मार्च में पुरानी शाखाएं होती हैं वो उतनी परिपक्व नहीं हो पाती कि उसमें नए कल्ले निकले और कल्लों के साथ में उसमें मंजर निकले। तो इसलिए लीची में समय पर तुड़ाई करना और ये जो प्रूनिंग का काम है ये होना बहुत आवश्यक है। और यही एक कारण है कि जो लीची की ऐसी किस्में जो थोड़ी लेट होती हैं उसमें अल्टरनेट बियरिंग, मतलब एक साल वो अच्छी आती है, एक साल वो कम आती है, यही एक उसका रीजन।
1: ये प्रक्रिया आम में भी होती है?
0: ये प्रक्रिया आम में भी होती है, बट अभी हमारी जितने भी किस्में संस्थान के द्वारा ये रेगुलर बियरिंग है, हर साल इसमें अच्छी फलत आती है।
1: तो जो हमारे आम के बागवान भाई हैं, लीची के, अपनी फसल को सही तरीके से तुड़ाई करके बाजार तक पहुंचाएं, उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे?
0: सबसे पहले तो यह संदेश देना चाहेंगे कि किसी भी तरह का कोई भी शॉर्टकट ना अपनाएं मुनाफे के लिए या किसी भी वजह से। दूसरा ये कि जो आपके बगीचे की हीट है, ठीक है, गर्मी जो है, उससे आप लीची और आम दोनों को बचा कर रखें। आप तोड़ते समय बचा कर रखें, आप वहां से पैक हाउस तक ले जा रहे हैं वहां बचा के रखें, तो जो हैंडलिंग है वो अच्छे तरीके से करें।
1: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल, आपने काफी अच्छे तरीके से लीची और आम के जो बाग हैं उसमें किस तरीके से सिंचाई प्रबंधन और तुड़ाई के बारे में बताया। निश्चित तौर पर हमारे किसान भाई आपसे द्वारा दी गई जानकारी का फायदा

0: उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बागवानी फसलों में सिंचाई और सुरक्षा, आम लीची के ऊपर जानकारी दे रही थी डॉक्टर मधुबाला ठाकरे, वैज्ञानिक फल विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा नई दिल्ली, और इनसे बातचीत कर रहे थे शिवनंदन लाल।
2: देखो सरिता, लीची हम सभी खाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है लीची डंडी समेत क्यों आती है, आज इस बात की विशेष जानकारी मिली और सुन के बड़ा अच्छा लगा कि सेफ्टी की दृष्टि से देखा जाए तो अगर वो खुल जाता है तो उसमें कीड़े मकोड़े कुछ भी जा सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, तो वो डंडी समेत आता है, तो फल भी ताजा बना रहता है और हमारी बीमारियों से भी हमें सुरक्षित करता है। तो फलों की जानकारी बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने दी। और आगामी कार्यक्रम के बारे में हम बात कर लेते हैं, तो आगामी कार्यक्रम की जानकारी के तहत आपको हम सुनाएंगे कल बातचीत, इसमें सुन सकेंगे आप प्राकृतिक खेती और किसान की आय, और कृषि प्रत्युत्तर कार्यक्रम के अंतर्गत लोक संगीत के साथ आप सुन सकेंगे।
1: और हम जाते जाते यही कहेंगे कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है, आप प्लीज जरूर हमें मेल करके बताएं, और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com,
2: और पत्राचार का पता भी नोट कर लें, कृषि एवं गृह एकांश, कमरा नंबर 610, नौ प्रसारण भवन, आकाशवाणी नई दिल्ली, पिन कोड है 110001। कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है,
1: बिल्कुल आज के कार्यक्रम के जो प्रस्तुत करता है वो है तुषार पराशर, कार्यक्रम के संयोजक थे शिवनंदन लाल।
2: और आगामी कार्यक्रम में कल आप सुन सकेंगे 5:10 पर लोकरंजनी, और 6:30 से 7 बजे के बीच ग्राम संसार, और 7:05 से लेकर के 7:30 तक कृषि जगत। तो इसी के साथ दीजिए हम सरिता और यमुना को
1: इजाजत,
2: तो मिलेंगे
1: सभी भाई बहनों को, सुनने वाले सभी भाई बहनों को हमारा राम राम, राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं गजलों का कार्यक्रम।

0: अभी आप सुन रहे थे जगदीश सिंह की आवाज में गजल। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: ओके सैलरी, नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: आरबीआई कहता है
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं। ओ, जैसे UPI से।
6: अच्छा,
5: हाँ। और सुनो, एक और नियम है।
6: वो क्या है मम्मी जी?
5: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
6: आम भी ना मम्मी जी।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
7: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं अतहर सईद। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 2026 में भाग लिया। कहा, सोमनाथ मंदिर भारत की सनातन आस्था और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है। दिल्ली सरकार ने बीमार और असहाय लोगों के लिए एक विशेष सेवा और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली सरकार तकनीक आधारित प्रशासन को बढ़ावा दे रही है। दिल्ली सरकार ने धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सभी निर्माणाधीन क्षेत्र पर 100 GSM मोटाई वाले ग्रीन नेट को अनिवार्य किया और IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज चांदनी चौक स्थित गौरी शंकर मंदिर में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 2026 में भाग लिया। ये आयोजन सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान गुजरात के सोमनाथ से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन का सीधा प्रसारण भी देखा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं बल्कि भारत की सनातन आस्था, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सदियों के आक्रमणों के बाद भी सोमनाथ मंदिर की आस्था कभी नहीं झुकी और हर बार देश की आध्यात्मिक शक्ति

0: ने स्वयं को पुनर्स्थापित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के विकास भी विरासत भी के दृष्टिकोण का उल्लेख किया।
1: मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई देती हूँ, जिनके मूल मंत्र विकास भी और विरासत भी, जिसके विजन के साथ देश आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे हमारी सांस्कृतिक धरोहर को, हमारे अध्यात्म को, सनातन को बचाने का काम, उसे सजाने और संवारने का काम भी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, और बहुत ही आधुनिक तकनीक के साथ देश को आगे बढ़ाने का काम, उसके विकास का भी काम कर रहे हैं।
0: इस अवसर पर दिल्ली सरकार में संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि सनातन परंपरा ने हजारों वर्षों के संघर्ष और आक्रमणों के बावजूद अपनी पहचान और आस्था को जीवित रखा है।
2: ऐतिहासिक दिन है और आज का दिन प्रतीक है कि कितने भी आक्रांता आक्रमणकारी आ जाएं, अपनी शक्ति के बल पर मंदिरों और आस्था केंद्रों को नष्ट करने का सपना भी पाल लें, लेकिन समय के साथ सनातन अपने पूरे वैभव के साथ खड़ा रहेगा और जो भी आक्रांता आक्रमणकारी बुरी नीयत के साथ आएंगे उनकी पराजय ही होगी।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय में इस अवसर पर श्री सोमनाथ की भव्य यात्रा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मंदिर की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विरासत को प्रदर्शित किया गया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सोमनाथ मंदिर भारत की आस्था, आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है। दिल्ली सरकार ने आज बीमार और असहाय लोगों के लिए एक विशेष सेवा और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विशेष एम्बुलेंस और बचाव वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि विशेष एम्बुलेंस पूरे शहर में सड़कों, फुटपाथों और सार्वजनिक स्थलों पर रहने वाले बीमार और असहाय लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने का कार्य करेगी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ऐसे लोगों को अपना घर आश्रम में लाकर उनका उपचार, देखभाल, भोजन, चिकित्सा और पुनर्वास सुनिश्चित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: ये 5 दिवसीय अभियान आज से 15 तक राजधानी के सभी 13 जिलों में चलाया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत राजधानी के सड़कों, रेलवे स्टेशन, धार्मिक स्थलों पर रह रहे असहाय, बीमार, बेसहारा महिलाएं और पुरुषों का बचाव किया जा रहा है। अभियान के लिए 19 एम्बुलेंस, 10 सहयोगी वाहन, लगभग 100 सदस्यीय स्टाफ और 50 स्वयं सेवक तैनात किए गए हैं। इस अभियान में विशेष रूप से टीबी, कैंसर और एड्स जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। बचाव किए गए लोगों के लिए आश्रम में 500 बेड की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि अभियान के पहले चरण में अब तक लगभग 20 लोगों का सफलतापूर्वक बचाव किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि अभियान को प्रभावी और सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए समाज कल्याण विभाग के समन्वय से 24 घंटे कार्य करने वाला विशेष वन विंडो सिस्टम भी विकसित किया गया है। ईशानी के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अपना आश्रम मानवता की दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है।
1: अपना आश्रम हमारी दिल्ली सरकार द्वारा पोषित एक बहुत ही शानदार काम कर रही संस्था है, जो कि सही मायने में मानवता का ध्यान रखते हुए, मानवता के जितने भी हमारे मूल्य हैं उनका ध्यान रखते हुए काम करती है। और हजारों बुजुर्ग, हजारों महिलाएं अपना आश्रम के माध्यम से अपना जीवन दान पा रही हैं।
0: दिल्ली नगर निगम के महापौर प्रवेश वाही ने आज सिविल लाइन्स जोन के अंतर्गत बादली क्षेत्र में सफाई व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं का निरीक्षण किया। महापौर ने क्षेत्र के निवासियों, दुकानदारों और व्यापारियों से भी संवाद किया और उनसे अपनी दुकानों के बाहर कूड़ेदान रखने की अपील की।
4: आप सबका भी हमें सहयोग चाहिए, हमें किसी पे दबाव या किसी को हर्ट करने का हमारा मंशा नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि दिल्ली खूबसूरत बने, हमारे क्षेत्र खूबसूरत बने, हमारे दुकानदार भाई भी हमारा सहयोग करें, हमारे लोग भी हमारा सहयोग करें, पूरा सेग्रीगेट करें, इससे जो है दिल्ली में कूड़े की समस्या निस्तारण जल्दी से हो सके।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों और वैज्ञानिकों के योगदान को नमन करते हुए कहा कि देश ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी

0: और बौद्धिक आत्मविश्वास आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से की गई 7 सशक्त अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। डॉ सिंह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन वर्ष 1998 में पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में देश में स्टार्टअप्स के साथ रक्षा उत्पादन और निर्यात में कई गुणा बढ़ोतरी हुई है।
1: वर्ष 2014 में हमारे पास 350 से 400 स्टार्टअप थे। आज हमारे पास 2,00,000 से अधिक स्टार्टअप हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में हम दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं। सिर्फ एक दशक में हमारा रक्षा उत्पादन 174 गुना बढ़कर 1,54,000 करोड़ रुपए हो गया है और हमारा रक्षा निर्यात भी एक दशक में 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है।
0: गृहमंत्री आशीष सूद ने राजधानी में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए अग्निशमन विभाग के आधुनिकीकरण पर बल दिया है। आज दिल्ली सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में दिल्ली अग्निशमन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उन्होंने अग्नि सुरक्षा तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक के दौरान श्री सूद ने आगजनी की घटनाओं की रोकथाम, आपातकालीन स्थिति से निपटने की क्षमता, अग्नि सुरक्षा योजना, आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता और नए वाहनों की खरीद जैसे मुद्दों पर चर्चा की। दिल्ली सरकार की ड्राफ्ट दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 को सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया के दौरान नागरिकों और उद्योग जगत से व्यापक समर्थन मिला है। परिवहन विभाग के अनुसार लगभग 700 हितधारकों ने इस प्रक्रिया में भाग लेकर अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं दी। परिवहन मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने बताया कि प्राप्त सुझावों में करीब 400 प्रतिक्रियाएं आम नागरिकों से जबकि लगभग 200 सुझाव उद्योग जगत से मिले हैं। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य समूहों से भी 50 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं। दिल्ली सरकार राजधानी में पार्कों और उद्यानों के रखरखाव के लिए दी जाने वाली वार्षिक सहायता राशि में प्रति एकड़ 1,25,000 रूपये की वृद्धि करने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली पार्क और उद्यान समिति के माध्यम से आरडब्ल्यूए, गैर सरकारी संगठनों और पंजीकृत सोसायटियों को दी जाने वाली सहायता राशि में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया गया है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देशभर में लागू हो जाएगा। देशभर में नए ढांचे के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गांव के समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सभी निर्माण और तोड़फोड़ यानी सीएनटी साइट्स पर 100 GSM मोटाई वाले ग्रीन नेट का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने इस संबंध में नए निर्देश जारी कर दिए हैं और इन्हें तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा गया है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सरकार सख्त नियम, तकनीक आधारित निगरानी और वैज्ञानिक उपायों से प्रदूषण कम करने पर काम कर रही है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर गाजियाबाद से सराय कालेखां कैरिजवे के बीच रखरखाव और सड़क की मरम्मत का कार्य शुरू किया है। इस कार्य के चलते संबंधित मार्ग पर यातायात प्रभावित होने की संभावना जताई गई है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब किंग्स ने पांचवें ओवर में बिना किसी नुकसान के 65 रन बना लिए हैं। अंक तालिका में पंजाब चौथे और दिल्ली कैपिटल्स आठवें स्थान पर है। दोनों ही टीमों के लिए मैच प्लेऑफ में पहुंचने के लिए

0: राजधानी में आज दिनभर आमतौर पर मौसम साफ रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 2026 में भाग लिया। कहा, सोमनाथ मंदिर भारत की सनातन आस्था और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है। दिल्ली सरकार ने बीमार और असहाय लोगों के लिए एक विशेष सेवा और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली सरकार तकनीक आधारित प्रशासन को बढ़ावा दे रही है। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
5: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
4: अरे वही अपना 60 रुपया।
5: अरे यार, अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
4: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
5: और दूसरा?
4: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
5: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
4: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
6: पापा, लाइए 3,000।
4: क्यों भाई?
6: मेरी पॉकेट मनी।
4: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
6: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो, डिजिटल पेमेंट चलाओ।
4: है
6: नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
4: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
6: अपना मोबाइल लाओ,
4: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
7: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 386.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां।

0: नमस्कार श्रोताओ, कार्यक्रम हमारी बेड़ी में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ और सबसे पहले आपका धन्यवाद देती हूँ कार्यक्रम सुनने के लिए और हमें संपर्क करने के लिए। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या SMS करें इस नंबर पर। नंबर है 8527449955। जी हाँ श्रोताओ, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए 8527449955। श्रोताओं, संयुक्त परिवार अब केवल गांव में ही देखने को मिलते हैं, जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता और उन सभी के बच्चे सभी मिलजुल कर रहते हैं। आज भी गांव में परिवार के मुखिया दादाजी होते हैं और उनकी जरूरतों का ख्याल रखते हैं, लेकिन आज के समय में लड़कियां बचपन से ही छोटे परिवार में रहती हैं और शादी के बाद भी वह छोटे परिवार में रहना पसंद करती हैं। आजकल के बच्चे संयुक्त परिवार के महत्व को नहीं जानते, तो आइए सुनते हैं एक ऐसे परिवार की कहानी कि कैसे एक संयुक्त परिवार छोटी सी गलती के कारण बिखर जाता है। तो आइए सुनते हैं इस पर आधारित एक नाटक।
1: नमस्ते दादाजी, कैसे हो आप?
2: नमस्ते सोनू, बेटा आ गए तुम?
1: जी दादाजी, खुशी दादाजी के पांव छू।
3: जी नमस्ते दादाजी।
2: जीती रहो सोनू बेटा, यह कौन है?
1: दादाजी यह तुम्हारी बहू है, मैंने इससे शादी कर ली है।
2: क्या शादी? पर सोनू ऐसे कैसे तुमने शादी कर ली, हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा? अरे कम से कम अपने माता पिता को तो बता देता। सोनू तेरी शादी को लेकर हम सबके कितने अरमान थे, तुमने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा कि इस बात से कितना दुख पहुँचेगा।
1: दादाजी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैं खुशी से बहुत प्यार करता हूँ और इसके माता पिता इसकी शादी कहीं और करवाना चाहते थे।
2: क्या क्या मतलब कहीं और शादी करवाना चाहते थे? क्या इसके माता पिता तुम्हारी शादी से खुश नहीं थे?
1: जी दादाजी, इसलिए खुशी सब कुछ छोड़कर मेरे साथ आ गई और हम दोनों ने शादी कर ली।
2: सोनू मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम्हारे पिताजी और चाचा जी आने के बाद ही बात करेंगे, जाओ इसे अंदर ले जाओ।
1: जी दादाजी, चलो खुशी अंदर चले।
3: सुनो, तुम्हारे दादाजी इतने गुस्से में क्यों थे, वो तुम्हें इतना क्यों डांट रहे थे?
1: खुशी दादाजी इसलिए हमसे गुस्सा थे क्योंकि हमने जो किया है वो गुस्से की ही तो बात है, वो हमारे घर के बड़े हैं और मैंने इतना बड़ा फैसला उनसे बिना पूछे ले लिया। खुशी तुम ज्यादा मत सोचो क्योंकि दादाजी के गुस्से में भी प्यार है।
0: फिर शाम को सोनू के पिताजी और चाचा जी दोनों घर आ जाते हैं और घर पर सभी को उदास बैठा देखते हैं और वह सीधे अपने पिताजी के पास जाकर पूछते हैं, पिताजी आज घर में क्या हुआ है, सभी चुपचाप क्यों बैठे हैं और आप भी उदास लग रहे हैं? फिर सोनू के दादाजी सारी बात जो है सोनू के पिताजी को बताते हैं।
2: बेटा सोनू ने शादी कर ली है।
4: क्या सोनू ने शादी कर ली है, पर कब और कैसे? सोनू की माँ तुम्हें इस बारे में पता है?
5: जी नहीं, मुझे तो कुछ भी पता नहीं था, जब आज सोनू उसे घर लेकर आया तो ही मुझे पता चला। मैं तो खुद भी हैरान हूँ कि सोनू ऐसे कैसे कर सकता है।
2: अब करना क्या है बेटा, जो हो गया सो हो गया, अब बहू को कहो कि गुस्सा और नाराजगी को छोड़कर प्यार से उसका स्वागत करें।
4: ठीक है पिताजी। अरे सुनती हो सोनू की माँ?
5: जी कहिए क्या हुआ।
4: अब गुस्सा छोड़ो और सोनू की चाची और माँ सभी मिल करके अब उसे बहू नहीं अपनी बेटी समझना।
5: ठीक है जी, जैसा आप कहें।
0: फिर सभी मिलकर खुशी का स्वागत करते हैं और परिवार के बारे में बताने लगते हैं और सभी परिवार वालों से मिलाते हैं। इस प्रकार कुछ महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन सोनू की माँ खुशी के पास आती है और उसे कहती है,
5: खुशी बेटा अपनी ननद के साथ खेत में अपने पिताजी और चाचा जी के लिए खाना लेकर चली जाना, मुझे तुम्हारी चाची जी के साथ डॉक्टर के पास जाना है, कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब है।
3: क्या खेत में? माँ जी मैं कभी खेत नहीं गई, मुझे तो घर का सारा काम भी नहीं आता।
5: कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे करोगी तो सब आ जाएगा, मैं हूँ ना और तुम्हारी चाची जी भी तो है, हम तुम्हें सब सिखा देंगे।
3: ठीक है माँ जी।
6: भाभी जी खाना बन गया क्या, जल्दी करो, पिताजी और चाचा जी खेत में दोपहर के खाने का इंतजार कर रहे होंगे।
4: अरे खुशी बेटा, आज तुम खाना लेकर आई हो? तुम्हारी माँ कहाँ गई? वो क्यों नहीं आई?
6: पिताजी, चाची जी की तबीयत खराब हो गई थी, माँ उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गई थी, इसलिए माँ ने मुझे और भाभी को खाना लेकर भेजा है।
4: ठीक है बेटा, हमने खेत में थोड़ा सा घास काट कर रखा है, जाते समय उसे तुम दोनों घर ले जाना, हमें खेत में थोड़ी और देर लग जाएगी।
6: ठीक है पिताजी, भाभी आओ, हम घास लेकर घर चलते हैं।
3: घास लेकर? देखो लता, मैंने कभी खेतों में काम नहीं किया, मैं शहर में पली बड़ी हुई हूँ, मुझसे ये सब नहीं होता।
6: ठीक है भाभी, कोई बात नहीं, घास मैं उठा लेती हूँ, आप ये बर्तन उठा लो।
5: बेटा खुशी, तुम अपने पिताजी को खाना देकर तो आ गई हो ना?
3: जी माँ जी। माँ जी, चाची जी कैसी हैं? डॉक्टर साहब ने क्या कहा?
5: बेटा, तुम्हारी चाची जी पहले से थोड़ा ठीक हैं, बस उनको थोड़ा आराम करना है, वो जल्दी से ठीक हो जाएंगी।
6: माँ, पिताजी ने कहा है कि आज उन्हें खेत में देर हो जाएगी, वो देर से घर आएंगे।
5: ठीक है बेटा, लता जाओ, तुम्हारी भाभी को बुला कर ले आओ, आज तुम्हारी चाची जी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम दोनों शाम का खाना बनाने में मेरी मदद करना।
6: ठीक है माँ, मैं भाभी को अभी बुला कर लाती हूँ। भाभी, ओ भाभी, माँ तुम्हें रसोई में बुला रही है।
3: जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया।
5: हाँ खुशी बेटा, आओ खाना बनाने में मेरी मदद कर दो।
0: खुशी रसोई में अपनी सास के साथ खाना बनाने लगती है और मन ही मन में कुड़ती रहती है कि उसे कितने सारे लोगों का खाना बनाना पड़ेगा। खुशी मन में सोचती है, अगर सोनू घर वालों से अलग हो जाए तो उसे ना तो इतने लोगों का खाना बनाना पड़ेगा और ना ज्यादा काम करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद परिवार के सभी लोग घर पर आ जाते हैं, फिर सभी हाथ मुंह धोकर खाना खाने को बैठ जाते हैं। तभी सोनू के पिताजी सोनू की माँ को आवाज लगाते हैं।
4: अरे सोनू की माँ, जल्दी से खाना ले आओ, हमें बड़ी भूख लगी है।
5: जी अभी लाई। चलो बेटा खुशी, हम दोनों सभी को खाना परोस देते हैं।
1: खुशी, आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम सबके साथ जल्दी ही घुल मिल गई और तुमने घर के काम भी सीख लिए।
3: देखो सोनू, बहुत हुआ, मुझसे इतना काम नहीं होता, तुम तो जानते हो कि हमारे घर में ना तो इतने सारे लोग थे और ना ही इतना काम, यहाँ तो पूरा दिन घर का काम ही खत्म नहीं होता, फिर ऊपर से खेत भी।
1: अरे कोई बात नहीं खुशी, धीरे धीरे तुम्हें आदत हो जाएगी, माँ और चाची भी तो ये सारे काम करती हैं और उन्होंने कितने अच्छे से घर को संभाला भी है। चलो छोड़ो ये सब बातें, बस तुम हंसती रहा करो, तुम उदास अच्छी नहीं लगती।
5: लता देखो बेटा, तुम्हारी भाभी उठ गई क्या? उसे रसोई में आने को कह दो, जल्दी से खाना तैयार करना है, सभी को बाहर जाना है।
6: जी माँ। भैया, भाभी उठ गई क्या? माँ उन्हें रसोई में बुला रही है।
1: ठीक है लता, तुम चलो, मैं तुम्हारी भाभी को अभी भेजता हूँ। खुशी, खुशी, अरे जल्दी उठो, माँ तुम्हें बुला रही है।
3: ओहो, क्या हुआ, क्यों इतनी सुबह सुबह आवाजें लगा रहे हो?
1: खुशी जल्दी उठो, रसोई में माँ का खाना बनाने में हाथ बटा दो, क्योंकि चाची जी की तबीयत ठीक नहीं है।
5: आ गई हो खुशी बेटा?
3: जी माँ जी।
5: बेटा अब जल्दी से तुम रोटियां बना लो, सब्जी मैंने बना दी है, तुम अपनी भाभी के साथ काम करने में मदद कर लो।
6: ठीक है माँ, और कुछ रोटियां मैं बना दूंगी।
3: माँ जी, मुझसे नहीं बनती इतनी सारी रोटियां, आप खुद ही बना लीजिए।
6: भाभी, अब माँ से ये कैसे बात कर रही हो, इतने सारे से आपका क्या मतलब है? क्या आपको नहीं पता था कि हमारा परिवार एक बड़ा परिवार है?
5: लता तुम चुप रहो, तुम अपनी भाभी से ऐसी बात नहीं कर सकती, चलो माफी मांगो अपनी भाभी से।
3: रहने दीजिए माँ जी, पहले तो आप अपनी बेटी से मुझे भला बुरा बुलवाती हैं और अब माफी मांगने का नाटक करती हैं।
5: अरे खुशी बेटा, ये क्या कह रही हो, मैंने तुम दोनों में कभी भी फर्क नहीं समझा, मैं तुम्हें अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी समझती हूँ।
1: क्या हुआ माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हो, कुछ हुआ है क्या?
5: नहीं बेटा कुछ नहीं, ये लो आपका टिफिन और तुम अपने काम पर चले जाओ।
0: फिर सोनू अपने काम पर चला जाता है और खुशी अपने कमरे में चली जाती है। फिर लता और उसकी माँ मिलकर रसोई व घर का सारा काम कर लेती है, वह खुशी को कोई भी काम नहीं कहते, यदि वह खुशी को कुछ भी करने के लिए कहते तो खुशी हर बात का उन्हें उल्टा जवाब देती।
2: देखो बेटा, मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार में रोज किसी न किसी बात को लेकर झगड़े हों, इसलिए हमारे लिए यही अच्छा है कि हम अपने सोनू को अलग कर दें ताकि वो बहू को लेकर शहर चला जाए।
5: क्या अलग कर दें? नहीं पिताजी, मैं सोनू के बगैर कैसे रहूंगी? मैं अपने बेटे के बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। उसे शहर ना भेजें, मुझे मेरे बेटे से अलग ना करें। आप कुछ कहते क्यों नहीं?
4: पिताजी ठीक कह रहे हैं। सोनू की माँ, तुम अपने मन को समझाओ, मैं सोनू से बात करूंगा। सोनू बेटा जरा यहाँ आना।
1: जी पिताजी, आया।
4: बेटा हम सब ने यह सोचा है कि तू बहू को लेकर शहर चला जा, तुम दोनों वहीं रहो, हमसे जो बन पाएगा हम तुम्हारी मदद करते रहेंगे।
1: ठीक है पिताजी, जैसा तुम कहो। खुशी, खुशी कहाँ हो?
3: जी कहिए, क्या हुआ? पिताजी ने आपको क्यों बुलाया था?
1: खुशी, कल हम शहर जा रहे हैं, अब हम वहीं रहेंगे।
3: अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है, और तुम इसे उदास होकर क्यों बता रहे हो?
0: यहाँ सोनू और उसके परिवार वाले सोनू के शहर जाने से उदास थे, वहीं खुशी बहुत खुश थी। फिर सोनू और खुशी शहर जाकर रहने लगते हैं। जब सोनू के परिवार वाले सोनू से बात करना चाहते थे तो खुशी कोई ना कोई बहाना बना देती और सोनू से बात नहीं करवाती। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। फिर एक दिन सोनू काम से घर जल्दी आ गया।
3: अरे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई?
1: मुझे जॉब से हटा दिया है।
3: क्या, जॉब से हटा दिया? पर क्यों?
1: पता नहीं क्यों।
3: हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? घर का खर्च और किराया कहाँ से देंगे?
1: तुम चिंता मत करो खुशी, मैं कहीं और काम ढूंढ लूँगा।
3: सुनो जी, शहर में काम ढूंढना आसान बात नहीं है। मेरी मानो तो एक बात कहूँ?
1: कहो, क्या कहना चाहती हो?
3: तुम अपने पिताजी से गांव में अपना हिस्सा मांग लो और उसे बेचकर शहर में अपना कोई काम शुरू कर लो।
1: तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? हिस्सा मांग लो? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम पागल हो गई हो क्या?
3: हाँ हाँ, मैं तो पागल ही हो गई हूँ। जो मैं आपके भले के बारे में सोच रही थी, आपको तो आज भी मुझसे ज्यादा अपने परिवार की चिंता है।
1: ऐसी बात नहीं है खुशी, मुझे तुम्हारी भी चिंता है। यदि मैं

0: पिताजी से अपना हिस्सा मांग लूंगा तो कल मेरे छोटे भाई बहन उन पर इसका क्या असर होगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे।
1: ऐसे ही कुछ समय बीत गया और सोनू को कहीं पर भी काम ना मिला। इस परेशानी के चलते सोनू की तबीयत खराब रहने लगी और वह बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया और उसके घर की हालत भी बहुत खराब हो गई थी। ना तो वह घर का खर्च चला पा रहा था, ना ही घर का किराया दे पा रहा था। मकान मालिक बार बार सोनू को घर खाली करने को कहता रहा। यह देखकर खुशी भी बहुत परेशान हो गई थी। फिर उसे परिवार की याद आती है और वह रोने लगती है। एक दिन सोनू के पिताजी का फोन आता है और फोन खुशी उठाती है।
2: हेलो, कौन?
3: हेलो खुशी बेटा, मैं सोनू का पापा बोल रहा हूँ।
2: पिताजी, आप? पिताजी।
3: क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? मुझे बताओ क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना?
2: पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं आप लोगों को छोड़कर यहाँ आ गई। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी।
3: कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही हमारे लिए काफी है। बस अब रोना बंद करो। सुनो बेटा, कल मैं और तेरे चाचा जी शहर आएंगे, तुम अपना सामान बांध के रखना।
1: इस प्रकार वह परिवार भी फिर से एक हो जाता है। श्रोताओं, बड़े बूढ़े हमारे परिवार में बोझ नहीं बल्कि एक मजबूत पेड़ है जिसके सहारे पूरा परिवार एक बना रहता है और परिवारों में खुशियां बनी रहती है। इस विषय में आप क्या विचार रखते हैं, हमें अवश्य बताएं। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या SMS करें इस नंबर पर। नंबर है 8527449955। जी हाँ श्रोताओ, 8527449955 हमारा पता नोट कर लीजिए। कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ श्रोताओ, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। और मुझे यानी कि प्रिया को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीत मालिका।

किसी अपने के साथ बहुत वक्त बाद मुलाकात होती है तो कितना अच्छा लगता है ना, और लगता है कि जो बातें हम करना चाहते हैं वो जल्दी जल्दी कर लें और बहुत सारी बातें करें, है ना। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम बहुत वक्त बाद किसी से मिलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि ये एक दिन या ये कुछ पल का जो समय है ये तो बहुत कम है, पूरा एक दिन रुक कर खूब सारी बातें की जाए, है ना। तो ये मिक्स फीलिंग होती है जब हम किसी से मिलते हैं। और अगर बात करें पहली मुलाकात की, तो उसमें थोड़ी हिचकिचाहट होती है, थोड़ी शर्म होती है, बहुत सारी जो उसमें भी कहते हैं ना कि एक अलग तरह के भाव होते हैं। लेकिन हाँ, जब हम किसी अपने से, किसी खास से मिलते हैं ना, तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। फिलहाल एक प्यारा सा गीत आपका इंतजार कर रहा है, उसे सुनते हैं और फिर आपसे करते हैं बातें।

वैसे हम सबका नसीब तो बहुत अच्छा है, वो इसलिए अच्छा है क्योंकि हमें ये खूबसूरत सी जिंदगी जो मिली है तोहफे में। लेकिन हाँ, उससे भी अच्छी बात तब हो जाती है जब आपको अपने अच्छे जो आपके करीब होते हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं, वो आपको हिम्मत देते हैं, आपका साथ देते हैं, मुश्किल वक्त में आपको मोटिवेट करते हैं और आपको कहते हैं कि ये वक्त गुजर जाएगा। तो जब आपको जिंदगी मिली और उसके बाद जिंदगी में खूबसूरत लोग मिलते हैं ना, तो आप अपने आप को अकेला नहीं समझ सकते और आप परेशानी में जरूर घेर सकते हैं क्योंकि सुख दुख जो है वो जिंदगी में आते हैं और जाते हैं। लेकिन क्योंकि आपके साथ अपने अपनों का यानी खास लोगों का साथ होता है ना, तो आप उस मुश्किल से ना बिल्कुल यूं निकल के पार हो जाते हैं, है ना। फिलहाल चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इस गीत को सुनते हैं।

हम आपके खास दोस्त हैं और आप हमारे खास दोस्त हैं, ये हम मानकर चल रहे हैं और उम्मीद करते हैं आपको कार्यक्रम जो है वो पसंद आ रहा होगा। और अगर बात करें जिंदगी में ना, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको कई जगह ना चुप रहकर, खामोश होकर भी बहुत जो मुश्किलों के हल है ना वो मिल जाते हैं। और कई बार आप चुप रहकर भी ना किसी की मदद कर पाते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और अगर आप उसको जवाब नहीं देते और उसको सुन लेते हैं चुपचाप, ठीक है, तो उससे होता क्या है कि जो उसका गुस्सा है ना

वो थोड़ी देर में शांत हो जाता है और फिर जो कहते हैं ना कि वो जो एक माहौल बिगड़ने वाला था वो संभल जाता है, है ना। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि वैसे तो ये तरीका होता है कि अगर कोई भी आपस में मतभेद होता है तो बोलना चाहिए, बात करके हल निकलता है, लेकिन कभी कभी अगर सामने वाला गुस्सा कर रहा है या परेशान है तो चुप रह के खामोश रहकर भी मुश्किलों को कम किया जा सकता है।

हम तो चुप नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि हम आपके साथ हैं और आपसे बात नहीं करेंगे तो कैसे बनेगी बात। अब एक और गीत है जो अब होगा हमारे साथ, चलिए सुन लेते हैं उसे।

जी हाँ, ये गीत है जो होगा हमारे साथ, और फिलहाल इसी गीत को सुनकर आपको क्या लगता है और आपके मन में क्या ख्याल आते हैं आप हमें ज़रूर बता सकते हैं।

उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और अब जो घड़ी की सुई है वो इशारा कर रही है कि इस कार्यक्रम को यही खत्म करना होगा, लेकिन आप कहीं जाइए नहीं, जुड़ रही है हमारे साथ यानी आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। अब से कुछ देर में यानी कि ठीक 8:45 पर आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। इसके बाद आप 9 बजे सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। ठीक 9:15 पर आप सुनेंगे उर्दू में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर उत्पादों की कोई कमी नहीं, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंत बिस्व सरमा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये राज्य में एनडीए का लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय पुरुष टीम वनडे क्रिकेट टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े।
2: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
1: प्रधानमंत्री ने लोगों से 7 सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात

0: सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। उन्होंने नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये लगातार आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
0: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रूपये का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपीलों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पूलिंग को अपनाकर पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने का आग्रह किया था। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह नागरिकों से किया था। श्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेशों में कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने का भी आग्रह किया था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 50% तक कम करने, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने का आग्रह किया। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है।
4: फॉर द सीजन ऑफ खरीफ 2026,
5: खरीफ 2026 सीजन के लिए उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक उपलब्ध है। प्रमुख उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य MRP में भी लगभग स्थिरता बनी हुई है। संकट काल के बाद देश में उर्वरकों का घरेलू उत्पादन 76.78 लाख मीट्रिक टन रहा है, जबकि आयात के माध्यम से 19.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हुए हैं। संकट की स्थिति के बाद लगभग 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
1: कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी देशवासियों से प्रधानमंत्री की 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोगों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर खर्च कम करने का आग्रह किया। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देशभर में लागू हो जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देशभर में इसके कार्यान्वयन के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।
2: विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेह भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आज ही के दिन वर्ष 1998 में पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में देश में स्टार्टअप्स के साथ रक्षा उत्पादन और निर्यात में कई गुना वृद्धि हुई है।
3: वर्ष 2014 में हमारे पास 350 से 400 स्टार्टअप थे। आज हमारे पास 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में हम दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं। सिर्फ एक दशक में हमारा रक्षा उत्पादन 174 गुना बढ़कर 1,54,000 करोड़ रुपए हो गया है और हमारा रक्षा निर्यात भी एक दशक में 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ, शेर, चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका उद्देश्य बाघ, शेर, चीता और हिम तेंदुआ सहित 7 प्रमुख बिग कैट्स की प्रजातियों का संरक्षण करना है।
3: IBCA प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक पहल है बिग कैट्स के संरक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि उनके रहने के ठिकाने, तकनीक आधारित निगरानी, सामुदायिक संरक्षण, क्षमता निर्माण और संरक्षण के प्रति जागरूकता को सहयोग देने के लिए कॉर्पोरेट जगत का साथ बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इन बिग कैट्स को बचाने के लिए आगे आएं।
4: टू कम फॉरवर्ड टू सेव द बिग कैट्स।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। असम में कल हेमंत बिस्व शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ श्री शर्मा लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता बन जाएंगे। ये राज्य में एनडीए का लगातार 3रा कार्यकाल होगा। पुदुचेरी में बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। राज्य में नई गठित सरकार के बाद पहली मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी। राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना सहित कई अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन की भी घोषणा की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
5: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 76,015 पर बंद हुआ। निफ्टी 23,816 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 83 पैसे की गिरावट दर्ज करते हुए 95.31 रूपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगले 2 से 3 दिन में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इस बीच असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 2 दिन में तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने और तेज हवाओं के साथ

0: वर्षा का अनुमान है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की एक दिवसीय टीम रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। आज जारी की गई रैंकिंग में न्यूजीलैंड पर भारत की बढ़त 8 अंक से घटकर 5 रह गई है। भारत एक अंक के नुकसान के साथ 119 अंक से घटकर 118 पर आ गया है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 17 वर्ग में आज 8 मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए। हालांकि 4 भारतीय मुक्केबाजों को आज सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब किंग्स ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 149 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग शामिल होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls upon citizens to unite to ease burden on national resources, terms West Asia conflict one of decade's biggest crises. Government assures no shortage of petroleum as the country holds 60 days stock of crude oil and natural gas and 45 days of LPG. Centre notifies implementation of Viksit Bharat G. Ramji Act from 1st of July. BJP leader Hemanta Biswa Sarma set to take oath as Assam Chief Minister tomorrow, marking NDA's third consecutive term in the state. IMD forecasts heat wave conditions over Gujarat, central Maharashtra, Rajasthan and West Madhya Pradesh tomorrow. And in cricket, India retained top spot in men's ODI team rankings. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today called upon the citizens to unite to ease burden on national resources, terming the West Asia conflict one of decade's biggest crises. The Prime Minister was addressing the gathering after inaugurating the Sardar Dham Hostel at Vadodara in Gujarat.
2: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
1: Prime Minister Modi said the government is making continuous efforts to ensure that this situation has the minimal possible impact on the people of the country. The Prime Minister reiterated his 7-point appeal to tackle the adverse impact of West Asia crisis. These include reducing fuel consumption, prioritizing work from home wherever possible, avoiding foreign travel for a year, and adopting Swadeshi products. He has also urged the citizens to move towards natural farming and avoiding unnecessary gold purchases.
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को

आप हमें सुन सकते हैं मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। सामिन, आपको बता दें कुछ ही देर बाद यानी 9:20 पर गैर फिल्मी गजलों का प्रोग्राम एक फनकार पेश किया जाएगा। 9:45 खबरें नशर की जाएंगी और 9:55 पर सुनिएगा कुछ बातें आपकी सेहत के हवाले से। रात 10:00 हम पेश करेंगे आईना, आज का मौजू होगा मिर्जा फरतुल्ला बेग, वाकयात और शख्सियत। फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम तामिल इरशाद आप सुन सकते हैं रात 10:30 से लेकर 11:30 तक। इस दौरान 11:00 सुनिएगा खबरें बड़े सगीर से। रात 11:30 हम पेश करेंगे प्रोग्राम सुर्खियों में। 12:45 कवाली के प्रोग्राम में समाप्त फरमाइए अख्तर जियाई कवाल और साथियों की गई कवालियां। 12:00 आलमी खबरें नशर की जाएंगी और 12:10 पर क्लासिक की मौसीकी में सुनिएगा उस्ताद अमजद अली खान से सरोद पर बजाया नांग राग नंदकौस।

मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। पेश खिदमत है गैर फिल्मी गजलों का प्रोग्राम एक फनकार। आज के इस प्रोग्राम में समाप्त फरमाइए चंदन दास की गाई गजलें। इब्तदा कर रहे हैं पयाम सईदी के इस कलाम से।

दरवाजे साल 1951 में उस वक्त के सदर जमहूरिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मौजूदगी में खोले गए थे, जो दुनिया के लिए इस बात का वाजह ऐलान है कि हमलावर तारीख की धूल में कहीं पीछे रह गए और भारत की रूह कायम व दायम रही। मंदिर में एक तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जानिब से मंदिर की तामीर नौ भारत की अपनी सकाफत को फख्र के साथ महफूज करने के अज़्म को जाहिर करती है। हुकूमत ने आज मुतल्ला किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कोई कमी नहीं है और भारत के पास 60 दिन का खाम तेल, 60 दिन की कुदरती गैस और 45 दिन का एलपीजी जखीरा मौजूद है। ये बात नई दिल्ली में वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में मगरबी एशिया से मुतालिक वुजरा की गैर रस्मी ग्रुप की 5वीं मीटिंग के दौरान बताई गई। मीटिंग के दौरान इस बात की भी इत्तला दी गई कि ज़र मुबादला के गैर मुल्की ज़खायर 703 अरब अमरीकी डॉलर की खातिर खा मकदार में मौजूद हैं। हुकूमत ने बताया कि सप्लाई का इंतजाम बहुत अच्छा रहा है और लोगों को ईंधन और दीगर मसनूआत की खरीदारी के लिए परेशान होने या जरूरत से ज्यादा खरीदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। मीटिंग में मरकजी वुजरा जेपी नड्डा, अश्विनी वैष्णव, हरदीप सिंह पुरी, किरण रिजेजू, के राम मोहन नायडू, सर्बानंद सोनवाल और डॉ जितेंद्र सिंह मौजूद थे। मरकज ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन देही कानून 2025 वीबीजी रामजी के निफाज को नोटिफाई कर दिया है। यह कानून इस साल 1 जुलाई से मुल्क भर में नाफिज हो जाएगा। देही तरक्यात की वजारत ने बताया कि यह कानून हर माली साल के दौरान 125 दिनों की रोजगार उजरत की गारंटी देते हुए देही भारत को बाख्तियार बनाएगा। हमारे नुमाइंदे ने बताया कि मुल्क भर में मौजूदा माली साल के लिए नए फ्रेमवर्क को फाल करने की खातिर 95,652 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। विकसित भारत जी रामजी कानून, 20 साल पुराने महात्मा गांधी रोजगार कौमी देही गारंटी कानून एमजी नरेगा 2005 की जगह लेगा। नए कानून का मकसद माली साल के दौरान कानूनी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस इजाफी रोजगार गारंटी के जरिए देही तरक्यात की रफ्तार में तेजी, आमदनी के तहफ्फुज़ की बेहतर जमानत और देही कुंभों को बाख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। यह कानून उजरत की अदायगियों को बरवक्त बनाने, शफाफ और जवाबदेह अदायगियों पर जोर देता है। साथ ही वीबीजी रामजी कानून में मुकर्ररा वक्त में काम न मिलने की सूरत में बेरोजगारी भत्ता फराहम करने की गुंजाइश भी है। विकसित भारत जी रामजी कानून जामे कानूनी फ्रेमवर्क है जो साल 2047 तक विकसित भारत की तामीर के लिए कौमी विजन को देही रोजगार पैदा करने के साथ हम आहंग करता है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आसाम में हेमंत बिस्वा सरमा के लगातार दूसरी मुद्दत के लिए आसाम के वजीर आला के तौर पर कल हलफ लेने की सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। मीडिया से बात करते हुए कारगुजार वजीर आला और वजीर आला नामजद हेमंत बिस्वा सरमा ने मुतल्ला किया कि हलफ बर्दारी की तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और बीजेपी सदर नितिन नवीन शिरकत करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कई मरकजी वुजरा और बीजेपी की हुक्मरानी वाली रियासतों के वुजरा आला भी तकरीब में शरीक होंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब आसाम में एनडीए की लगातार तीसरी मुद्दत के आगाज की अलामत होगी। इस दौरान मगरबी बंगाल की नई रियासती हुकूमत ने आज अपना कामकाज शुरू कर दिया। वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने काबिनी इजलास की सदारत की और अमन कानून की सूरत हाल से मुतालिक रियासती सेक्रेटेरिएट नबन्ना में इंतजामी मीटिंगें की। मगरबी बंगाल हुकूमत के 5 वजीरों में आज मुख्तलिफ कलमदान तकसीम किए गए। इन वुजरा ने 9 मई को वजीर आला शुभेंदु अधिकारी के साथ हलफ लिया था। एक बड़ी पेशरफ के तहत आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी मरकजी हुकूमत की स्कीमों के मगरबी बंगाल में निफाज को मंजूरी दे दी गई। वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने आज जराए ब्लाग को बताया कि भारत बांग्लादेश सरहद पर खारदार तार लगाने के लिए सरहदी मुहाफिज दस्ते बीएसएफ को अगले 45 दिन के अंदर जमीनें फराहम कर दी जाएंगी। साबिका टीएमसी हुकूमत ने मरकजी हुकूमत से फंड्स मौसूल होने के बावजूद जरूरी खित्ते आराजी की मुंतकली नहीं की थी। नई रियासती हुकूमत ने यह भी बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से जारी फलाह व बहबूद की किसी भी स्कीम को मगरबी बंगाल की नई हुकूमत बंद नहीं करेगी। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा है कि शहरों की कुदरती पनाहगाहों की बहाली, टेक्नोलॉजी पर मबनी निगरानी और बिरादरियों के जरिए उनके तहफ्फुज़ के लिए कॉरपोरेट फंडिंग जरूरी है।
नई दिल्ली में आज CII सालाना कारोबारी छुट्टी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने सनती रहनुमाओं से शेरों की नस्ल के जानवरों को बचाने की आलमी कोशिशों की सरगर्म तौर पर हिमायत करने की अपील की। जनाब यादव ने यह भी बताया कि भारत अगले महीने की 1 और 2 तारीख को नई दिल्ली में शेरों की नस्ल के तहफ्फुज़

0: लिए जा सकते हैं। भारतीय महकमा मौसमियात ने गुजरात, वस्ती, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कल गर्मी की लहर के हालात बरकरार रहने की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 4-5 दिन के दौरान मगरबी राजस्थान के इलाकों में रात के वक्त भी गर्म सूरत हाल रहेगी। मौसमियात के महकमे ने अगले 2-3 दिन के दौरान शुमाल मगरबी भारत में ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत में 2-4 डिग्री सेल्सियस के इजाफे की पेशगोई की है। आईसीसी की जानिब से आज जारी की गई मर्दों की एक रोजा बैन अलाक्वामी मैचों की टीम दर्जाबंदी में भारत ने अपना पहला मुकाम बरकरार रखा है। तहम भारत की दर्जाबंदी में 1 पॉइंट की कमी आई है, जबकि न्यूजीलैंड 2 पॉइंट हासिल करते हुए 113वें मुकाम पर पहुंच गया है। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शहरियों से जोर देकर कहा है कि कौमी वसायल पर बोझ में कमी करने की गरज से मुत्तहिद हो जाएं। वजीर आजम ने मगरबी एशिया के तनाजे को इस दहाई के सबसे बड़े बहरान में से एक करार दिया और हुकूमत ने यकीन दिलाया कि पेट्रोलियम की कोई कमी नहीं है। खबरें खत्म हुई।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। कुछ बातें आपकी सेहत के हवाले से।
2: समय इंसान की सेहत को कायम रखने में पेट एक अहम रोल अदा करता है। इसके अंदर आंतों का गुच्छा हमारे निजामे हाजमे में एक अहम रोल अदा करता है। इस पेट के अंदर जरा भी इन्फेक्शन हो जाए और अगर हम उस पे तवज्जो ना दें तो ये जख्म बन जाता है, जिसे हम लोग अल्सर के नाम से जानते हैं। आइए देखें कि अल्सर कैसे पैदा होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो सामईन, आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर ए.के. वार्ष्णेय। डॉक्टर वार्ष्णेय, आपका हम स्टूडियो में स्वागत करते हैं।
3: धन्यवाद।
2: और डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आखिर पेट के अल्सर से हमारी मुराद क्या है, ये होता क्या है?
3: देखिए, जो पेट की हमारी भीतर की जो हिस्सा होता है उसमें एक झिल्ली होती है, म्यूकोसा होता है, लाइनिंग होती है
2: जी।
3: तो इस लाइनिंग में अगर किसी तरीके का व्यवधान आ जाए, जो ये स्मूथ लाइनिंग होती है, अगर इसमें कोई दरार आ जाती है, छेद सा हो जाता है, तो उसको हम जख्म या अल्सर, जैसे बाहर जख्म हो जाता है इसी तरीके से भीतर जख्म हो जाता है
2: जी,
3: तो उसको हम अल्सर बोलते हैं।
2: अच्छा, तो आखिर ये होता कैसे, क्यों हो जाता है?
3: इसी वजह देखिए, इसमें जो आपने कहा कि दो इसमें इम्पोर्टेंट चीजें हैं। जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले वो खाना हमारा स्टमक या आमाशय में जाता है
2: जी, जी।
3: और उसके बाद वो छोटी आंत में जाता है। तो छोटी आंत का एक हिस्सा होता है, जो पहला हिस्सा है, उसको हम ड्यूडेनम बोलते हैं
2: जी, जी।
3: तो ये अल्सर दो जगह ज्यादा होते हैं, एक तो आमाशय में होते हैं जिसको हम गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं।
2: आमाशय
3: का हिस्सा होता है शुरू में, जिसमें खाना पहले जाकर रुकता है, वहां पर शुरू का डाइजेशन होता है, और उसके बाद आंतों का जो पहला हिस्सा है उसको ड्यूडेनम अल्सर कहते हैं। अब इसका कारण क्या है कि जो हमारा खाना पचाने के लिए शरीर को एसिड की जरूरत पड़ती है, तो जो हमारा पेट है या आमाशय है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो काफी पावरफुल एसिड होता है, उसको सीक्रेट करता है डाइजेशन के लिए
2: जी, जी।
3: इसके अलावा कुछ और एंजाइम होते हैं जो पेप्सिन्स होते हैं, उनको भी सीक्रेट करता है, जो कि हमारे फैट को, जो मतलब बसा है या और कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन है, उनको पचाने के काम आते हैं
2: जी, जी।
3: तो ये बहुत जरूरी है, लेकिन संतुलन जरूरी होता है। जब अगर हमारा इनका संतुलन बिगड़ जाता है,
2: बैलेंस जिसे कहते हैं,
3: और ये बहुत ज्यादा मात्रा में सीक्रेट होने शुरू हो जाते हैं, तो वो भीतर की जो झिल्ली होती है उसको ही गला देते हैं, और वो गल जाती है तो फिर वो अल्सर बन जाता है
2: जी जी। तो इसमें जो आपने अभी ड्यूडेनम की बात की, एक अल्सर यहाँ हो गया, एक आम गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, तो इन दोनों में कुछ फर्क होगा?
3: कुछ फर्क होता है। जो गैस्ट्रिक अल्सर होता है, जो कि शुरू में ही होता है
2: जी जी,
3: तो ये वाला अल्सर में जो दर्द होता है, जैसे अल्सर के जो मुख्य लक्षण होते हैं, पेट में दर्द हो जाना, खाना खाते ही दर्द हो जाना, या कई बार दर्द नहीं होता तो भारीपन आ जाता है, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होता है, कई बार ये दर्द पीछे कमर की तरफ भी चला जाता है
2: जी,
3: ठीक है, और कई बार पेशेंट को उल्टियां भी होनी शुरू हो जाती है।
2: ये अलामतें हैं, सिम्टम है,
3: ये सिम्टम है
2: जी, जी।
3: तो जब गैस्ट्रिक अल्सर में होता है कि जैसे ही मरीज खाना खाता है उसको दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो शुरू का हिस्सा है, जैसे ही वहां खाना पहुंचा वैसे ही खाने को पचाने के लिए एसिड का सीक्रेशन ज्यादा होना शुरू हो जाता है, तो वहां पे जख्म ऑलरेडी पड़ा हुआ है, और तो इसलिए वो तुरंत ही दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन जो ड्यूडेनम, जैसे जो आंतों का पहला हिस्सा है, वो चूंकि अभी दूर है, वहां खाना 2 घंटे के बाद पहुंचता है, तो उसका जो दर्द होता है वो 2 घंटे के बाद शुरू होता है, खाना खाने के बाद, ठीक है ना। और जब खाना पच जाता है और अगर लंबे समय तक आप भूखे रहें तो भी दर्द होना शुरू हो जाता है वहां पे।
2: अच्छा।
3: तो इसीलिए उसको हम हंगर पेन भी बोलते हैं एक तरीके से।
2: अच्छा।
3: जब भूखे हो,
2: हाँ,
3: और कई बार जैसे जब खाना खाते हैं तो वो दर्द गायब हो जाता है, ये भी एक अल्सर के पेन का लक्षण होता है।

0: आलम की सैर मीर की सोहबत में हो गई। ताले से अपने हाथ ये आशुफ्ता सर लगा। मिर्जा फरहतुल्ला बेग की जिंदगी गूनागूं मसरूफियात की आमाजगाह थी। अदबी दुनिया में उन्हें न सिर्फ मिजा निगार और इंशाइय गो की हैसियत से याद किया जाता है, बल्कि उनके बाज मजामीन में जो ड्रामाई अंदाज बयां है वो उनके बारे में ये राय कायम करने पर भी उकसाता है कि अगर मिर्जा ड्रामे की दुनिया में बाकायदा विर्द करते तो बड़ी कामयाबी नसीब होती। मिर्जा फरहतुल्ला बेग ने अफसाने भी लिखे और अपनी समाने ही वाकयात भी कलमबंद किए। मियां बीवी की नोकझोंक को भी हवाला कलम किया और हुमा शुमा की दास्तानें भी लिखी। वो जिस मैदान में नबरदाजमा हुए कामयाबी के साथ उसे मुसख्खर किया। पैदा कहां है ऐसे परागंदा तबा लोग, अफसोस तुमको मीर से सोहबत नहीं रही।
1: सामिनी आप समाप्त फरमा रहे थे फीचर आइस प्रोग्राम आईना। आज का मौजू था मिर्जा फरहतुल्ला बेग वाकयात और शख्सियत। तहरीर प्रोफेसर सैयद जमीर हसन देहलवी की थी। सदाकार थे एस एम शफीक और मरियम काजमी। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम तामिल इरशाद। तमाम सामईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब।

ताजमहल फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, नगमनिगार थे साहिर, मौसीकार थे रोशन। सुनना चाहते थे जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबिया, नसर रेहान। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता और करण। बदलापुर मुंबई से परनीता गवाहनकर, सिद्धांत गवाहनकर और टुकटुक गवाहनकर। विदर्भ आकोट से के संजीव डाबेराव, सुनीता डाबेराव और डॉक्टर कौस्तुभ डाबेराव।

बोरखेड़ा जिला उज्जैन से विनोद मुनत, नेहा जैन और दीपक मुनत, कुंभारगली कालीगांव से पाडू चंदन, उषा चंदन और प्रतीक्षा चंदन, अलीका डब्वाली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार और कुलदीप गांधी, केथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा, मुल्लापुर दाखा से राजेश जैन, बिट्टू जैन और संजीव जैन, कालका से शुभचंद्र बजाज, शाही बजाज और बिट्टा बजाज, और सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी साव और अजय मी, तालुका नेवासा खुपटी महाराज से बंडू लोहार पोपलगढ़, चंद्रकला पोपलगढ़ और देवीदास पोपलगढ़, गांव थाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, आसे गांव बाजार से करण रंजीत पुनकर, बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव और स्मर्थ नामदेव, शनि मंदिर चौक खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनिता सैनी और गौरव सैनी, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश और राशि राजेश, कलकत्ता से सुब्रत राय चौधरी, ऊपरकोट मोहल्ला चौक कुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी और शाहनवाज सरफराज अब्बासी, चंडीगढ़ से सतीश अनिजा और बिमला अनिजा, उत्तमनगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमरा लानी और भानु खोरवाल, जमानी गाजीपुर से सूरज जायसवाल, उर्मिला जायसवाल और दीपक जायसवाल। और समझ लीजिए, अब सुनिए प्रोग्राम की अगली पेशकश महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में, काजल फिल्म का नगमा, नगमानिकार साहिर, मौसीकार रवि, सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सब। मोतला महाराज से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर और कुमकुम सुरलकर, कदबा अग्रवाल मंडी बागपत से आसिफ अली खान और मुस्कान आसिफ, सल्लाही सोकनाहा नेपाल से अरुण कुमार शर्मा, रेणु देवी शर्मा, राहुल कुमार शर्मा, झुमरी तलैया से महेंद्र चौरसिया, लाहौडड्डा जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, मुनेश देवी और भुवनेश्वरी देवी, भट्टापारा छत्तीसगढ़ से हरमिंदर चावला, सोहन जोशी और शिव कुमार शर्मा, सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, मायादेवी वर्मा और राहुल कुमार वर्मा, और यह जनाब गोकुल चौक गंगजला सहरसा बिहार से राजकुमार विद्यार्थी, सवित्र आदि विद्यार्थी और पुलकी वाली फलना झा, गिरडी झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, सायमान आबाद और बाबू अहद, कुंभारगली श्यामपुर से अशोक दले, सविता दले और अनिकृत दले, शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल और विशाल सपकाल, हाकोट से विनायक बेंडे, श्रीमती मंगला बेंडे और शुभम बेंडे, और सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु नारंग विनोद पुरी। आप तमाम की पसंद आपकी नजर है।

0: 10 दिन के लिए जखीरा मौजूद है। मरकज ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी एक्ट पर अमल आवरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बीजेपी लीडर हेमंत बिस्वा सरमा कल आसाम के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। रियासत में एनडीए की लगातार यह तीसरी मुद्दत की हुक्मरानी होगी। और क्रिकेट में भारत ने मर्दों की एक रोजा क्रिकेट की दर्जाबंदी में अपना अव्वल मकाम बरकरार रखा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है तमिल इरशाद प्रोग्राम की कुछ और नगमें।

बैजू बावरा फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में नगमा निगार थे शकील बदायूनी, मौसीकार नौशाद। सुनने के ख्वाहिशमंद थे गुन्नौर से आदिल कमर, तस्दीक अली और मुजफ्फर अली। जयराज प्लोट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट और प्रयागराज भट्ट। जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार और बिल्लू निषाद। प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा से आनंद जोशी, तनुजा जोशी और ध्रुवी जोशी। खत्री कॉलोनी नया अंजार कश्य अब्दुल कादर खत्री और विक्रम सिंह जडेजा। नर्मदा पार्क मंगलबेड़ा जिला सोलोपुर महाराष्ट्र से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल। और ये हैं जनाब रेलवे रोड गंडुनवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, नजमा बेगमनाज और बेबी फातिमा गाजी।

और अगला मिल किसका ये है? खोखा बिलाई छत्तीसगढ़ से प्रताप पांडे और रेखा पांडे। राजधानी रायपुर से नीलू मेघ नीलम डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार। वर्णशाहपुर कोल्हापुर मार्ग से विजय चौहान इंदुरकर तेजस्वनी चौहान और अंकिता निकेत चौहान। साईनगर आरबी मारा से निरंजन मिर्गी प्रियदर्शनी मिर्गी और डॉक्टर प्रियंका काल पांडे। गांव पोस्ट हररपुर मटकली जिला बरेली से शाहरुनूर अंसारी और याद हुसैन अंसारी और शकील अहमद इदरीसी। कच्छ गुजरात से गंगावनकर प्रीति और जूली। और ये जनाब तंबाराम चिन्नई से ताम्रम चिन्नी से अच्छा शाहिद अली इफर फारूकी और हिफ्जा। श्रीरामपुर फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराज से नासिर शेख नाजिर नासिर और साजिद शाहिद। गांधीनगर यावतमाल महाराज से लक्ष्मण राव लोखंडे कल्पनाताई लोखंडे और शैलेश लोखंडे। मेन रोड तिलहारा से प्रकाश पोहारकर नर्मदा पोहारकर और कुमारी सुजाता पोहारकर। और शामिल लीजिए सुनिए प्रोग्राम की अगली पेशकश महेंद्र कपूर की आवाज में अमान महल फिल्म का नगमा जिसे मौसीकी सजाए जेपी कौशिक ने। सुनना चाहते हैं गंडूनवार उत्तर प्रदेश से मास्टर किल्लू परवेज बेगम इमराना नाज और नवाजी शेख। और आवास विकास कॉलोनी कासगंज से पवन गौड़ तन्मय पूर्वी गौड़ और सुयेश आशीष गौड़। पश्चिम चौथोक गंडवारा से मास्टर अलीम रजा सिद्दीकी मास्टर मुनव्वर हसन हुसैन अंसारी और नईम रजा सिद्दीकी। चिंगोली बरेली से जिशान वारसी इमरान शेख और अयूब खान। किशोरनगर अमरावती से रमन शिंडे शीला देवी शिंडे और सिद्धार्थ गोंडा ने। किशन कॉलोनी हंसी से सुभाष की राजू मिगलानी और बब्बू डब्बू। जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कामड़े करुणा और विपुल कामड़े। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन उषा मोहन और टिल्लू नायक। और केथल हरियाणा से मधु नायक। शास्त्री नगर बीड शहर से अच्छा देखिए आपका मेल ले लिया आप तीसरा मेल मुझे दिखाई दे रहा है सबकाल फैमिली। कुष्ठा बुजुर्ग अमरावती महाराज से प्रवीण हागोने योगिता हागोने और प्रियाली हागोने।

और आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मुकेश की आवाज में कल्याण जी आनंद जी की मौसीकी से जो नगमा फिल्म है जी चाहता है सुनने की ख्वाहिशमंद है बांदा उत्तर प्रदेश से फहीम मंसूरी और फातिमा मंसूरी और जनाब यह है अनारकली बाजार जगनाओं से सुनील पाठक कमल पाठक और बेबी गाविया धनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी नौशाद सलमानी और बेबी आलिया अस्तुपुरा जिला मऊ से मदरअली अंसारी रजय बेगम अंसारी और मोहम्मद सादिक अंसारी गढ़ मोहल्ला मालिंगापुर से एनुद्दीन बनाटी मुमताज बनाटी और रियाज बनाटी आदर्शनगर मालोट पंजाब से राज शर्मा मीना शर्मा और निवान शर्मा और यही जनाब ताज मंदिर लकड़ा बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार बेनजीर कौसर और हसनैन पवार सिद्धेश्वर नगर यावतमाल से पंजाब रामटेके यशोधरा रामटेके और शराबी रामटेके बुराब के नगर श्रीरामपुर से मनोज जेठवा हर्षा जेठवा और बेबी अवीरा और जनाब ये मेल एक और शामिल करते हैं यह है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा निखिल वर्मा और यश सवि वर्मा ग्राम पहाड़ा दुर्ग छत्तीसगढ़ से पोषण मंचोर चंद्रकिरण और छाया मंचोर और जनाब अब आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश आप तमाम सामयिन के लिए

0: آپ سن رہے تھے فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تامل ارشاد، یہ آکاشوانی کی اردو سروس سے پیش خدمت پروگرام سرخیوں میں۔
1: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज हम सोमनाथ अमृत पर्व, भारत की सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय गौरव का उत्सव विषय पर चर्चा करेंगे। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश मोरी। सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में।
2: नमस्कार
1: सतीश जी। जैसा कि हम जानते हैं, आज सोमनाथ अमृत पर्व का अवसर था और प्रधानमंत्री ने इस पर्व में भाग लिया, जलाभिषेक किया और उन्होंने बहुत ही प्रेरणात्मक संबोधन भी दिया इस अवसर के महत्व को लेकर। इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा।
3: 75 साल पहले आज के ही दिन सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना, ये कोई साधारण अवसर नहीं था। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था। तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: सतीश जी, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बहुत खूबसूरती से इंगित किया कि ये प्राचीन मंदिर है और ये पहले भी बहुत चुनौतियों से गुजर चुका है, थोड़ा सा अगर आप संक्षेप में हमें इसके इतिहास के बारे में बताएं और ये बताएं कि इसका अभी तक इतने गौरवपूर्ण रूप में खड़े रहना कितना महत्वपूर्ण है।
2: ये देखा जाए तो सोमनाथ पे बार बार हमला हुआ था पहले, ये 1000 साल पहले भी बार बार हमला हुआ और सोमनाथ टेम्पल को धराशायी किया गया। बाद में ये भारत की आजादी के टाइम से ये सोमनाथ टेम्पल को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई ने एक स्वप्न देखा था, उसके हिसाब से हमारे राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू जी ने उसका शिलान्यास किया और ये शिलान्यास करते करते मंदिर का बांधकाम आगे बढ़ा। 94-95 में हमारे राष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा जी ने नृत्य मंडप का भी लोकार्पण किया और उसके पे कलश लगाने की जो बात थी उसको कलश लगाया और ऐसे पवित्र जो लोग थे उन्होंने उसमें साथ देके ये सोमनाथ मंदिर का अभी तक में निर्माण पूरा कर दिया है। और अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ये सोमनाथ ट्रस्ट के ट्रस्टी भी है और इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं कि सोमनाथ मंदिर को एक राष्ट्र लेवल पे सब एक जुट रहे लोग उसके लिए का एक सेंटर बनाना चाहते हैं और एक प्रेरणा का स्रोत है ऐसा दिखाना चाहते हैं। सोमनाथ ट्रस्ट पे जब हमला होता था तब हमीर जी गोहिल की भी शहादत हुई थी, बाद में आजादी के बाद अहल्याबाई होलकर और गायकवाड़ जी सबने अपना योगदान देके मंदिर बनाने में सहयोग दिया। उसके बाद अभी जो जामनगर के राजवी है जाम साहब, उसके जो वंशज है वो भी उनके प्रमुख रहे हैं और उन्होंने भी सोमनाथ मंदिर का निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया है। वो हमारे कन्हैयालाल मुंशी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो या जाम साहब हो या गायकवाड़ हो, उन सब ने अपना योगदान देके ये मंदिर को अभी तक का जो स्वरूप बना है वो भव्य स्वरूप बनाने में अच्छी तरह से अपना योगदान दिया है। अभी तो ये अथॉरिटी भी एक बना दी है मंदिर के लिए कि जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है या तो जो लीगल है उसको भी सोमनाथ ट्रस्ट में लेके उसका डेवलपमेंट ऐसे किया जाए कि एक धार्मिक स्थान के साथ साथ प्रवास के लिए भी एक स्थान बने, उसके लिए भी वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी ने कोशिश की है। 3 साल पहले भी सोमनाथ तमिल संगम करके तमिल से लोग आए थे और 5000 से ज्यादा लोग तमिल से आए थे और सोमनाथ तमिल संगम करके उत्सव किया था
1: जी।
2: ऐसे हर साल में कोई न कोई अलग अलग उत्सव होता रहता है और लोग ज्यादा से ज्यादा सोमनाथ मंदिर के प्रति जुड़ते जा रहे हैं। और उसमें शाम के टाइम पे लाइट एंड साउंड शो हो रहा है, तो ये सब चीज प्रवासी लोग आके देखते हैं। अभी उसमें एक और जोड़ दिया है कि सोमनाथ मंदिर का जो हिस्ट्री है उसके बारे में भी एक प्रेजेंटेशन होने वाला है, मीन्स ये शो भी होगा, तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाए उसके लिए प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं।
1: सो आपको लगता है कि इस तरह के जो प्रेरणात्मक धर्म स्थल होते हैं, जैसे अभी स्वाभिमान पर्व भी हुआ था, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, क्योंकि 1000 साल हुए थे जो पहला रिकॉर्डेड अटैक है महमूद गजनी का इस स्थल पर, उसको तो उसके बाद जैसे आपने बताया कि कई बार इसका विध्वंस हुआ, लेकिन सबने मिलकर श्रद्धालुओं ने राजाओं ने आगे आकर उसका पुनर्निर्माण किया और ये साइकिल कई बार रिपीट हुई। सो आपको लगता है कि बार बार विध्वंस के बावजूद सोमनाथ का भारतीयों की सामूहिक चेतना से कभी भी लोप नहीं हुआ, ये जो एक कॉन्शियसनेस है ये हमेशा रही, ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारी जो देश है उसकी एकता के लिए? और जैसा आप कह रहे हैं कि देश के कोने कोने से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं और मिलकर यहाँ पर पूजा अर्चना होती है,
2: देश के कोने कोने से लोग आ पाए, अलग अलग वहीं पे जो फैसिलिटी उपलब्ध करवा जा रही है, और वही एक पूरा जैसे अहमदाबाद में रिवर फ्रंट है इस टाइप का एक सी शोर पे भी एक बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। मंदिर के डेवलपमेंट के साथ साथ वहीं नेचर के साथ भी डेवलपमेंट हो रहा है और लोग जो सोमनाथ आते हैं नजदीक में जो लायन सेंचुरी है उसका भी विजिट करते हैं। कई लोग सोमनाथ के साथ द्वारका का भी दर्शन के लिए जाते हैं क्योंकि जितना सोमनाथ पुराना है ऐसे द्वारका नगरी भी पुरानी है, मीन्स हमारी विरासत है भारतीयों की, तो उसके साथ जुड़ते हैं और लोग धार्मिकता के साथ प्रवास का भी आनंद लेते हैं और बहुत से लोग जुड़ते हैं। इसमें अभी जो ये लाइट साउंड हो रहा है या ये हिस्टोरिकल बता रहे हैं, इससे यूथ भी ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और उसमें अपने आप का पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। और मैं एक बात और बताऊं कि सोमनाथ मंदिर की आरती उनकी वेबसाइट पे डेली लाइव होती है, वो भी नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब से ये सोमनाथ मंदिर की आरती लाइव लोग घर पे देख पाए, इसलिए भी इंतजाम उन्होंने किया है, तो विदेश में बैठे लोग भी सोमनाथ का दर्शन कर पाए, ये भी प्रधानमंत्री का विजन था तो ये भी किया हुआ है।
1: जी बिल्कुल, इनफैक्ट जो ये सांस्कृतिक विरासत और हमारी जो आध्यात्मिक एकता है उसका कितना बड़ा प्रतीक है, इसके बारे में प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में क्या कहा, आइए सुनते हैं।
3: यहाँ देख रहा हूँ विनाश में सृजन के संकल्प को जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है, मैं यहाँ देख रहा हूँ असत्य पर सत्य की विजय को जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है, मैं यहाँ देख रहा हूँ हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है, मैं यहाँ देख रहा हूँ भारत के उस अविनाशी स्वरूप को जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके।
1: सो जिस तरह से अभी प्रधानमंत्री ने कहा कि विनाश में सृजन कैसे होता है, असत्य में सत्य की जीत कैसे होती है, बहुत सारी प्रेरणात्मक यहां से हमें सीख मिलती है। आपको लगता है ऐसा पर्व जब होता है स्वाभिमान पर्व या सोमनाथ अमृत पर्व और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते हैं, आपको लगता है कि देश के युवाओं को भी प्रेरणा मिलती है, गौरव

0: उत्पन्न होता है, एक आत्मविश्वास उत्पन्न होता है हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसमें?
1: डेफिनेटली होता है, क्योंकि ये लोग, कुछ लोग आध्यात्मिक हिसाब से वहीं विजिट करते हैं, कुछ लोग एक टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से विजिट करते हैं, कुछ लोग ये सी शोर है इसलिए भी आना चाहते हैं, तो ऐसे अलग अलग एंगल से लोग आते हैं और जुड़ते जा रहे हैं। अलग अलग पर्व हो रहा है, अलग अलग उत्सव हो रहा है। जब महाशिवरात्रि होती है तब भी सोमनाथ का बहुत महत्व है, और उसका जो शिवरात्रि की रात्रि के टाइम पे बहुत बड़ा उत्सव होता है, वहीं लाखों की मेदनी इकट्ठी होती है और सोमनाथ में अपना पर्व मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। ऐसा साल में अलग अलग टाइम पे, अलग अलग उत्सव के टाइम पे भी ऐसे लोग जुड़ते हैं और आते रहते हैं।
0: तो जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ये सिर्फ आध्यात्मिक प्रगति ही नहीं है, ये सामाजिक और आर्थिक प्रगति के भी स्रोत होते हैं जब ऐसे तीर्थ स्थलों को, धर्म स्थलों को डेवलप किया जाता है। और जो आप टूरिज्म की बात कर रहे थे, 97 लाख श्रद्धालुओं से अधिक हर वर्ष यहां आते हैं, और जिस तरह की वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी डेवलप की गई है जिसमें वंदे भारत और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी शामिल है, ये आपको लगता है ये पूरे आर्थिक विकास के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट स्रोत है?
1: वो सही बात है, क्योंकि ये जो टूरिस्ट आते हैं तो इसके हिसाब से जो आनुषंगिक जो व्यवसाय है सब टूरिस्ट के बेस पे, तो आनुषंगिक व्यवसाय भी बढ़ता है, यूथ को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, और वहीं की जो लोकल कम्युनिटी है उसका भी ग्रोथ होता है। तो ये सब हिसाब से टूरिस्ट प्लेस बहुत मायने रखता है। और पहले सोमनाथ आज से 10-15-20-25 साल पहले देखो तो सिर्फ दर्शन का स्टेशन था, पहले ऐसा ही मानते थे कि दर्शन के लिए जाना है। अभी वहीं अलग अलग एक्टिविटी इतनी शुरू हो गई है कि लोग दर्शन के अलावा भी अपना आनंद प्रमोद के लिए जा सकते हैं और वहीं रुकते हैं। पहले 2-4 होटल थी, अभी तो इतनी होटल भी हो गई है, इतनी धर्मशालाएं हो गई है, अलग अलग ट्रस्ट के भी बिल्डिंग बन गए है, तो लोग आके रहते हैं, अच्छी फैसिलिटी भी उपलब्ध करवा जा रही है। जैसे आपने बोला वंदे भारत, सोमनाथ में पहले मीटर गेज रेलवे लाइन थी, वो भी ब्रॉड गेज में कन्वर्ट हो गई है, तो इसके हिसाब से ज्यादा ट्रेन की भी कनेक्टिविटी हो गई है, और पास में ही केशोद एयरपोर्ट है, दीव का एयरपोर्ट है, उसकी भी फैसिलिटी मिल रही है, तो इस हिसाब से लोग ज्यादा से ज्यादा इजिली वहीं अप्रोच करके जा सकते हैं।
0: जी, और एक और चीज जो आज प्रधानमंत्री ने जिस पर ध्यान केंद्रित किया, वो उन्होंने कहा कि ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है, भारत की जो परमाणु शक्ति है उसको दर्शाने के दृष्टिकोण से भी। आइए सुनते हैं, क्योंकि जो सोमनाथ मंदिर है वो भगवान शिव का मंदिर है, जो शक्ति के प्रतीक है, उस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही। आइए उनके शब्दों में सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: 11 मई 1998 यानी आज के ही दिन देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। देश ने 11 मई को पहले 3 परमाणु परीक्षण किए। हमारे वैज्ञानिकों ने भारत के सामर्थ्य को, भारत की क्षमता को दुनिया के सामने रखा। दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी। अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल भारत को झुका नहीं सकती।
0: तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को झुका नहीं सकती, जिसका एक सिंबल सोमनाथ टेम्पल भी है। और जो उनका एक हमेशा से वर्तमान सरकार का एक मूल मंत्र रहा है, विरासत भी विकास भी, आपको लगता है ये भी बहुत अच्छी तरह चरितार्थ होता है? एक तरफ हम विरासत को पूरा उसका संरक्षण पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, उसके प्रति जागरूकता फैला रहे हैं जैसा ये महोत्सव इंगित कर रहा है, दूसरी तरफ विकास वो चाहे एकदम एडवांस्ड फील्ड में हो, एटॉमिक पावर में हो, शक्ति हमारी जो है वो किसी भी और देश से कम नहीं होनी चाहिए, उस पर भी हमारा पूरा ध्यान है, तो इस दृष्टिकोण को आप कैसे देखते हैं?
1: देखो, सोमनाथ को शक्ति केंद्र भी बोला जाता है
0: जी।
1: वहीं लोग आते हैं, वो अपना मन की शांति लेते हैं, आध्यात्मिक विचारों की उन्नति होती है, और लोग जहां शक्ति केंद्र में आते हैं वहीं से एक अलग चेतना लेके जाते हैं और अपने आप को महसूस करते हैं कि मैं आगे जाके और तरक्की करूंगा, इधर मैंने सोमनाथ मंदिर का दर्शन किया है तो एक अपने आस्था का भी केंद्र है। इस हिसाब से देखा जाए तो सोमनाथ मंदिर बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है, और जितने भी धार्मिक स्थल है उसमें सोमनाथ का महत्व अलग ही है। वो भारत का प्रथम ज्योतिर्लिंग है, इसलिए भी लोग 12 ज्योतिर्लिंग को

0: करते हैं तो पहले सोमनाथ आते हैं और दर्शन करते हैं, तो इस रूप से भी बहुत महत्व सोमनाथ का बनता जा रहा है।
1: जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सतीश जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमें बारीकी से बताया कि क्या महत्व है जो सोमनाथ अमृत महोत्सव हो रहा है उसका पूरे देश के लिए, हमारे आध्यात्मिक, हमारे सामाजिक, हमारे आर्थिक विकास के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही सुर्खियों में कार्यक्रम समाप्त हुआ, नमस्कार।
2: सामिन भी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। कवालियों के आज के प्रोग्राम में समाप्त होना, मैं अख्तर जियाई कवाल और साथियों की गाई कवालियां।

सुमन कल्याणपुर और मन्ना डी की आवाजों में आप सुन रहे थे सपीरा फिल्म के नगमा, मौसीकार थी अजीत मर्चेंट। और समझ लीजिए, अब सुनिए प्रोग्राम की अगली पेशकश, नास्तिक फिल्म का नगमा प्रदीप की आवाज में, जिसे मौसीकी सजाए श्री रामचंद्र ने।

0: खुजी देखो जी देखो देखो जी
1: क्या
0: मेरा नरम कलेजा टूट जाएगा,
1: कलेजा होगा मेरा पीछा टूट जाएगा, टूट जाएगा
0: वो मेरा नरम कलेजा टूट जाएगा,
1: कलेजा होगा मेरा पीछा टूट जाएगा, टूट जाएगा।
0: अरे सुन तो, ऐसे बालम को सताना नहीं अच्छा जी, उसको ते शेर को जगाना नहीं अच्छा जी।

0: नहीं मानेगी, नहीं मानेगी, नहीं मानेगी तो मैं भी मर जाऊंगा।
1: अच्छा होगा।
0: दिन रात भूत बन के सताऊंगा, ओ दिन रात भूत बन के सताऊंगा, सताऊंगा, सताऊंगा। मेरे बिना एक दिन तेरा जीना है।

नवदुर्गा फिल्म के नगमा आप सुन रहे थे चित्रगुप्त और शमशाद बेगम की आवाजों में, मौसीकार थे यसिन त्रिपाठी। और सामने लीजिए सुनिए स्वामी फिल्म का नगमा राजकुमारी की आवाज में।

0: जरूरत नहीं है। मीटिंग के दौरान वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अफसरान को हिदायत दी कि जमीनी सतह पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अपीलों पर अमलावरी के लिए ठोस इकदाम करें। वजीर आजम ने लोगों से जोर देकर कहा था कि वो मेट्रो और आवामी आमदोरफ्त का इस्तेमाल करके और कारपूलिंग का तरीका इख्तियार करके पेट्रोल और डीजल की खपत में कमी करें। उन्होंने शहरियों से यह भी जोर देकर कहा था कि वो एक साल के लिए गैर जरूरी बैरून मुल्क सफर से इज्तनाब करके और मुल्क में ही सियाहत और तकरीबात मनाकर और गैर जरूरी सोने की खरीद से परहेज करके गैर मुल्की जर मुबादला के जखायर को महफूज रखने में तआवुन दें। वजीर आजम ने किसानों से जोर देकर कहा था कि वो कीमियावी खादों के इस्तेमाल में 50% तक कमी करें और कुदरती काश्तकारी के तरीकेकार को अपनाएं, जमीन के रखरखाव में मदद करें, दरामदात पर इन्हिसार में कमी करें और काश्तकारी के लिए डीजल पंप के बजाय शमसी तवानाई से चलने वाले आबपाशी के पंप को वसी पैमाने पर इख्तियार करने की हौसला अफजाई करें। हुकूमत ने कहा कि मुल्क को इसके लिए एक बड़ी लागत का खर्च उठाना पड़ रहा है क्योंकि बैनुल अक्वामी खाम तेल की कीमतें लगातार बहुत ऊंची सतह पर हैं और ईंधन की बचत इस बोझ में कमी कर सकती है। इस मीटिंग में मरकजी वुजरा जेपी नड्डा, अश्वनी वैष्णव, हरदीप सिंह पुरी, किरण रिजिजू, के राम मोहन नायडू, सर्बानंद सोनोवाल और डॉ जितेंद्र सिंह मौजूद थे। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा कि शेरों की कुदरती पनाहगाहों की बहाली, टेक्नोलॉजी पर मबनी निगरानी और बिरादरियों के जरिए उनके तहफ्फुज़ के लिए कॉरपोरेट फंडिंग जरूरी है। नई दिल्ली में आज CII सालाना कारोबारी चोटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने सनाती रहनुमाओं से शेरों की नस्ल के जानवरों को बचाने की आलमी कोशिशों की सरगर्म तौर पर हिमायत करने की अपील की। जनाब यादव ने यह भी बताया कि भारत अगले महीने की 1 और 2 तारीख को नई दिल्ली में शेरों की नस्ल के जानवरों के तहफ्फुज़ से मुतालिक पहली बैनुल अक़वामी चोटी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने गुजरात, वस्ती महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में आज गर्मी की लहर के हालात बरकरार रहने की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 4-5 दिन के दौरान मगरबी राजस्थान के इलाकों में रात के वक्त भी गर्म सूरत हाल रहेंगी। ICC की जानिब से कल जारी की गई मर्दों की एक रोजा बैनुल अक़वामी मैचों की टीम दर्जाबंदी में भारत ने अपना पहला मुकाम बरकरार रखा है। ताहम भारत की दर्जाबंदी में एक प्वाइंट की कमी आई और प्वाइंट्स 119 से कम होकर 118 हो गए, जबकि न्यूजीलैंड ने 2 प्वाइंट्स हासिल करते हुए 113 प्वाइंट्स हासिल किए। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शहरियों से जोर देकर कहा कि कौमी वसाइल पर बोझ में कमी करने की गरज से मुत्तहिद हो जाएं। उन्होंने मगरबी एशिया के तनाजे को इस दहाई के सबसे बड़े बहरान में से एक करार दिया। ईरान और अमरीका के दरमियान जारी तनाजे को खत्म करने की कोशिशों में तआतुल बरकरार है। अफगानिस्तान के सूबा नंगरहार में हालिया सैलाब से तकरीबन 2000 कुंबे मुतासिर हुए हैं। महकमा मौसमियात ने आज गुजरात, वस्ती महाराष्ट्र, राजस्थान और मगरबी मध्य प्रदेश में गर्म लहर की पेशगोई की है और क्रिकेट में भारत ने मर्दों की एक रोजा क्रिकेट की दर्जाबंदी में अपना अव्वल मकाम बरकरार रखा है। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1073 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और DD डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामिन शब का एक बजे चाहता है, यहां हमारी आज की तीसरी और आखिरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती है। सुबह में 9:30 पर अपनी पहली मजलिस की नशरियात के साथ हम फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, शब बखैर, जय हिंद।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से 7 सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।

0: इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से ऊर्जा सहयोग सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड जाएंगे और वहां किंग विलियम अलेक्जेंडर, क्वीन मैक्सिमा और प्रधानमंत्री रॉब जेटन से मुलाकात करेंगे। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री इटली जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। असम में आज हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुदुचेरी में बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में कई केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शामिल होंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया। सुजीत बसु पर तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। ईडी पूर्व मंत्री को आज अदालत में पेश करेगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच जम्मू कश्मीर से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में राज्य का दर्जा बहाल करने, कार्य संचालन नियम, आरक्षण व्यवस्था में संतुलन और जनहित से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के निमंत्रण पर 13 से 15 मई तक चीन की यात्रा पर रहेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी दी। यात्रा के दौरान व्यापार वार्ताओं में भी तेजी आने की उम्मीद है। इस बीच श्री ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध विराम बेहद कमजोर स्थिति में है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि ईरान की ओर से भेजा गया नवीनतम प्रस्ताव पूरी तरह अस्वीकार्य है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया है। पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 210 रन बनाए। दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 211 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi has called upon the citizens to unite to ease burden on national resources, terming the West Asia conflict one of decades' biggest crises. The Prime Minister was addressing the gathering after inaugurating the Sardar Dham Hostel at Vadodara in Gujarat yesterday.
0: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुनहरे और जो अगला गीत है फिल्म का नाम है आ पाए बहार आई। आवाजें हैं मोहम्मद रफी की और गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है आंचल और आवाजें हैं महेंद्र कपूर और आशा भोसले की। संगीत दिया है सी रामचंद्रा ने।

गीत सुनहरे कार्यक्रम में लीजिए सुनिए अगला गीत। फिल्म का नाम है आओ प्यार करें। आवाजें हैं सुरेश वाडेकर, गौरी शंकर और यूनुस की। संगीतकार हैं मानस मुखर्जी।

0: He is right.
1: अरे भाई माजरा क्या है?
2: ये चाचा को ठीक करने की दवा है।
1: अरे इसे लेकर तो सुस्त भी चुस्त हो जाता है,
2: यानी मस्ती में आ जाता है।
0: अच्छा,
1: हम भी शामिल हैं।

इस गीत के साथ लीजिए सुनते हैं अगला गीत फिल्म आपके दीवाने से। आवाजें हैं किशोर कुमार और मोहम्मद रफी की, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

आइए सुनते हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है आपकी कसम। आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। गीतकार आनंद बख्शी हैं और संगीत दिया है आरडी बर्मन ने।

इस खूबसूरत से गीत के बाद लीजिए सुनते हैं एक और गीत फिल्म कल आज और कल से, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज है, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

0: बताइए
1: ना ना पहले जरा आप मुस्कुराइए।
0: मुस्कुराने की न कोई बात है,
1: आज देखिए तो क्या हसीन रात है।
0: ओह काम तो बताइए बताइए।

0: नाम तो बताओ।
1: काम सीधा साधा है।
0: बोलो बोलो।
1: आज लेना एक वादा है।
0: क्या?
1: आजा आजा, शादी का इरादा है। शादी का इरादा है।
0: तुमसे
1: शादी का इरादा है।
0: शादी ना बना।
1: मगर क्यों?
0: शादी तो बर्बादी है।
1: क्या कहती हो?
0: हो जाती आजादी है।
1: नहीं नहीं, सुनो तो, सुनो तो, सुनो तो।

0: दोस्तों गीत सुने रहे कार्यक्रम में लीजिए सुनिए अगला गीत। फिल्म का नाम है आखिरी रास्ता और आवाजें हैं एस जानकी और मोहम्मद अजीज की। गीतकार आनंद बख्शी हैं और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: Story, but everybody will sing with me.
2: Okay.
1: Ready?

गीत सुनहरे कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म आशा से है। गाया है लता मंगेशकर ने और संगीत बद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

गीत सुनेरे कार्यक्रम का अगला गीत पेश है। फिल्म का नाम है राजा और रंक, आवाजें मोहम्मद रफी की है और इसी खूबसूरत से गीत के साथ फिलहाल अपनी दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सुनहरे। यह आकाशवाणी दिल्ली का एआई लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात के 2 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से 7 सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात

0: सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से ऊर्जा सहयोग सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड जाएंगे और वहां किंग विलियम अलेक्जेंडर, क्वीन मैक्सिमा और प्रधानमंत्री रॉब जेटन से मुलाकात करेंगे। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री इटली जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति सर्जियो मैटरेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। असम में आज हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया। सुजीत बसु पर तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। ईडी पूर्व मंत्री को आज अदालत में पेश करेगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच जम्मू कश्मीर से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में राज्य का दर्जा बहाल करने, कार्य संचालन नियम, आरक्षण व्यवस्था में संतुलन और जनहित से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और आर्थिक स्थिति की भी समीक्षा की गई। दोनों नेताओं ने क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समावेशी विकास सुनिश्चित करने पर जोर दिया। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने नागरिकों और विदेशी नागरिकों से कानून का सम्मान करने की अपील की है। उन्होंने ये अपील ऐसे समय की है जब सरकार अवैध प्रवासन को रोकने के प्रयास तेज कर रही है। अपने साप्ताहिक समाचार पत्र में रामाफोसा ने देश के कुछ हिस्सों में विदेशी नागरिकों को निशाना बनाकर किए गए हालिया हिंसक प्रदर्शनों और आपराधिक घटनाओं की निंदा की। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi has called upon the citizens to unite to ease burden on national resources, terming the West Asia conflict one of decades' biggest crises. The Prime Minister was addressing the gathering after inaugurating the Sardar Dham hostel at Vadodara in Gujarat yesterday.
0: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
2: Prime Minister Modi said the government is making continuous efforts to ensure that the situation has the minimum possible impact on the people of the country. The Prime Minister reiterated his 7-point appeal to tackle the adverse impact of the West Asia crisis. These include reducing fuel consumption, prioritizing work from home wherever possible, avoiding foreign travel for a year, and adopting Swadeshi products. He has also urged the citizens to move towards natural farming and avoiding unnecessary gold purchases. Prime Minister Narendra Modi will be on a 6-day visit to United Arab Emirates, UAE, Netherlands, Sweden, Norway and Italy from Friday. On the first leg of his 5-nation visit, Mr. Modi will reach UAE on Friday, where he will meet the President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. They will also discuss ways to advance the bilateral comprehensive strategic partnership underpinned by strong political, cultural, economic and people-to-people links. For the second leg of his visit, the Prime Minister will reach Netherlands on Friday. This will be Prime Minister's second visit to the Netherlands after his previous visit in 2017. And Assam preparations are in full swing for the swearing-in ceremony of BJP leader Himanta Biswa Sarma as Chief Minister for a second consecutive term today. The ceremony will be held in Guwahati. The swearing-in will mark the NDA's third consecutive term in Assam. Dr. Sarma visited the venue to review the arrangement. Speaking to the media, he said Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh and BJP President Nitin Navin will attend the ceremony. The Ministry of Mines is set to launch the second tranche of auction of limestone blocks in Jammu and Kashmir today in Srinagar. Under Tranche 2, the Ministry, in collaboration with the Government of Jammu and Kashmir, is offering 12 limestone blocks for auction. These blocks are located across the districts of Anantnag, Rajouri and Poonch and include both newly identified blocks as well as those being re-auctioned under second attempt, reflecting the government's commitment towards optimal resource utilization and sustained industry participation. The Ministry informed that these resources are critical for key sectors such as cement, construction and infrastructure. India's urban unemployment rate, UR, for persons aged 15 years and above eased to 6.6% in the January to March quarter of this year from 6.7% in the previous quarter. According to Ministry of Statistics and Program Implementation, quarterly labour force and unemployment data, unemployment rate in rural areas edged up marginally to 4.3% from 4% during the fourth quarter of last fiscal year. As per the data, the overall labour force participation rate among persons of age 15 years and above was estimated at 55.5% in the fourth quarter compared to 55.8% in the previous quarter. In IPL cricket, Delhi Capitals defeated Punjab Kings by 3 wickets at Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharamshala, chasing a target of 211 runs set by Punjab Kings. Delhi Capitals scored 216 for 7 in 19 overs. Earlier, Delhi Capitals won the toss and opted to bowl, put into bat. Punjab Kings scored 210 runs for 5 in the stipulated 20 overs. Madhav Tiwari was adjudged player of the match. Today, Gujarat Titans will take on Sunrisers Hyderabad in Narendra Modi Stadium, Ahmedabad. The match will start at 7:30 PM IST, and that is the end of this news bulletin.
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का AI Live News 24/7 चैनल है. स्टूडियो की घड़ी में रात के 2:10 हुए हैं और श्रोताओं, ये वक्त होता है कार्यक्रम गीत बहार नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक का. आज के गीत बहार कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी सरिता, लाई हूं बेहतरीन म्यूजिकल ट्रैक्स. तो एंजॉय कीजिए इस खूबसूरत गीतों की झड़ी को.

श्रोताओं, नॉनस्टॉप फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार अब यहीं संपन्न होता है। अपनी दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाजत, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर किसी दिन फिर किसी मोड़ पर होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और यूं ही जुड़े रहिए AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल के साथ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का एयर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में रात के 3 बजने को हैं। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से 7 सूत्री अपील को अपना आने का आग्रह दोहराया।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। यह जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी।

गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से ऊर्जा सहयोग सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड जाएंगे और वहां किंग विलियम अलेक्जेंडर, क्वीन मैक्सिमा और प्रधानमंत्री रॉब जेटन से मुलाकात करेंगे। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री उल्फ किस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री इटली जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। असम में आज हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगसामी मुख्यमंत्री पद की शपथ बुधवार को लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया। सुजीत बसु पर तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। ईडी पूर्व मंत्री को आज अदालत में पेश करेगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच जम्मू कश्मीर से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में राज्य का दर्जा बहाल करने, कार्य संचालन नियम, आरक्षण व्यवस्था में संतुलन और जनहित से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया गया। मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज लू चलने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन तक रात में गर्मी रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगले 2 से 3 दिन में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 1-2 दिन में वर्षा हो सकती है। दिल्ली में आज बादल छाए रहने और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi has called upon the citizens to unite to ease burden on national resources, terming the West Asia conflict one of the decade's biggest crises. The Prime Minister was addressing the gathering after inaugurating the Sardar Dham hostel at Vadodara in Gujarat yesterday.
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है. पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव. अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है. ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है. आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें.
0: प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड द गवर्नमेंट इज मेकिंग कंटीन्यूअस एफर्ट्स टू इंश्योर दैट दिस सिचुएशन हैज द मिनिमल पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन द पीपल ऑफ द कंट्री. The Prime Minister reiterated his 7-point appeal to tackle the adverse impact of West Asia crisis. These include reducing fuel consumption, prioritizing work from home wherever possible, avoiding foreign travel for a year and adopting Swadeshi products. He also urged the citizens to move towards natural farming and avoiding unnecessary gold purchases. Prime Minister Narendra Modi will be on a 6-day visit to United Arab Emirates, UAE, Netherlands, Sweden,

एक तो ये कि भूपेंदा के गीतों में वहां के आवाम की तस्वीर नजर आती है, वो तस्वीर मजमुई भी है, इनफरादी भी, यानी कलेक्टिव भी है, इंडिविजुअल भी। एक पूरा लैंडस्केप है और उसमें एक अकेला रिप्रेजेंटेटिव मजदूर, नुमाइंदा मजदूर, चाहे वो माहीगीर हो, रमैया मछेरा और उसकी रमणी हो, या पालकी उठाने वाला अपने साथियों के साथ डोला उठाया जा रहा हो, या रतनपुर के बागीचे में चाय की पत्तियां तोड़ती हुई लक्ष्मी और उसका जुगनू। क्या ऐसा नहीं लगता कि भूपेन हजारिका सिर्फ कविता नहीं गा रहे, आसाम का कल्चर गुनगुना रहे हैं?

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात के 4:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

अब आप सुनेंगे भगवान कृष्ण को समर्पित एक रचना, स्वर चेरतला आर गोपालन नायर और के राधामणि के हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का यायार लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। सुबह के 4:20 और पूरे 40 सेकंड हो चुके हैं। आइए सुनते हैं नाद ब्रह्म कार्यक्रम में टीके रंगाचारी का गायन।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 12 मई 2026 सुबह के 4:53 और पूरे 10 सेकेंड हो चुके हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

लीका हिंदू प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। 5:10 पर एक कार्यक्रम आप सुनेंगे जिसमें आज आप उष्ट्रासन और योग से संतुलित जीवन कैसे पाएं इसके बारे में जानेंगे। 5:20 पर देशभक्ति फिल्मों से गीत सुनेंगे और 5:30 पर कार्यक्रम होगा स्वर मंजरी का। सुबह 6:10 पर आपके लिए लेकर आएंगे हम कार्यक्रम वंदना। 6:40 पर कार्यक्रम चिंतन में होंगे आज रहीम के विचार। सुबह 6:45 पर श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ होगा और 6:55 पर संस्कृत में समाचार होंगे। श्रोताओं, हम आपके लिए 7:10 पर लेकर आएंगे कार्यक्रम संगीतिका। 7:30 पर गीतों भरी कहानी, फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम होगा और सुबह 8:00 समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। 8:30 पर उर्दू में समाचार होंगे और 8:45 पर स्वर गंगा शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे। श्रोताओं, सुबह के 5:00 को हैं, अब समाचार होंगे। पहले हिंदी में, उसके बाद आप अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।

पुस्तक संध्या वादं शिलपो जिस भगत समादं मुख झूठ विभूखण सारं त्रैपाल तिहाल विचारं गल माला तित लाटं दो धोती वस्त्र कपाटं जे जानस ब्रह्म कर्मं सफुक निश्चो कर्म कहो नानक निश्चो त्यावे बिन सतगुर बाट न पावे।

0: पासन टोक सूजत गंडी सत बट ए जनेव जी का ही ता पांडे कट ना है कुत्ते नाम लगे ना है जलन जाए तन सुमान स्नान का जो गुल तले पाए चौकड़ मोल अनाया बचौके पाया सिखा कंचना या गुर ब्राह्मण थिया ओम चढ़ पया वे तगा गया महला पहला
1: लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गाल लख ठगियां पहनामियां रात दिन सजी नाल तग कपा हो कतिए ब्राह्मण वटे आए कोई बकरा रिन खाया सब को आखे पाए हुए प्राणा सुटिया पीफिर पाया हो नानक तग ना टुटे जे तग होवे जोर महला पहला
0: ना मन्ने पत उपजे साला ही सच सूत दरगे अंदर पाई तग ना टूट सूत महला पहला
1: तग ना इंद्री तग ना नारी पलके तुक पवे नित दाढ़ी तग ना पैरी तग ना हथी तग ना जीवा तग ना आखी।

कूर बोल करें आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहया भरपूर मथे टिका तेड़ धोती का खाए हाथ छुरी जगत का साए नील वस्त्र पैर होए प्रवान मलेश तहां ले पूजे प्राण अपाक